बोलो प्रेम से बोलो।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जाने वाला।
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो।
1: अच्छा खाओ खाओ
0: ना। कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे। और फिर यशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा। हाँ?

हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
2: जन जन तक पहुंचा संदेश।
3: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, PM किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: हाँ मेरी कसम,
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय,
6: बिंदास मॉर्निंग
3: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
7: ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस

समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
0: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
3: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
7: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
8: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Gold.
10: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
11: कहा मेरी कसम?
10: मिस कर दिया तो रीलोड।
12: चाय चाय चाय।
10: बिंदास मॉर्निंग। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
13: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
14: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
13: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
15: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
16: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
11: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
17: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

महान इंसान ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने चाहिए जो आपकी नींद को ही उड़ा दें। जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, आप सभी का स्वागत अभिनंदन एक बेहतरीन सुबह में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। सुप्रभात है, एक सुपर टूपर वाला गुड मॉर्निंग है आज आनंद की ओर से। श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद के साथ। प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग, मंडे टू सैटरडे डेली आपके छोटे से रेडियो पर आते हैं ढेर सारी बातों का पिटारा लेकर। श्रोताओं, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:22 और इस वक्त आप जुड़ चुके हैं आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग के साथ। जी हाँ श्रोताओं, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, शुक्र है कि आज शुक्रवार है। शुक्राना कीजिए अपने उन आसपास के लोगों का जो आपकी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जरा सोचिए, लास्ट टाइम कब आपने किसी अच्छे इंसान को थैंक यू बोला था, या किसी उस इंसान को थैंक यू बोला था जिसने आपकी जिंदगी में कुछ तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मदद की। कभी किसी को थैंक यू बोला है? अगर बोला है तो बहुत बढ़िया, नहीं बोला है तो आज बोल दो यार। शुक्राना करो उन लोगों का जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको बताते हैं कि कब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, कहते हैं अगर खुद पर विश्वास हो तो शुरुआत जो है आपकी बेहतरीन हो जाती है, और अब अगर हम शुरुआत की बात करें तो मैं भी अपनी शुरुआत बेहतरीन ही करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा आज की, दिस इज मोटिवेशनल कोड लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके बाद करेंगे अपने सफर की शुरुआत, तो आज का कोड है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए श्रोताओं, शुरू हो चुका है आज का ये बेहतरीन सफरनामा जहां पर बातें होंगी दिल से दिल तक, और अभी फिलहाल एक बेहतरीन ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पर जिससे करेंगे आज की सफर की बेहतरीन उम्दा शुरुआत। लेडीज एंड जेंटलमैन, 10 बजे तक आपके साथ रहने वाला है ये बेहतरीन सा मेरा साथ, तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई पर कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग। आज आनंद की होगी एंट्री, आई विल बी राइट बैक, गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: देखो वहाँ क्या।
5: अरे आनंद इज बैक।

हाँ जी मुरादाबादीज, और जो लोग मुरादाबाद के बाहर भी सुन रहे हैं, आप लोग जुड़ चुके हैं आरजी आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। चलिए इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। इस गाने के बाद लौट कर आते हैं तो बात करेंगे आज के दिन के बारे में। वक्त हो रहा है 8:30।

0: हाँ मैंने ही प्लान किया था ना।
1: आयशा लिसन ना, पास पास फिर
2: क्यों दूर, संडे को
3: मैं आती हूँ और तुम चले जाते हो।

अलका याग्निक जी की बहुत ही बेहतरीन आवाज और रिसेंटली तीसरी बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है अलका याग्निक जी को, जोरदार तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। एफएम मुरादाबाद शुरू हो गया है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। 8:38 हो गए स्टेशन क्लॉक में। आज 26 जून की सुबह है, कितने दिन बचे हैं? 5 दिन बचे होंगे इस दिन, यू नो, इनको जून के महीने को खत्म होने में, मतलब जुलाई में एंटर हो जाएंगे। कैन यू इमेजिन कि कितनी जल्दी हम लोग आगे भाग रहे हैं। 2026 कितनी तेजी से निकल रहा है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून भी अब एंड होने वाला है, यानी कि 6 मंथ कैसे कंप्लीट हो गए हैं, मतलब आई कॉन्ट बिलीव दिस यार। खैर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने जो संदेश पहुँचाए हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास मैसेज पहुँचा है यहाँ पर, पिंकी जी का लिखती हैं, हेलो आनंद जी, सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आपके प्रोग्राम के गाने सुन के बहुत अच्छा लगता है, आप काफ़ी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर कोई आपका शो सुनेगा तो डेफिनेटली वो आपका फैन हो जाएगा। आई डोंट नो मैम, सीरियसली आई डोंट नो। वेल थैंक यू सो मच आपके ब्यूटीफुल मैसेज के लिए। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू डूइंग? मैं बढ़िया हूं यार, मैं बढ़िया हूं। ये मैसेज मेरे पास यहां पर पहुंचा है रमन भाई का। रमन भाई लिखते हैं, आनंद भाई सुबह सुबह आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और आपका रेडियो स्टेशन बहुत ही अच्छा है, एक प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का। एब्सोल्युटली भाई, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, किसी को कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है यार। 9837896896 पे डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपका मैसेज जहां आप कहोगे हम वहीं छुड़वा देंगे भाई, टेंशन मत लो। एक और संदेश पहुंचा है मेरे पास, हेलो हेलो आनंद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, ये लिखते हैं, आपके गाने तो मज़ेदार होते हैं, सुन के बड़ा मज़ा आता है, थैंक यू सो मच यार। कोशिश तो यही होती है कि हर दिन आपके लिए कुछ बड़ी और बेहतरीन गाने लेकर आए जाएं इस स्टेशन पे। एक और मैसेज आ गया है कि सुबह सुबह का सूरज हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, तो हमें कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें आज के बारे में सोचना चाहिए, आज के दिन को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। एब्सोल्युटली यार, ये तो बिल्कुल सही बोला आपने गोविंदा भाई। बागी सुबह सुबह अच्छा गाना निकल गया आपके लिए। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इनकी तरह चाहते हैं कि आपका नाम भी रेडियो पे सुनाई दे और आपके अड़ोसी पड़ोसी सब बोले भाई रेडियो पे तेरा नाम आ रहा है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे को मैसेज करना है अपने नाम के साथ, अपना बढ़िया सा जवाब उठाना है, अपना फोन टाइप करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना बढ़िया सा मतलब यू नो मैसेज, कोई पॉजिटिव मैसेज हो सकता है, यू नो जो आपको लगता है कि रेडियो पे डेफिनेटली आनंद जाना चाहिए मैसेज, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो ना यार। फिलहाल के लिए क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल ये बात सच है, दोस्तों के साथ कोई झूठ नहीं बोलता यार। मैं एक मैसेज आ गया, आपके एफएम रेडियो की हमें जैसे आदत पड़ गई है, ना सुने तो दिल ही नहीं भरता और मैसेज ना करूं तो दिल ही नहीं लगता। क्या बात है रणवीर जी, गजब है। आप भी व्हाट्सएप करो यार, गुड मॉर्निंग आनंद के साथ हैं आप।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: मिल गया
9: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

अनुराधा पौडवाल, कुमार शानू की आवाजों में अभी आप एंजॉय कर रहे थे बेहतरीन आवाजों में बेहतरीन गीत। ये दिल है आशिकाना का एक ट्रैक था। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक है। अभी स्टेशन क्लॉक में 8:52 हो गए हैं। 8:52 बात करते हैं आज 26 जून को क्या स्पेशल रहा है। आपको बताते सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे आज के दिन 1945 में। और एक और आज के दिन की चीज जो इतिहास को और भी स्पेशल बना देती है, श्रोताओं आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसलर द्वारा बांग्लादेश को टेस्ट का दर्जा दिया गया था सन 2000 में आज के दिन श्रोताओं। और आपको बता दें भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, मनप्रीत सिंह, 1992 को इनका जन्म हुआ था श्रोताओं। और आज ही के दिन जन्म हुआ था जैन धर्म के भारतीय दिगंबर पद पर प्रसिद्ध मुनि थे तरुण सागर जी, 1967 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। और जो एक और नाम आज के दिन को खास बना देता है श्रोताओं, उनका नाम है बहुत ही स्पेशल योगेंद्र नारायण जी, जो केंद्र सरकार में रक्षा सचिव और राज्यसभा में महासचिव के पद पर है। 1942 में इनका जन्म हुआ था। एंड गोवर्धन मेहता, जो भारतीय शोधकर्ता और रासायनिक वैज्ञानिक हैं, इनका जन्म हुआ 1943 में आज ही के दिन श्रोताओं। यानी कि 26 को तमाम स्पेशल लोगों का नाम जुड़ गया है आज इतिहास के पन्नों में, जिनका जन्म आज के दिन हुआ है, जिन्होंने कुछ ना कुछ स्पेशल किया है श्रोताओं हमारे देश के लिए, हमारे भारत के नाम कुछ ना कुछ स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अगर आज इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है तो उन्होंने वो चीज़ की है श्रोताओं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी आने वाले इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाए, तो हम तो हमेशा कहते हैं कि उठाइए अपने कर्मों की किताब, लिख डाली कुछ बेहतर से बेहतरीन। हो सकता है आने वाले इतिहास के पन्नों में आपका भी नाम दर्ज हो जाए। श्रोताओं और भी तमाम सारी चीज़ों के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। धीरे धीरे आपको बताएंगे भारत के लिए 26 जून और क्यों स्पेशल है आज के दिन, और क्या स्पेशल बनाया जाता है, कौन कौन से विशेष आज जो है दिवस मनाए जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें इस बात का बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अंदर से एक्साइटमेंट है, खुशी है, खुशी का ठिकाना भी नहीं है। आप लोगों के तमाम संदेश हमें मिल रहे हैं, उसके लिए आप सभी का मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूं। डेली आप लोगों के बड़े सुंदर सुंदर मैसेज पहुंच जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सुबह सुबह आपके दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाते हैं, एक छोटा सा आपसे सवाल कर लेते हैं बिना किसी देरी के, देखते हैं कितने लोगों को इसका जवाब पता होगा। तो एक छोटी सी पहेली है, इसका आंसर जरूर समय से पहले और तत्काल प्रभाव से पहले मैं आपसे पूछता हूँ और आप भी मुझे इसका आंसर बताइएगा। आज की मेरी पहेली है, एक पैर है तीन आंखें हैं बताओ मैं कौन हूँ। एक पैर है तीन आंखें हैं बताओ मैं कौन हूँ, क्या है इसका सही जवाब बताइएगा जरूर। इंतजार रहेगा मुझे आपके मैसेजेस का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जुल्फी भाई जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज हमारे स्टेशन पे, लिखते हैं हेलो आनंद भाई, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह यार आपके बिना तो मन ही नहीं लगता है, रेडियो जब खोले और आपकी आवाज सुने तो मन प्रसन्न हो जाता है। थैंक यू जुल्फी भाई, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जी, माय नेम इज पूनम जी, कैसे हैं पूनम आप, गुड मॉर्निंग। शिखा हमारे साथ जुड़े हैं मानसरोवर से। एक और मैसेज पहुंचा है मेरे पास दिल्ली रोड से, हेलो गुड मॉर्निंग जी, माय नेम इज सिया, गुड मॉर्निंग सिया, हेलो हेलो। एंड ये मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है रिंकी यादव का, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, सुबह सुबह आपको सुन के सच में बहुत आनंद आता है आनंद जी, थैंक यू सो मच मैम। हमें भी बहुत आनंद आता है जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में, इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। आठ बज के 56 मिनट हो गए, अगले घंटे आपको मिलेंगे। एक छोटा सा सवाल हमने पूछा है आपसे, एक पैर है तीन उसकी आंखें हैं बताइए मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कौन है ये, इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो। और अभी हमारे पास लगातार मैसेजेस की बारिश हो रही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर हम आपके संदेश को शामिल करेंगे। आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए, अभी लौट कर आएंगे, उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर चलेंगे श्रोताओं। उसके बाद जब आएंगे तो कुछ खास और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी। आजकल हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो मुझे लगता है कि उस पर बात करना तो बहुत ज़रूरी है यार, आज की सुबह क्या बोलती है मुरादाबाद की जनता, बिल्कुल जरूरी है। फिलहाल के लिए इतराज फिल्म का ये बेहतरीन ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पर, वो तस्वुर का आलम, उदित नारायण, अलका एग्नी जी की बहुत ही बेहतरीन आवाज, म्यूजिक डायरेक्टर है हिमेश रेशमिया साहब, लिखा है समीर साहब ने, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
7: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
6: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: कॉल 9045912348।
8: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
9: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

चश्मा पहले धूप से बचाने का आता था ना। ये आप चश्मा लगाओगे तो आपकी आंखें सेफ होंगी, आप धूप से बच पाओगे, अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर पाओगे, प्रोटेक्शन के लिए चश्मा लगाया जाता था। लेकिन अभी भैया एक ऐसा चश्मा आ गया है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एंड ये AI स्मार्ट जो है बेस चश्मा है। बेसिकली इस चश्मे को जो लॉन्च किया गया, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारी बातें हो रही है जिसमें मुझे लगता है कि आज की सुबह मुझे भी बात करनी चाहिए। हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज फ्राइडे की सुबह, आप जुड़ चुके हैं RJ आनंद के साथ। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:03, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है अमेजिंग मॉर्निंग जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। तो भैया मीटा ने अब तक जो है सबसे सस्ते AI स्मार्ट गूगल्स लॉन्च किए हैं, और आपको बता दें जो फैशन और टेक्नोलॉजी का एक बेस्ट कॉम्बो बताया जा रहा है। इसमें ओपन ईयर स्पीकर्स, 5 माइक्रोफोन्स एंड हाई मीटा AI दिया गया है जो आपकी आवाज़ के साथ कैमरे से देखकर भी जवाब दे सकता है, एंड ये बहुत ही डिफरेंट फीचर के साथ मिलकर जो है बनाया गया है। एंड ये गूगल्स लगभग $299 से शुरू होते हैं। हालांकि प्राइवेसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कैमरे में माइक्रोफोन हमेशा एक्टिव होता है, एंड ये जो माइक्रोफोन है अब जब ये एक्टिव होगा कैमरे में तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भाई नहीं होनी चाहिए वो भी होंगी। बट इसकी जो कीमत है वो $299 बताई जा रही है, एंड आई डोंट नो कि भैया अब इस चश्मे के अंदर और क्या चीज़ें

ऐसे ही इंक्लूड की गई, ऐसा फीचर ऐड किया गया है जो उसको बड़ा डिफरेंट बना रहे हैं। एंड सीरियसली यार, मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी कोई चश्मा आ सकता है। सोच रहे हैं आप, मतलब एआई से कहां दुनिया पहुंच रही है बॉस। हम सिर्फ पोस्टर बनाने तक ही सीमित बैठे हुए हैं, यहां दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है यार। वेलकम बैक है जी। चलो तीसरे घंटे की शुरुआत तो हुई की है लेडीज एंड जेंटलमैन। फ्राइडे मॉर्निंग है, 9:04।

जरा सी देर में बेहतरीन ट्रैक आपके रेडियो पे मैं पहुंचाऊंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे. फिलहाल आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की मॉर्निंग. मैंने एक आपसे फैंटास्टिक क्वेश्चन भी पूछा है. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई वांट टू आस्क यू कि मुझे आप व्हाट्सएप करके बताओ एक पैर तीन मतलब जो है उसके बारे में. मैंने आपको क्लू दिया था ना, तो वो मैं जो आपसे पहली एक दिस इज माय पहली एक्चुअली ये एक पहली है. तो इसका जवाब आप मेरे को व्हाट्सएप करके बता सकते हो. मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मतलब एक पैर है तीन उसकी आंखें हैं, बताओ मैं कौन हूँ. एक पैर तीन मेरी आंखें, बताओ मैं कौन हूँ. प्लीज़ टेल अस. अगर आपको समझ में आ रहा है ये क्या है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप. हमारे साथ कौन जुड़े हैं जी. पिंकू का मैसेज आया है. गुड मॉर्निंग आनंद. गुड मॉर्निंग आपको भी पिंकू जी. ये मेरे साथ जुड़ चुके हैं. इसके अलावा एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है. गुड मॉर्निंग. हाय हेलो हेलो हेलो जी आपको भी हेलो हेलो. ये शारिका इनका नाम बताया इन्होंने. गुड मॉर्निंग. मैं इस टाइम पे कांट रोड में गाड़ी पे जा रही हूँ. ऑल राइट एंड आपको सुन रही हूँ. थैंक यू सो मच. अच्छे गाने आप प्ले कर रहे हो. थैंक यू सो मच मैम. मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप यू नो हमारे रेडियो को सुनते सुनते ट्रैवल कर रहे हो. थैंक यू वेरी मच. चलो आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन. आप लोग ऐसे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. अगर आपको मेरे सवाल के जवाब पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पता है तो दिमाग लगा के पता कर लो यार. फिलहाल के लिए एक बेहतरीन ट्रैक इसके साथ करेंगे अपने मॉर्निंग की स्टार्ट.

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: 2026 में सबसे ज्यादा पॉपुलर इंस्टाग्राम पे रहा ये गाना और बैरन आई लव दिस ट्रैक यार। दोस्ती के लिए तो ये गाना बड़ा ही परफेक्ट है यार, इतना ट्रेंड किया ये गाना एंड अभी भी जब भी आप इस गाने को सुनते हो मजा आ जाता है यार।
1: बैरन
0: बन जा रहे हैं।

क्या सॉन्ग है, सच अमेजिंग ट्रैक। फ्राइडे की सुबह आनंद के साथ सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे गाने सुन के सच में ना बड़ा मजा आता है यार। कैन यू इमेजिन एवरीबॉडी की काश कभी ऐसा हो सकता है मुरादाबादी की, या कभी ऐसा होता, या कभी आपने ऐसे इमेजिन किया हो कि यार हम किसी को व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, कोई ऐसा एक नया नंबर जिसको हम जानते नहीं है, लेकिन उस चैट से पहले काश हमें कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि भैया ये चैट आपके लिए खतरनाक हो सकती है, या फिर ये चैट करना आपके लिए सही नहीं है, मतलब इस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा कुछ काश कभी हो पाता, बट अभी ऐसा हो रहा है एब्सोल्युटली। आपको बता दें भैया, अब अनजान नंबर से बात करने से पहले व्हाट्सएप करेगा आपको सावधान, दिखाएगा आपको चेतावनी का मैसेज कि भैया थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जी हाँ, एक्चुअली व्हाट्सएप अब अपना एक नया फीचर एनरोल करने वाला है, एब्सोल्युटली एक नया सिक्योरिटी फीचर रोल आउट कर रहा है व्हाट्सएप, जो किसी भी यूजर्स को अनजान नंबर से चैट करने से शुरू होने से पहले आपको वो नोटिफिकेशन देगा, आपको सावधान करेगा, आपको अलर्ट करेगा एब्सोल्युटली। एंड ये फीचर आपको किसी भी संभावित स्कैमर से बचाने के लिए, उसके जाल में आप ना फंस सके, उससे पहले ही आपको ये एक सोचने का संभलने का मौका देगा कि भैया व्हाट्सएप का ये जो फीचर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अगर आपको कोई एक नए नंबर से मैसेज आता है, चैट आता है, तो उससे पहले आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको एक अलर्ट मैसेज आएगा कि भैया आपको पता लगेगा ये मैसेज आपके लिए सेफ नहीं है, तो आप वहां पे रुक सकते हो और स्कैम होने से आपको बचाया जा सकता है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग इनिशिएटिव, बहुत ही बढ़िया यार, ओरिजिनल वाली क्लैप्स होनी चाहिए व्हाट्सएप के लिए। ये फीचर तो डेफिनेटली हम सभी को इसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है कि ये फीचर डेफिनेटली इनरोल होना चाहिए। एंड अगर ये रोल आउट हो रहा है तो आपके पास भी डेफिनेटली पहुंचेगा। थोड़ा इंतजार करो, कोई भी चीज को आने से पहले थोड़ा वेट करना जरूरी होता है यार। वेल, ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है एंड इसके बारे में आगे थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। ये फीचर आपको किसी भी स्कैमर के जाल में फंसने से पहले संभालने का एक मौका देगा। एंड इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि ये फीचर एंड्रॉइड और जो दोनों तरह के फोन से उसमें अवेलेबल होगा। एंड बताया जा रहा है कि ये जैसे ही किसी यूजर्स को एक नए नंबर से चैट शुरू करने की कोई आपसे कोशिश करेगा, तो उससे पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको एक पॉपअप दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे कि ये आपके लिए सही नहीं है, मतलब आपको एक वार्निंग मिल जाएगी आपकी स्क्रीन पे। सो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। एंड मुझे लगता है अगर इस तरह की चीजें अगर हो जाएंगी तो जो बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप चलाते हैं बट उनको एक्चुअली सोशल मीडिया के फीचर्स के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन है, व्हाट्सएप के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में बहुत सारे फीचर्स नहीं पता होते हैं, तो प्लीज वो लोग तो बच सकते हैं यार, है ना। और इवन वो नहीं, हम सभी बच सकते हैं स्कैमर से। आजकल इतना धोखाधड़ी चल रहा है, आप देख रहे हैं कितनी तेजी से चीजें स्पीड के साथ आगे जा रही है। सफलता तो मिल रही है नो डाउट, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारे धोखाधड़ी के शिकार भी लोग हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है, अच्छा इनिशिएटिव है। चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आपके पास अच्छे अच्छे मैसेज हैं, मुझे पता है मेरे पास भी आपके लिए बहुत अच्छे मैसेज हैं। और आज एक बहुत ही फैंटास्टिक फैबुलस बॉलीवुड एक्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उन्हीं का गाना सुपरमैन का बर्थडे मनाते हैं आज हम। अभी सुपरमैन कौन है यार, 9:19 होने स्टेशन क्लॉक में। हाय हाय, कपूर साहब का बर्थडे यार। यस, आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर का। बॉलीवुड के शानदार अभिनेता अर्जुन कपूर जी अपनी दमदार एक्टिंग और अलग अंदाज से उनकी इंडस्ट्री में एक खास पहचान है, और इंडस्ट्री में उन्होंने एक अलग ही लेवल सेट करके रखा हुआ है। तो हमारी तरफ से अर्जुन कपूर जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, उनका ये आने वाला साल उनके लिए ढेर सारी खुशियां, सफलता और बेहतरीन हो और फिल्मों से भरा रहे, हम तो यही जो है उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे हमारे पूरे एफएम एंटायर फैमिली की ओर से। वही हैप्पी बर्थडे बॉलीवुड के एक्टर अर्जुन कपूर जी को। इश्क ज़ादे से लेकर कई शानदार फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बखेरने वाले अर्जुन कपूर जी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज की तारीख में आपका भी बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे सुपरमैन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली, सो आगे बढ़ेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, अर्जुन कपूर का बर्थडे है, ऑफकोर्स एक बढ़िया सा गाना तो होना चाहिए, सुपरमैन तो बजेगा ही बजेगा, लेकिन थोड़ा सा एकदम धमा चौकड़ी वाला होना चाहिए ना, तो मजा आ जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी लौट कर आता हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता लगेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, इसी चैनल पे आपको बताऊंगा। यार आप कहाँ जा रहे हो, आप मेरे साथ बस ऐसे जुड़े रहो और बढ़िया गाने सुनते रहो। देखो यार, ये गाना भी अपने आप में बहुत बढ़िया है, मेरे हस्बैंड की बीबी पिक्चर का नाम है यार, इसमें मेरा क्या दोष है, पिक्चर का नाम ही ऐसा तो मेरे को लेना ही पड़ेगा ना बाबूजी। क्या लगा रहा यार अर्जुन इसमें, कमाल, डैशिंग डैशिंग यार अर्जुन भाई, कमाल हो यार।
चलो भूमि एंड रकुल प्रीत अर्जुन एंड साथ में हर्ष गुजराल के ऊपर पिक्चराइजेशन है, गाना बहुत ही अल्टीमेट है, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अर्जुन कपूर जी।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
9: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: पीछे। Hi guys, this is Aditya।
1: देखो गाइज बात ऐसी है, गाना तो बहुत बढ़िया है, मैं आपके पीछे बिल्कुल हो गया हूँ क्योंकि मुझे आपकी जो बातचीत है, आपके जो मैसेजेस हैं वो एकदम फैबुलस लगते हैं। थैंक यू सो मच गाइज इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। फ्राइडे की सुबह है, 26 जून है, आज 26 तारीख हो गई, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। और आज 26 तारीख के दिन मैं आपसे एक पहेली पूछ रहा हूँ, एक पैर तीन आंखें बताओ मैं कौन हूँ मुझे पहचानो। मैंने आपसे पूछा था एक छोटा सा सवाल कि बताइए भैया, एक पैर है मेरा तीन आंखें मेरी, अब बताइए कौन हूँ मैं। इसका जवाब आप मेरे को व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। गौरव टेलर जी जुड़े हैं मेरे साथ आज की सुबह, नवीन नगर से लिखते हैं। हेलो आनंद जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका एंड सुनकर बहुत मजा आ रहा है, मॉर्निंग हमारी जो है और भी बिंदास हो गई है। थैंक यू सो मच गौरव भाई। मुरादाबाद से मेरे साथ जुड़ गए हैं रणवीर सिंह, ये लिखते हैं आपकी आंखें तीन, और इन्होंने लिख दिया है ये सही जवाब। थैंक यू रणवीर भाई, थैंक यू सो मच, आपने तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग आंसर दिया है। एंड साथ में रणवीर जी लिखते हैं, ना आप दूर जाना ना हम दूर जाएंगे, वाह, ना आप दूर जाना ना हम दूर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की हम दोस्ती निभाएंगे, बहुत अच्छा होगा आपकी जिंदगी का ये सफर, आप वहां से याद करना हम यहाँ से मुस्कुराएंगे। वेरी वेरी ब्यूटीफुल यार, क्या बात है जी, कमाल कर दिया है जी, ओए कमाल का मैसेज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज आ रहा है राजा कश्यप जी का, लिखते हैं आज प्यारी सी सुबह बहुत खूबसूरत है, बोलचाल देखो क्या नज़ारा है। मैंने कहा रुक पहले मैं एफएम रेडियो लगा लूँ, उसके बाद फिर पता चला सुबह ये बहुत प्यारी है। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच जनाब इतने ब्यूटीफुल मैसेज के लिए। दुर्गेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं एंड मेरे पास मैसेज पहुंच गया है बबलू सैनी जी का मुंबई महाराष्ट्र से। जयंतीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं समीर अब्बासी जी, एकदम सही जवाब पकड़े हैं भैया आप तो। गुड मॉर्निंग आनंद जी, बबली, अनजान, गीता, कश्यप, हेलो गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? आपको एफएम मुरादाबाद सुनते हैं। और ये लिख रहे हैं कि प्ले स्टोर पर जाकर हमने जो है आपका एसी वाला ऐप डाउनलोड कर लिया है, गर्मी के मौसम में आपके ठंडे ठंडे गाने हमें बहुत यू नो हैप्पीनेस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच यार, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। मैसेज आ गया है मेरे प्यारे लिसनर का, सहारनपुर से जून रोजी पलविलीस लिखते हैं, हेलो आनंद, हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। लिखते हैं कर्मों का वजन उतना इकट्ठा करिए साहब जितना अंत में आप आसानी से उठाकर चल सकते हो। बिल्कुल सही बात है, तो अपने कर्मों को, अगर आपके पॉजिटिव कर्म है ना, मुझे ऐसा लगता है जॉन साहब, तो ये बहुत ही अच्छे हैं ना। देखिए बैंक बैलेंस हर कोई बढ़ाता है, कर्मों का बैलेंस ना बहुत कम लोग बढ़ा पाते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने कर्मों का बैलेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। अच्छे कर्म कीजिए, लोगों को यू नो कोशिश कीजिए कि उनकी मदद कीजिए, जो जिस तरीके से जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है आप उसको वैसे हेल्प कीजिए, है ना। आप जैसे सक्षम है अपने आप को देखते हुए ही आप किसी की मदद कीजिए, किसी को आप प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट देके भी उसकी सुबह उसका दिन अच्छा बना सकते हो। आगे मैसेज लिखते हैं कि एक मैसेज में इन्होंने लिखा है, कोई भी व्यक्ति लिखते हैं कि सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कमियों को नज़रअंदाज कीजिए और रिश्तों को बनाए रखिए। बहुत ही खूबसूरत बात है, लेकिन आजकल के रिश्तों को बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है साहब। सामने वाले को लगता है कि हम नहीं झुकेंगे वो झुकेंगे, उनको लगता है कि वो नहीं झुकेंगे हम क्यों झुकेंगे भैया। तो ये जो अभी पैटर्न चल रहा है ना रिश्तों का, थोड़ा सा अलग ही हो गया है। खैर आगे बढ़ते हैं, इस पे फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं आज के दिन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग डे आज मनाया जाता है, नेशनल कोकोनट डे मनाया जाता है, नारियल का दिन है आज, तो नारियल के बारे में ढेर सारी बातचीत करने वाला हूँ अभी थोड़ी सी देर में। 9:30 हो गए स्टेशन क्लॉक में एंड इस पे डेफिनेटली चर्चा करूंगा अभी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आने वाला बेहतरीन ट्रैक किसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा जी जुमा मुबारक हो, वेरी गुड मॉर्निंग आनंद के साथ है, आई विल बी राइट बैक।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्राइडे की सुबह है और अभी मेरे पास आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आयु से पहले एक अच्छा गाना निकाल दिया मैंने आपके लिए, यहाँ पर इसी वाइब को फील करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये है फ्राइडे मॉर्निंग और अभी दिलजीत दोसांझ का ये बेहतरीन ट्रैक जिसको सुनते हुए आगे बढ़ना है अभी मेरे साथ आपने। और मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो डेफिनेटली

दिलजीत दोसांझ की ना वाइब भी बड़ी डिफरेंट होती है, मतलब इनके गाने सुन के सीरियसली अलग ही जोन में पहुंच जाते हैं ना। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं, हर साल 26 जून को नेशनल कोकोनट डे मनाया जाता है और ये दिन अपने आप में बहुत ही स्पेशल होता है। आज के दिन की आपको भैया बधाइयां, बहुत ही स्पेशल दिन है, फ्राइडे है, वीकेंड है, ऑफ कोर्स छुट्टी वाली फील हर किसी को आती होती है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि आप जानते हैं नारियल को आमतौर पर नट्स समझा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये एक गुठली वाला फल है एंड ठीक वैसे ही जैसे आड़ू और आम होते हैं। आपको बता दें नारियल का जो पेड़ है ये बहुत ही स्पेशल, ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने तो देखा ही होगा। खैर मैं आपको बताऊँ तो नारियल खाने के जितने फ़ायदे हैं ना, उतने नारियल पानी पीने के भी फायदे हैं, आपको तो पता ही है ना। नारियल पानी, और आजकल तो वैसे भी गर्मियों में तो नारियल पानी वैसे भी हमारी और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है यार। आपको बता दें भारत दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देशों में से एक है एंड इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ भारत के ऐसे अलग अलग एरियाज बताए जाते हैं, लेकिन भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश माना जाता है, इनमें से एक है। जी हाँ दोस्तों, एंड भारत में जो है आपको पता है ना नारियल तो अपनी यार मतलब अलग ही पहचान। इवन ही मैंने एक बार पूछा भी था कि आप किसको बताएं कि भैया नारियल को अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इवन यहीं पर मुझे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम बताए थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम बताए थे। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है, मैं आपको वही बता रहा था अभी फटाफट से, मैंने आपको बता भी दिया। इनफैक्ट आज नेशनल कोकोनट डे मनाया जाता है एंड ऑफ कोर्स ये कोकोनट हम सभी के लिए बड़ा फेवरेट है यार, हम सभी का बहुत ही फेवरेट है यार, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज हमें तो मैं तो भैया हार्डकोर नारियल पानी बॉय हूँ, मुझे बहुत पसंद है नारियल पानी एंड वैसे भी अभी तो जिस तरीके की गर्मी चल रही है एकदम भयंकर वाली गर्मी, इसमें तो भैया नारियल पानी वैसे भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए ना। अगर आप नारियल पानी लेते हैं तो दिस इज़ टू गुड यार। पता मजे की बात क्या है कि नारियल की बर्फी भी बड़ी अच्छी होती है, मैंने नारियल की बर्फी बहुत बारी खाई है, मतलब टेस्टी टेस्टी होती है नारियल की बर्फी, नारियल का तेल, नारियल का पानी, मतलब कोकोनट तो यार हर चीज में अल्टीमेट है यार। इनफैक्ट नारियल वाले लड्डू अगर आपने खाए होंगे ना तो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बड़े बड़े कमाल के होते हैं नारियल के लड्डू भी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बस आपसे यही कहना चाहते हैं आज की सुबह कि अगर आप भी ऐसी अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको भी कुछ पता होती है तो डेफिनेटली आप उन्हें हमारे साथ साझा कर सकते हैं 9837896896 पर व्हाट्सएप करके जो है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अभी नारियल के बारे में ढेर सारी बातचीत चल रही थी, मैं आपको

नारियल पानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, अगर आप नारियल पानी पीते रहते हैं बहुत अच्छी बात है, ये शरीर को जो है हाइड्रेटेड रखने में काफ़ी हेल्प करता है और बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें पोटेशियम और सोडियम होता है जैसे कुछ तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। पाचन को ही आपके बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप नारियल पानी लेते हैं तो। गैस, एसिडिटी, अपच जैसी प्रॉब्लम से आपको बहुत दूर रखता है। इनफैक्ट आपके दिल की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। नारियल पानी में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने में काफ़ी हेल्प करता है एंड आपके वजन को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है नारियल पानी। इनफैक्ट आपकी त्वचा के लिए, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है नारियल पानी। एब्सोल्युटली यार, नारियल पानी पीने का जो है अलग ही है यार स्वैग। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप सुबह सुबह नारियल पानी खाली पेट पीते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया होता है। आप इसको लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। सुबह अगर आप अपने दिन की शुरुआत ही नारियल पानी से कर रहे हैं तो फिर इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कोकोनट डे के बारे में बात कर रहे थे अभी हम। आपके मैसेज हमारे पास ढेर सारे पहुंचे हैं, थैंक यू सो मच। हमारे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर टीना जी का, ये मुझे लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, हाउ यू, कैसे हैं आप? आपने जो पहली पूछी थी उसका ये जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस के लिए। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्या है सही जवाब एंड एक मेरे पास कड़क क्वेश्चन भी है आज की मॉर्निंग, उस पर भी हम डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक अच्छा सा गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज अच्छे गानों के बिना सुबह थोड़ी सी अधूरी अधूरी लगती है। सही गाना मैंने, और अगर बढ़िया सुनने को मिल जाए तो सुबह मजेदार हो जाती है। चलो फिलहाल थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड आप लोग भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ऐसे ही। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, आपकी शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं आनंद के साथ लेडीज एंड

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

वेलकम बैक है जी। एक बेहतरीन गाना भी आपने सुन लिया और इसी बेहतरीन गाने के साथ अब लड़की की बेहतरीन आवाज सुन लो। हाँ जी, मेरा नाम आरजे आनंद है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कभी कभी होता है मेरे अंदर चुल वाला काम करने का, कि हर मुमकिन काम को ना नामुमकिन करने का मन कर जाता है यार। लोग नामुमकिन को मुमकिन करते हैं, लेकिन आप मुमकिन को नामुमकिन करते हैं, तभी तो हमारा क्रिएटिव फील्ड है यार। आगे बढ़ते हैं। अभी आज मैंने ऐसे ही कुछ किया है, मतलब दो गानों की ना मैंने ऐसे मिक्सी में डाल के उनको पीस डाला है और उन गानों को आपने आइडेंटिफाई करना है। आज का मेरा कड़क क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है, आपकी ना बॉलीवुड की थोड़ी नॉलेज को और ज्यादा तेज करने का टाइम हो गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:48, 9:48 फ्राइडे की सुबह है, 26 जून। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 पे। आरजे आनंद को दो गाने यहाँ पर बजने वाले हैं, इन गानों को पकड़ना है आपने। कौन कौन से गाने आपको सुनाई दे रहे हैं? बेसिकली एक चुटकी सॉन्ग में आपको दो गाने सुनाई देंगे, सो प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से गाने हैं। इमीडिएटली आप मुझे मैसेज करेंगे, 3, 2, 1 गो स्टार्ट। व्हाट्सएप करना है आपने, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। अभी जो आपने दो गाने सुने हैं एक चुटकी में, मैंने आपको दो गाने बजाए, एक चुटकी सॉन्ग गेम का नाम, यहाँ पे हमने आपको दो म्यूजिक सुनाए हैं गानों के, वो गाने जो हैं आपने आइडेंटिफाई करने हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने कर लिए तो बहुत ही बढ़िया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भैया आपको अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाना है, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम, विच सिटी, आप मुझे कहां से सुन रहे हैं, एंड उसके बाद अपना राइट आंसर। अभी जो आपने दो गानों की खिचड़ी सुनी है वो कौन कौन से दो गाने हैं, यही आपने मेरे को मैसेज करके बताने हैं। ठीक है बाजी, तो आपने क्या करना है, उठाना है अपना फोन, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। और जवाब कौन सा है बाजी जो आपने देना है, पहले उसके लिए सवाल सुनना पड़ेगा ना यार। तो मेरा सवाल बहुत सिंपल है, आपने मेरे को मैसेज करके बताना है कि अभी जो आपको यहाँ पर दो गाने सुनाई दे रहे हैं वो कौन कौन से गाने हैं। Yes, इन दोनों गानों को अगर आपने पकड़ लिया है तो बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्त, जल्दी से उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, सेंड करना है उसको मेरे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का नंबर बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बता दिया था, पहले भी नहीं बताया तो भैया दोबारा बता देते हैं, 9837896896, दिस इज माई नंबर, 9837896896, दिस इज माई नंबर। अभी के लिए राइट हियर एक अच्छा गाना, इसको सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्राइडे की मॉर्निंग आप है आनंद के साथ, अभी मिल रहे हैं जरा सी देर में।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बिल्कुल जी, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। 9:55 हो रहे हैं हमारे स्टेशन क्लॉक में और अभी आनंद के साथ हैं आप। बहुत ही अच्छा सवाल मैंने आपसे पूछा यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो गाने मैंने आपके लिए यहाँ पर बजाए हैं, उन गानों को आपने आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये दो गाने कौन से हैं, इनको आपने पकड़ना है। बहुत ही अच्छे गाने, ऑफकोर्स आप सुनते हैं इनको। चलो व्हाट्सएप करो अपने नाम के साथ, अपना सही जवाब उठाओ, अपना फोन टाइप करो, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। ये दो गाने जो चल रहे हैं एक बार फिर से प्ले कर रहा हूँ मेरे भाई। हाय हाय, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार दिमाग में तो आ रहा है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है। आनंद ये गाना सुना तो है, अरे ये भी सुना है। चलो फिलहाल के लिए इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। Beautiful track. साथ में डांस करेगी ना यार।

बेहतरीन ट्रैक के बाद वेलकम बैक है लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ हैं, आप सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। 10 बजने को है स्टेशन क्लॉक में। एक बॉलीवुड का बहुत ही पॉपुलर गाना है, देखो देखो ये शाम बड़ी दीवानी, सारे स्टार कास्ट उस गाने में नजर आई थी। मतलब बहुत ही यू नो ओल्ड टाइम एंथम बन गया है, जब भी हम उसको सुनते हैं बहुत मजा आता है उस गाने को सुन के। एंड मूवी भी बहुत ही कमाल की थी। और भैया इसी गाने से जुड़ी एक बात जो मुझे लगता है कि आपके साथ डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए, इस गाने के अंदर सारे स्टार कास्ट आपको नजर

के अंदर सारी स्टार कास्ट नजर आई थी। सिर्फ आमिर भाई नहीं आए क्योंकि आमिर भाई की शूटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा भैया हम नहीं आ पाएंगे, हमारी शूटिंग चल रही है तारे जमीन पर, भाई थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाते तो बढ़िया रहता यार। लेकिन कोई नहीं यार, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। वेल गाना एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। बेहतरीन नंबर भाई। जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी ना, उस टाइम पे ही मतलब सारी स्टार कास्ट ऐसे धाकड़ वाली एंट्री के साथ इस गाने में एंटर। इनफैक्ट फराह खान ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस गाने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड विशाल ददलानी साहब ने इतनी खूबसूरती से इस गाने को गाया है, इतनी बढ़िया पिक्चराइजेशन इस गाने का, कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया हुई है इस गाने के अंदर, मतलब अल्टीमेट पिक्चर तो ऑफकोर्स है ही कमाल की यार। इतने सारे लोगों की आवाज है इस गाने में, उदित साहब, शान साहब, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, राहुल साहब, जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, इतना बेहतरीन गाना है। म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी है। फ्राइडे की सुबह आनंद के साथ हैं आप। ढेर सारी बातों के बीच में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आज हमने एक बहुत अच्छा सवाल भी आपसे पूछा है। ढेर सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, उससे पहले मैंने आपसे एक पहेली पूछी थी, एक पैर है तीन मेरी आंखें हैं, बताइए क्या था इसका जवाब। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे सही जवाब दिए हैं, जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर, ट्रैफिक सिग्नल, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया था मुझे, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये ट्रैफिक लाइट के बारे में बात हो रही थी आरजे आनंद जी, जो आपने पूछा था ना अपना सवाल, उसका सही जवाब है ट्रैफिक लाइट, बिल्कुल जी। तो ट्रैफिक सिग्नल पे हम खड़े होते हैं ना, वहाँ पे इतने तीन लाइटें हमें दिखाई देती है ना बाजी, मैं उनके बारे में बात कर रहा था आज और मेरे को बहुत मजा आया। आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया और बहुत सही सही जवाब पहुंचाया, हमको बहुत प्रसन्न हुआ मन, हमको बहुत प्रसन्न हुआ मन, नहीं मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। ये मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, हो जाता है यार कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एक पैर तीन आंखें, बताओ मैं कौन हूं, सही जवाब है ट्रैफिक सिग्नल, इसके बारे में बात कर रहा था, ट्रैफिक लाइट, एब्सोल्युटली सही जवाब। थैंक यू प्रियंका जी, आप इंदौर से जुड़ी सही जवाब के साथ। रणवीर जी हमारे साथ सही जवाब के साथ जुड़े थे आज की सुबह। एंड दुर्गेश जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था मुंबई से, थैंक यू सो मच। समीर अब्बासी जी आपका भी शुक्रिया, आपने भी एकदम सही सही जवाब दिया था एंड मेरे पास सही जवाब पहुंचा था यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज मनप्रीत, थैंक यू मनप्रीत सही जवाब देने के लिए। एंड ये रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। विकी सागर जी जुड़ गए हमारे साथ, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो कैसे हैं आप, दिस इज मी शुभी, हाय गुड मॉर्निंग। एंड एक मैसेज आ गया है शिवानी का मेरे पास, गुड मॉर्निंग सर कैसे हो आप, मैं बहुत बढ़िया हूँ शिवानी, थैंक यू सो मच, आई होप आप भी अच्छे होंगे। एंड कुछ टेक्स्ट मैसेज आए, इमीडिएटली पढ़ते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ जी, हाय माय नेम इज अरिजीत, हाय अरिजीत गुड मॉर्निंग। मुझे लगा बॉलीवुड के अरिजीत तो नहीं पहुंच गए मेरे रेडियो शो पे आज उड़ते उड़ते। चलिए गाइज थैंक यू सो मच। अच्छा एक लास्ट मौका आपके पास है, मैं आपको एक गाना यहाँ पर बेसिकली दो गाने प्ले कर रहा हूँ एंड आपने उन गानों को पहचानना है, आपके पास फाइनल एंड आखिरी मौका है। बहुत अच्छे गाने हैं यार, बहुत बार सुनते हैं आप। हाय हाय, व्हाट्सएप करिए जो दो गाने भी आप सुन रहे हैं कौन कौन से हैं, अगर आपको पता है इनके सही जवाब तो इनके नाम आपने मेरे को लिख के बताने हैं। उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही वाला जवाब, सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पर। अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हो रही है वेलकम टू द जंगल आज। एब्सोल्युटली यार आज 26 है, आज ये मूवी रिलीज हो रही है आपकी नजदीकी सिनेमा घरों में एंड बहुत ही कमाल की स्टार कास्ट, बहुत ही अल्टीमेट मूवी। ऑफकोर्स पहली वाली वेलकम ठीक कमाल की यार एंड दूसरी वाली वेलकम भी ऑफकोर्स अच्छी है। इसमें अर्शद वारसी, जैकलीन साथ में, इसमें जैकी श्रॉफ, प्रेश रावल, रवीना टंटन, लारा दत्ता एंड और भी बहुत सारी स्टार कास्ट नजर आने वाली है। बहुत ही अल्टीमेट फिल्म है लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी देखने के बाद पता चलेगा है ना। बाकी अक्षय एंड दशा आए थे मुरादाबाद में, क्या कहा हमें भी पता नहीं था, आए थे यार आए थे। चलो इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, 10 बज चुके हैं।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉर्पोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: बेबी को बेस पसंद है। हाँ
1: क्या बात है, सुल्तान से ट्रैक चल रहा था।
0: बेबी को बेस पसंद है।
2: Now chori wanting dance but chora want romance, so chora bolis DJ said Jay not taking chance, don't know how.

0: स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है,
1: नाना बेबी को हाँ
0: पसंद है।
1: यस, क्या बात है, बेबी को बाजी
0: जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है,
1: मेरे बेबी को
0: फेस पसंद है।
1: निकल गए आप अपने ऑफिस, ऑल द बेस्ट।
0: को बेस पसंद है।
1: चलो भैया, आप लोग अपनी डेस्टिनी पे पहुंच गए हो, बहुत सारी बधाइयां आज के दिन के लिए, ऑल द वे बेस्ट।
0: बेबी को बेस पसंद है।
1: मैं अपने ऑफिस से निकलने वाला हूँ यार। ओए होए।

0: बेबी को बेस पसंद है और आनंद को आप पसंद है, आपका रेडियो पे ये जो मैसेज करना है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। शाहरुख खान के लिए बहुत ही अल्टीमेट हो गया है ये वाला ईयर, बिकॉज 2026 बहुत स्पेशल, बिकॉज 1992 में रिलीज हुई थी उनकी दीवाना, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। एंड शाहरुख खान ने जो है भारतीय सिनेमा में अपनी शानदार करियर के 34 ईयर कंप्लीट कर ली है। क्या बात है यार, कंग्रेचुलेशन शाहरुख फैंस को, जितने भी एसआर खान फैंस हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। सुपर स्टार किंग खान की बात कर रहा हूँ, शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ। शाहरुख खान 25 जून 1992 उनकी फिल्म आई थी दीवाना, जिसे उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। एंड फाइनली अब भारतीय सिनेमा में उनके पूरे शानदार हो गए 34 ईयर, ये 34 साल कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इज जुगनू एंड गोल्डन एनिवर्सरी यार, 34 साल कंप्लीट कर लिए शाहरुख खान साहब ने। एंड अपनी पहली फिल्म जो है करके दर्शकों के दिलों पर जो है उन्होंने क्या राज किया, मतलब छा गए थे यार। किंग खान आज भी उसी जुनून और उसी ऊर्जा के साथ इंडस्ट्री में एकदम एक्टिव हैं, लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद भी फैंस लगातार उनके साथ मतलब कनेक्टेड रहते हैं, और कहीं ना कहीं किंग खान पर नज़रें लगी रहती हैं कि भैया अब वो क्या नया लेकर आने वाले, और पूरी शिद्दत के साथ पूरी प्रिपरेशन के साथ जो है शूटिंग्स में लगे रहते हैं। 34 साल के बाद भी उनका जो स्टाइल है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, वो बिल्कुल मेंटेन है, बरकरार है। सो ऑल द वे बेस्ट शाहरुख खान साहब को, ऑफकोर्स हम सभी के ऑल टाइम फेवरेट है एसआर खान साहब। एंड उनका एक डायलॉग जो बहुत पॉपुलर हुआ है, दिस इज एक्चुअली ये बिल्कुल वर्क करता है, इट्स नॉट अ फिल्मी डायलॉग, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ट्रू है अगर आप इसको दिल से यू नो पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, पूरी कायनात पूरी कोशिश मिलाने में तुमसे उसे लग जाती है। एंड दिस इज एक्चुअली रियल है ये, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना तो भाई वो चीज आपको मिलने लगती है, बट वो ये कि आप उसके लिए कितने डेडिकेटेड हो, कितने पैशनेट हो, ये बहुत जरूरी है ना, ये बहुत मैटर भी करता है इनफैक्ट। चलो भैया, एसआर खान को ऑल द वे बेस्ट और उनके फैंस को भी बहुत सारी बधाइयां। अभी हम बात करते हैं आज के मेरे कड़क क्वेश्चन की और आगे चलेंगे, बिकॉज जाने के चमे हो गया, मेरा जाएगा नहीं तो पुन आएगा किसी बाबा। ओए, मैंने आज आपसे 2 सवाल पूछे थे, मतलब एक ही सवाल में 2 गाने पूछे थे। मैंने कहा था भैया जरा मेरे को बताओ ये जो मैंने गाने बजाए हैं वो कौन कौन से हैं। यही पूछ रहा था मैं आपसे कि मेरे को बताओ जरा, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि ये जो गाने में चला रहा भैया कौन कौन से गाने सुनाई दे रहे हैं आपको। और ढेर सारे लोगों ने मेरे को भैया सही जवाब दे दिए हैं, तो मैं तालियां बजाना चाहता हूँ, ठोको ताली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे को सभी ने सही जवाब तो नहीं दिए हैं, इसमें मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है, क्योंकि आधे जवाब तो गलत वाले आ गए हैं। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आपको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई होगी यार, क्योंकि सवाल ही ऐसा था, क्या ही कर सकते हैं ना, बट चलो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए हम यहाँ पर बता दें आपकी जानकारी के लिए कि कौन है हमारे आज के विनर, उनका नाम जो है अब घोषित करने का टाइम हो गया है जी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े आज की सुबह, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एंड फाइनली जिन्होंने मेरे को सही जवाब दिया है उनका नाम है नोनेश कुमार, उन्होंने लिख दिया है सही जवाब, और जवाब था पहला गाना था बेबी डॉल कनिका कपूर की आवाज में है, एंड दूसरा था आंख मारे रणवीर एंड सारा अली खान। ऑफकोर्स यार इतना अच्छा गाना था यार, दोनों गाने इतने अच्छे थे, इतना प्यारा म्यूजिक था, पहचान नहीं पाए यार। ये देखो बेबी डॉल इतना पॉपुलर है, ये आंख मारे गए तो म्यूजिक इतना पॉपुलर है यार, ये लो भैया मैंने ये भी डाला था बीच में। थैंक यू नोनेश जी, थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल सही जवाब के साथ जुड़े हैं, एंड आप आज की सुबह हमारे शो के सुपरस्टार बनते हैं, जोरदार तालियां आपके लिए। बाकी और लोगों ने भी सही जवाब दिए हैं, जैसे कि अलका मैम है, वो अपने वॉइस नोट के जरिए कुछ कह रही हैं।
1: राधे राधे आनंद जी, आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है।
0: थैंक यू मैम,
1: आपने जो म्यूजिक चलाया था उसका पहला गाना है सिंगम मूवी से आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, दूसरा गाना है बेबी डॉल दी सोने दी मैं बेबी डॉल दी सोने।
0: अरे वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, कमाल कर दिया कमाल कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, तालियां तो हो गई हैं यहाँ पे, अब फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, खिसक रहा हूँ। अब आपको हम मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, कब मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, कल सुबह सवेरे मिलेंगे, अभी के लिए थोड़ी देर के बाद। अभी आप जो है एक काम करो, अपना अच्छे से ख्याल रखो। चलो फिलहाल अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छा गाना छोड़ के जा रहा हूँ, वीकेंड है, फ्राइडे है, आप डांस करते रहिए, एंजॉय करते रहिए अच्छे गाने। ब्रजेश जी का मैसेज आ रहा था संभल से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, सही जवाब लक्ष्मी जी ने भी पहुंचाया। वैसे ललिता कश्यप जी जुड़ी है मेरे साथ राइट आंसर के साथ नवीन नगर से। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग सच में बहुत अल्टीमेट मैसेज करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल मैं यहाँ से लूंगा जाने की अनुमति। टेक्स्ट मैसेज मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, हाउ यू, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ जी। एंड यहाँ पर भी मुझे सही जवाब मिल गया था, थैंक यू सो मच, आपने सही जवाब टेक्स्ट मैसेज पे भी किया, उसके लिए ऑल थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग, सभी का दिल से धन्यवाद। फिलहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से गाने के साथ, कहता हूँ आपको बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, एंजॉय करती है अच्छे गाने और ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ थे अभी आप, नेक्स्ट कंपनी आप एंजॉय कीजिए खुशी के साथ, मैं निकलता हूँ यहाँ से, बाय, टेक केयर, टिल देन टुमारो मॉर्निंग।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे मालूम है सब अपने कामों में व्यस्त भी होंगे और कुछ अभी काम फिनिश करके आराम से बैठे हैं कि खुशी जी कब आएंगे और कब हम उनको मैसेज पहुंचाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपकी इतनी मोहब्बत है, आप हमसे इतनी करते हैं मोहब्बत, इतना प्यार करते हैं आप रेडियो से कि जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं आपके मैसेज की बौछार यहाँ पर होने लगती है। साथियों, ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी लेकर आई हूँ आपके लिए आपका फेवरेट शो मॉर्निंग मसाला, जहाँ पर कुछ चटपटी बातों का मसाला लगता है एंड आपकी इंटरेस्टिंग बातें तो होती ही हैं लेकिन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी होती है यहाँ पर, और आपके लिए बिंदास ट्रैक जो आपके दिन को बनाते हैं और भी ज़्यादा खूबसूरत। दोस्तों, वक्त हुआ है 10:33 राइट नाउ। आप भी अपनी घड़ियाँ मिला लीजिए, अगर वॉच पहनते हैं तो मिलाइए, और अगर वॉच अच्छा दोस्तों, मेरा एक सवाल भी है, हाँ पर मैं अभी नहीं पूछूंगी, थोड़ा सा इंतजार तो करो यार, अभी तो मैं आई हूँ लेकिन मैं खुद इतनी स्पीड में रहती हूँ ना। अच्छा श्रोताओं, फ्राइडे का दिन है, बहुत ही खूबसूरत सा, शुक्र है कि आज शुक्रवार है। दोस्तों, हर सुबह एक नया दिन लेकर आती है, बल्कि एक न्यू बिगनिंग लेकर आती है। सूरज हर सुबह नहीं निकलता कि रात हार गई, सूरज हर सुबह इसलिए नहीं निकलता कि रात हार गई, बल्कि इसलिए निकलता है क्योंकि होप नेवर लॉस। और याद रखिए, एवरी मॉर्निंग इज ए फर्स्ट फ्रेश, हाँ जी, स्टार्टअप ये हमें एक नया अपॉर्चुनिटी देती है, एक न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी देती है कुछ अच्छा सोचने का, कुछ अच्छा करने का और किसी की स्माइल की वजह बनने का। तो दोस्तों, आज इस खूबसूरत फ्राइडे मॉर्निंग में एक छोटी सी हाँ जी, खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए, नेगेटिव थॉट्स कम रखिए, ग्रेटिट्यूड ज़्यादा रखो और जहाँ भी जाओ अपनी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करो, क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना सकती है। और दोस्तों, आप मुझे अपने मैसेज यहाँ पर पहुँचा सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय आप मुस्कुरा रहे हैं और हमारे श्रोता कुछ तो अभी ऑन द वे राइट नाउ कार में हैं, जो ड्राइविंग कर रहे हैं और हमें भी सुन रहे हैं, आपका दिल से धन्यवाद सर। तो चलिए दोस्तों, आज की सुबह एक खूबसूरत सा ट्रैक मैं आपको सुनवाती हूँ, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। और ये गाना बहुत ही खूबसूरत सा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के सुनवाते हैं ये ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं बस आपकी अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल जी, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा तो जरूर लगाइए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और इस समर्स में हम चाहते हैं कि आप एकदम कमाल के नजर आओ। दोस्तों, ये अमेजिंग ट्रैक गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और दोस्तों आज की गर्मी को देखते हुए ये गाना ना सिर्फ ही गाना नहीं बल्कि समर रिमाइंड भी है। घर से बाहर निकलें तो अपने गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा जरूर लगाएं, इससे आपकी आंखें धूप तेज से सेफ रखेंगी और साथ ही आपका स्टाइल भी कमाल का लगेगा। तो इस समर स्टे कूल, स्टे सेफ और हाँ देखिए भी स्मार्ट और हैंडसम, क्योंकि धूप से बचना भी जरूरी है और स्टाइल बनाए रखना भी। तो अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो अपनी गोरी गोरी मुखड़े पे काला चश्मा लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और दोस्तों वक्त हुआ है 10:43। आपके जो यहाँ मैसेज आए हैं ब्यूटीफुल, मैं उनको भी क्विकली शामिल करूंगी। लेकिन उससे पहले एक और अमेजिंग सा ट्रैक आपके लिए, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और हाँ रेडियो के सुन को बिल्कुल भी मत घुमाइएगा। बस मैं आती हूँ छोटू से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का आरजे खुशी स्वागत करती है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने अमेजिंग ट्रैक सुना। एड ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं। वक्त हुआ है 10:50 राइट नाउ। और दोस्तों, फ्राइडे का दिन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। माँ लक्ष्मी का दिन है। और दोस्तों, आज क्या ये शुक्रवार की सुबह सुनहरी है, आपके जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज का दिन राम लक्ष्मण द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में मर्यादा, त्याग, भाईचारा, विश्वास और कर्तव्य सबसे बड़ी ताकत है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का प्रेम हमें यही संदेश देता है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें सम्मान और समर्पण हो। तो दोस्तों, आज शिकायतें थोड़ी कम करें, मुस्कुराहट थोड़ी ज्यादा बांटें और अपने दिन की शुरुआत करें भगवान श्री राम के साथ। और आप सभी को राम लक्ष्मण द्वादशी की एवं शुक्रवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर अमेजिंग मैसेज भी आ गए हैं, तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट मैसेज आया है, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रणवीर सिंह जी का, मुरादाबाद से, कहते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं, बहुत खूबसूरत सी बातें लिखी हैं कि जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए और भगवान ने जो दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखिए। एग्जैक्टली राइट सर, जीवन तभी खूबसूरत लगता है जब हम किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, और ये कहते हैं शुक्रवार की सुबह खुशी जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज मुझे मिला है यहाँ पर नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का, और ये कहती हैं हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। धन्यवाद, आपने हमें खाने के लिए इनवाइट किया है, थैंक यू सो मच मैम। एंड इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, हम दोनों पिक्चर देख रहे हैं किसी थिएटर के अंदर, ओके, और बिजली चली जाए, ये वाला ट्रैक है कि मैम वैसे इस गर्मी में ना लाइट भी बहुत परेशान करती है, कभी जाती है तो कभी आती है, मतलब बार बार जाती रहती है। और गर्मी में आपको पता ही है कि जैसे लाइट जाती है तो लगता है कि अब सांसें रुक गई हैं, इतनी गर्मी होती है और लाइट चली जाती है, तो उससे बड़ा दुख और क्या ही हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड होस्ट, जनकपुरी सहारनपुर से ये मैसेज पहुंचाते हैं, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रोजी परवलीश जी। और इन्होंने भी एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, हम पूरी कोशिश करेंगे सर इसको प्ले करने की। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब लाइट चली जाती है आपके यहाँ पर और कभी कभी इन्वर्टर भी डाउन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? जी हाँ, मुझे बताइए, जब आपके घर में लाइट चली जाती है, नेक्स्ट इन्वर्टर भी डाउन हो जाता है, तब आप उस समय पर क्या करते हैं? अपने आंसर हमें पहुंचाएगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और अभी सुनिएगा कुछ खूबसूरत से गीत, मैं लौट कर आती हूँ आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए और कुछ खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: क्या जी रहे अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का नंबर वन रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। वक्त हुआ है 11:08 और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आए हैं, तो जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। एंड हमें ये मैसेज मिला है, गुड मॉर्निंग खुशी मैडम जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन। एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं, कहते हैं कि मैम हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे मैम, प्लीज़ इसको पूरा कर दीजिएगा। मेरे जीवन साथी हो जीवन साथी, अरे वाह क्या बात है। एंड ये मैसेज हमें पहुंचाया है आसिफ फ्रॉम इटली से, एंड इटली में हमें इस समय ये सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना मैसेज हमें पहुँचाया है और आपकी फरमाइश हम ज़रूर पूरी करेंगे। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आइए कहते हैं खुशी जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। विकी जी का मैसेज आया है, और ये कहते हैं खुशी जी जब लाइट चली जाती है एंड इन्वर्टर भी डाउन हो जाता है तब हम छत पर चले जाते हैं और हाथ वाले पंखे का इस्तेमाल करते हैं। ओके थैंक यू अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर ललिता कश्यप जी का आया है, ये कहती है मैम बहुत गुस्सा आता है जब लाइट भी चली जाती है और इन्वर्टर भी डाउन हो जाता है, स्पेशली गर्मियों में। तो उस गुस्से को आप कैसे शांत करती हैं ललिता जी, बताइए ज़रा। जब लाइट चली जाती है अचानक से, हम कहीं बाहर से आए हैं ठीक है गर्मी में और दो मिनट बैठे तुरंत तभी लाइट चली जाती है और पता चला कि इन्वर्टर भी डाउन है, तब उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं दोस्तों, मुझे बताइएगा। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है उमा शंकर जी का रुद्रपुर से, और ये कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और इन्होंने हमें भेजी है कुछ, यू नो हाँ, इन्होंने शकरकंद की बेल हमें भेजी है। ये शायद अभी राइट नाउ खेतों पर हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं उमेश कुमार प्रजापति जी लोधीपुर मुरादाबाद से, कहते हैं कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और कौन कौन से डे आज सेलिब्रेट किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपको कहीं नहीं है जाना, हौले हौले से है मुस्कुराना।

0: हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और ये ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना, मेरे जीवन साथी हो जीवन साथी। एंड इस ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी आसिफ जी ने इटली से। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है वो हम अभी क्विकली शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम बता देते हैं, हमने आपसे कहा भी था कि आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्या कुछ होता है स्पेशल आज के दिन, वो सब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं बल्कि खुद की बुराइयों पर जीत हासिल करना है। और आज 26 जून है, तो आज सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि नशा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत बन जाता है। शुरुआत भले ही बस एक बार से होती है लेकिन धीरे धीरे वही आदत इंसान की सेहत, परिवार, रिश्तों, सपनों और भविष्य को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, रियल हैप्पीनेस किसी नशे में नहीं बल्कि हेल्थ, लाइफ, फैमिली, लव और सेल्फ रिस्पेक्ट में होती है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति नशे की लत से जुड़ रहा है तो उसे ताना मत दीजिए, उसका हाथ पकड़िए, उसका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि सही समय पर मिला साथी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, तो मैं कहती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई नशा करता है तो उनको समझाइए। और दोस्तों, आज हम सब एक छोटा सा प्रॉमिस करें, नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार और समाज को भी इसके लिए आप जागरूक करेंगे। याद रखिए दोस्तों, नशा छोड़िए, सपनों को नहीं लाइफ को चुनिए, एडिक्शन को नहीं। और दोस्तों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। वक्त हुआ है 11:23। और दोस्तों, अभी हम लौट कर आएंगे ना, तो आपसे एक क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। क्या सवाल होने वाला है, क्या मालूम करने वाली है खुशी आपसे? इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत आसान, बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं आपकी आपसे आज की सुबह मालूम करने वाली हूँ। एंड उससे पहले कुछ और मैसेज यहाँ पर आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, म्यूजिक इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्थ लाइफ। एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं जीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी का मैसेज हमारे पास आया है। धन्यवाद अपने संदेश पहुँचाने के लिए सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कश्मीर से आया है महराजुद्दीन जी का। उसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज आया है, जय श्री राम खुशी मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक तो सुनवाएंगे ही लेकिन कुछ एड ब्रेक का भी टाइम हो गया है।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दी

योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. आपका स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है और वक्त अभी हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 11:35. और दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ है. जी हाँ, अगर आप होटल, रेस्टोरेंट या फिर किसी कमर्शियल संस्थान से जुड़े हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर लगी पाबंदी हटा दी है. अब होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और अन्य व्यावसायिक स्थानों को पहले की तरह एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का कहना है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को इस फैसले से घबराने की जरूरत नहीं है. घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जाएगी और आम लोगों की सप्लाई पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा.

दोस्तों बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, गैस की आपूर्ति सामान्य होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बाद ये फैसला लिया गया है कि यानी कुल मिलाकर ये फैसला होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों के लिए राहत लेकर आया है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं की गैस सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। और अभी हम आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था ना श्रोताओं कि मैं आपसे एक सवाल भी पूछने वाली हूँ एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अब जरा आपका बॉलीवुड नॉलेज चेक करते हैं। आज अर्जुन कपूर का बर्थडे है तो बताइए अर्जुन कपूर जी ने बॉलीवुड में किस फिल्म से अपना डेब्यू किया था। जल्दी से व्हाट्सएप कीजिएगा, मोबाइल नंबर है 9837896896। जी हाँ दोस्तों अर्जुन कपूर का आज बर्थडे है तो आप मुझे बताइए अर्जुन कपूर ने बॉलीवुड में किस फिल्म से अपना डेब्यू किया था। उस फिल्म का नाम आपको मुझे बताना है और अपने नाम, आप चाहे बुलेट से हमें सुन रहे हो, चाहे आप सिटी से हमें सुन रहे हैं, जहां से भी आप मुझे सुन रहे हैं उस जगह का नाम भी आप मेंशन कीजिएगा। और यहां पर कुछ और मैसेज आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है बबली अनजान जी का, गीता कश्यप जी का, और ये कहती हैं गर्मी आ गई अब सोना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रात को मच्छर घूंघू करेंगे और दिन में कुल्फी वाले। अरे वाह क्या बात है। हाँ वो तो होता ही है, देखिए मच्छर भी कहते हैं अपना टाइम आएगा और मच्छर ऐसे नहीं आते हैं, वो पनपते हैं एंड जब कहीं बर्तन में पानी जमा होता है, कूलर की सफाई नहीं होती है, या फिर आप पक्षियों के लिए छत पर पानी रखते हैं उस पानी को चेंज नहीं करते हैं तो उसमें भी मच्छर पनपने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और अपने आसपास साफ सफाई रखें तो मच्छर इतने नहीं आएंगे। और जब रात में आप सोते हैं तो उस समय आप कॉटन के वस्त्र, कॉटन के कपड़े पहने फुल स्लीव के, उनको पहनकर सोइए, मच्छरदानी का उपयोग कीजिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। कासिम अली जी का मैसेज आया है हमारे पास गोविंदपुर से एंड इन्होंने भी एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है। तो चलिए दोस्तों सुनवाते हैं एक खूबसूरत ट्रैक, लौट कर आते हैं हम, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। एंड एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आज की सुबह खुशी आपको सुना रही है। फ्राइडे का दिन बहुत ही प्यारा सा है, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो और ये खूबसूरत से गीत को आप एंजॉय करें।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रैक सुना, बादशाह पाजी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, फ्रॉम द मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी से। अर्जुन कपूर साथ में बादशाह एंड रखो, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट भी रहे हैं। बिल्कुल, प्रीत भी हैं, भूमि भी हैं और अर्जुन तो अपने आप में है ही हैंडसम। और दोस्तों, आज की सुबह मैंने एक सवाल भी आपसे पूछा है, अगर आप खुद को बॉलीवुड का बड़ा फैन मानते हो तो सवाल आपके लिए है, बताइए अर्जुन कपूर की पहली फिल्म यानी उनकी डेब्यू मूवी का क्या नाम था। जवाब हमें पहुंचाएगा, इंतजार है, नंबर है 9837896896। वैसे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, तो सबसे पहले राइट आंसर हमें किसने पहुंचाया है जरा देख लेते हैं, हम क्विकली शामिल कर लेते हैं। एक वॉइस नोट आया है हमारे पास सबसे पहले, तो बिना किसी देरी के सुनते हैं ये वॉइस नोट। हमारे पास जो भेजा है मैम ने, उनका क्या नाम है वो हम सुनेंगे इस वॉइस नोट में।
1: राधे राधे, खुशी अर्जुन कपूर की पहली पिक्चर इश्क जादे थी, जिनकी हीरोइन थी परिणीति चोपड़ा। आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है, मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार ही कर रही थी।
0: थैंक यू सो मच। अरे वाह, देखिए आपकी और हमारी वाइब दोनों की कितनी मैच करती है। आपने भी थैंक यू बोला और इधर से मैंने भी आपको थैंक यू बोला। मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना राइट आंसर पहुंचाया है। एंड मुझे लगता है कि मैम आपको ना बॉलीवुड की सारी नॉलेज है। लाइक कोई हम क्वेश्चन करते हैं और हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारे श्रोता पहुंचा पाएंगे इन जवाब, लेकिन आप सबसे पहले देती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपको बहुत बहुत बधाइयां। मुझे लगता है कि आप फिल्म में बहुत ज्यादा देखती हैं। हाँ ऐसा है कि मैम, नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सही आंसर के साथ। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं रणवीर सिंह जी एक से ज्यादा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कहाँ से किसका आया है, जल्दी से हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। एंड टेक्स्ट मैसेज भी मेरे पास लगातार आ रहे हैं, तो उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं एंड व्हाट्सएप लिसनर्स, तो फटाफट से आंसर पहुँचाते हैं, लेकिन हमारे जो टेक्स्ट मैसेज पर जो लिसनर कनेक्ट होते हैं वो भी अपने आंसर पहुँचाने में देर नहीं करते हैं, वो भी जल्दी जल्दी से अपने मैसेज सब पहुँचा ही देते हैं। तो चलिए एंड देख लेते हैं उनका क्या मैसेज आया है यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हाय मैम, पूजा जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये कहती है राइट आंसर है इश्क ज़ादे, थैंक यू पूजा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है आरजी खुशी मैम को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कार्तिक गुप्ता का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद लाइन पर से। दोस्तों, कभी कभी किसी इंसान की असली पहचान उसकी पहली सफलता से नहीं बल्कि मुश्किल समय से उभर कर आगे बढ़ती है, हौसले से होती है। आज बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर अर्जुन कपूर का बर्थडे है और उनके जिंदगी के कुछ दिलचस्प पहलू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अर्जुन कपूर जी का जन्म 26 जून 1985 को हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी। इसके बाद उन्हें अपने फिटनेस पर कड़ी मेहनत की और लगभग 50 किलो से ज्यादा वजन कम करके खुद को फिल्मों के लिए तैयार किया। एंड साल 2012 में फिल्म उनकी आई थी इश्क ज़ादे से उन्होंने बॉलीवुड में शानदार डेब्यू किया और पहली ही फिल्म से लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद उनकी बैक टू बैक फिल्म आई हाफ गर्लफ्रेंड, संदीप और पिंकी फरार जैसी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाई। दोस्तों आज का मोटिवेशन भी अर्जुन कपूर की है। जी हाँ दोस्तों, जर्नी से यही मिलता है, अर्जुन कपूर जी की जर्नी से यही मिलता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मेहनत आपकी पहचान बदल सकती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने अपने खूबसूरत जवाब यहाँ पर पहुंचाए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, अर्जुन कपूर जी की पहली फिल्म थी इश्क ज़ादे। शुक्रिया गीता कश्यप जी, आपने अपना मैसेज पहुंचाया। एक वॉइस नोट और हमारे पास आया है अलका जी का, और अलका मैम क्या पहुंचाती हैं जरा सुन लेते हैं उनका प्यारा सा वॉइस नोट।
1: खुशी एक बात बोलूं, मेरे साहब भी कहते हैं क्या तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, बस का मूवी ही देखती थी क्या?
0: अच्छा,
1: बट ऐसा नहीं है, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया है।
0: वाओ।
1: और मूवी भी देखती थी लेकिन कम, लेकिन नॉलेज रखती थी, सुनती रहती थी रेडियो पे, पेपर पे, इन सब से मुझे नॉलेज मिलती रहती थी हमेशा।
0: ओके, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, अभी मैं सुनवाती हूँ यहाँ पर अर्जुन कपूर जी का एक और अमेजिंग सा ट्रैक। एंड मैम जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं, हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, खिलखिलाती रहिए आप, और ये प्यारा सा ट्रैक इंजॉय कीजिएगा दोस्तों। मैं बस लौट कर आती हूँ, आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराइए।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, समय मैं आपको बता देती हूँ, 11:58 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। एंड आप सब ने जोरदार कमाल के आंसर दिए, तो आप सभी का फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप इतनी शिद्दत से रेडियो को सुनते हैं और सवालों के जवाब भी हमें पहुंचाते हैं। इतनी मोहब्बत के लिए हम आपको जितना थैंक यू बोलें कम है। एंड कभी कभी तो आपकी तारीफ में शब्द भी कम पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या आप कहें, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, बिना तारीफ किए आपके दिल रह भी नहीं पाता है। और लेकिन फिलहाल दोस्तों, अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको 3 से 5। अपना रखिएगा ध्यान और यूं ही हमेशा खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, और हाँ, अपना ख्याल भी अच्छे से रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते, मिलूंगी मैं आपको, सी यू सून, टेक केयर एवरीवन।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का पहला अमेजिंग रेडियो स्टेशन जो गाने नहीं बजाता है, आपके लिए काम की बातें भी लेकर आता है। और आज जो ये एपिसोड है फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट, पूरा सुनिएगा, बिकॉज आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद
1: जिला प्रशासन से कि आप जो ट्रांसफार्मर है और उसकी पोजिशनिंग जो है उसका मेंटेनेंस सही रखें, तार ढीले ना रहे, उसके फ्यूज सही। आपदा कंट्रोल रूम है कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट, जल्दी हम आग को काबू पा लेंगे। इसके साथ में हम लोग ये है कि हमारे जो हमारी फायर सर्विस होती है उनको सेंसिटाइज किया जाता है। वो उनका जो एक्शन है वो ये होता है कि अगर कहीं अग्निकांड की घटना हो रही है तो पहले तो जिला प्रशासन ये प्रयास करता है कि प्रचार प्रसार से हम लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड की घटनाएं हो ही ना जिससे कि लॉस हो। तो एक तो हमारी पहले इसलिए प्रचार प्रसार किया समन्वित रूप से, तो हम लोग तीन स्टेप पे इस पे काम करते हैं। एक होता है कि आपदा के पहले, एक होता है आपदा के दौरान और एक होता है आपदा के बाद। ये तीन तरह की कार्रवाइयां होती। तो जब आपदा के पहले होता है उसको हम लोग प्रिपेयरनेस फेज बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसे अभी आपने कहा हीट वेव का सीजन अभी अप्रैल शुरू हो रहा है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम लोगों ने इसकी तैयारी फरवरी से ही शुरू कर दी। तो फरवरी में सर के निर्देश पे, सर की अध्यक्षता में जिला स्तर पे एक बैठक की गई जिसमें सभी जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय सारे अधिकारी वहाँ पे सर के निर्देशन में मीटिंग होती है। उनको कार्रवाई के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है कि कौन किस जिम्मेदारी को किस तरह से तैयारी। तो और कुछ आजकल देखे जा रहे हैं सिलेंडर की लापरवाही, पुराने सिलेंडर है उनकी डेट नहीं देखी गई, वो ब्लास्ट हुआ उससे घटनाएं हो जा रही।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए एक ड्राइव होता है कि लोग जागरूक रहें और फायर सर्विस रेगुलर,
0: अगर किसी को डायल करना है तो वो कौन से नंबर होते हैं?
1: जैसे हमारा आपदा का ये 1077 1077 है जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में, वहाँ का नंबर है। कोई भी आदमी 24 आवर कभी भी अगर कॉल करेगा तो वहाँ पे कॉल तुरंत पिक होगी और संबंधित विभाग को उसको तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा।
0: बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर और काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, आपदाओं की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने अग्निकांड का जिक्र किया, वहीं से अगर मैं बात करूँ किसानों के लिए तो किसानों की फसल जो है वो अपनी फसल को कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कहने के उनके लिए भी बहुत लॉस वाली बात हो जाती है अगर हम अग्निकांड की बात कर रहे हैं तो। यहाँ
1: देखिए इस विषय में एक छोटा सा बहुत सारा जो देखा गया है, एक सबसे ज्यादा विषय ये आ रहा है कि अक्सर करके जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस ज्यादातर देखा जाता है कि किसान जब फसल बो रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर के आसपास भी वो फसल लगाए हुए होते हैं। तो इसमें एक सावधानी का ये लेवल बहुत जरूरी होता है कि कम से कम हम 5 से 10 मीटर के दायरे में कोई फसल वहाँ पे ना रखें, क्योंकि है क्या, आप मान लीजिए कि आपने 10 बीघा गेहूं लगा रखा है और आपने 5 मीटर के दायरे को छोड़ रखा है तो आपने 10 बीघा गेहूं को जोखिम से बचा रखा है, पहली चीज। तो ये तो हमारे किसानों के लिए सुझाव रहेगा कि वो कम से कम जहां भी इस तरह का ट्रांसफार्मर है तो वहां के 4-5 मीटर के दायरे में कम से कम फसल को ना रखें, उस एरिया को खाली छोड़ दें। और बिजली विभाग के लिए निर्देश जाता है जिला प्रशासन से कि आप जो ट्रांसफार्मर है और उसकी पोजीशनिंग जो है उसका मेंटेनेंस सही रखें, तार ढीले ना रहें, उसके फ्यूज सही रखें। पब्लिक के लिए रहता है खेतों में हो या घर में हो, अक्सर करके हम देखते हैं कि अपने सांस सौकत पे और अपनी जरूरतों पे हम ज्यादा व्यय कर लेते हैं, लेकिन जहां इस तरह की बात आती है तो वहां पे जैसे जो घर की वायरिंग है उसको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तार डाले जाएं, उसको प्रॉपर चेक कराते रहें, ढीले तार ना रखे जाएं, कटिया बचाने लगाने से बचें, जगह जगह खुले तार हम लोग लगा लेते हैं और जैसे तैसे काम चलाते हैं, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर हम वही चीज अवॉइड कर देते हैं
1: जी।
0: सो दोस्तों आपको ये चीजें बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत काम की चीजें। सर अगर मैं बात करूँ वही जो लोग पशुपालन करते हैं तो ऐसे में पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं वो लोग?
1: देखिए पशुओं की बात अगर की जाए तो ये माना जाता है कि पशु जो है वो भावनात्मक रूप से कहीं कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं उनके एसेट्स भी होते हैं और वो उससे जुड़े भी होते हैं।
0: करेक्ट।
1: तो जैसे ही हमारा मानव जीवन इस हीट वेव की गर्मी से भयंकर लू से प्रभावित होता है वैसे पशु भी इससे अछूते नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें बदलते परिवेश में ध्यान रखना होगा कि पशुओं को जहां तहां छुट्टा ऐसे ना छोड़े, बल्कि वो आज के समय में आपकी एसेट्स हैं, आप उनको वैसे ही ध्यान रखें जैसे इंसानों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि उनको बंद जगह में जैसे टीन सेट वगैरह है या टाट के बोरे वगैरह से कवर कर लें एरिया को, पानी वगैरह का छींटा मारें, एक दो बार उनको नहलाते रहें, और खास करके जो सुबह का 10 से 4 बजे का समय उस दौरान पशुओं को बिल्कुल भी बाहर न रखें। और अगर आपको लगता है कि पशु ने खाना छोड़ दिया है, चारा राल वगैरह गिर रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा छूने से पता लग सकता है, तो आप नजदीकी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा केंद्र नजदीकी हैं, वहाँ पे आप संपर्क करके उनको वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आम पब्लिक आपको सुन रही है, आम जनता, अगर वो कोई आपकी टीम से कनेक्ट होना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या कोई अगर इस तरह की आपदाएं उनके आसपास उन्हें देखने को मिलती है, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अभी आपने एक तो नंबर भी बताया, मुझे याद है अभी हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, इसके अलावा और कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
1: देखिए, आपदा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जो तहसील में नोडल होते हैं ये संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं वो वहाँ संबंधित तहसील के नोडल होते हैं आपदा के मामले में, चाहे हीट वेव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे फसल क्षति हो, जो भी हो, तो उसके वो नोडल होते हैं, साथ में तहसीलदार महोदय भी होते हैं। तो ये लोग कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप वहाँ पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, जो बच्चे स्कूल्स जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पेरेंट्स को रखनी चाहिए ध्यान में?
1: देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं यही कहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा कि खाने पीने के मामले में ध्यान रखना होगा हमें। हम अक्सर करके जो हमारा फास्ट फूड का ये सिस्टम आजकल जो चल रहा है संस्कृति, इससे तो हमें निजात पाना चाहिए। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी खाना दीजिए वो ताजा दीजिए और लिक्विड डाइट की मात्रा बढ़ा दी जाए बच्चों में। साथ में हम ये देखते हैं कि अक्सर करके देख लेते हैं कि वो जैसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीजें उसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। और ये देखते रहें कि अगर टेम्परेचर उनका ज्यादा है, बच्चों का बुखार ज्यादा है, तो आप जिस तरह से उनको स्कूल भेजते हैं साथ में आप हेल्थ केयर सेंटर भी तत्काल दिखा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर की सबको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं। और साथ में ये है कि अगर आप उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले रहा है, तो रूरल एरियाज में अक्सर देखा गया है कि आदमी उसको बहुत कैजुअल ले लेता है, नॉर्मल ले लेता है, और ये जो ये आपकी जो झाड़ फूंक है या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में, कोई बोलता है कि दांत निकल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और सारे बहुत सारे कारण होते हैं, लोग मान के उसको अवॉइड करते हैं। तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो चूंकि एक्टिव भी रहते हैं, तो ऐसे में एक समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हेल्थ अंदर से इशू उनका होता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तत्काल उनको कम से कम, अगर हम बात करें कि उनको वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो कम से कम चीनी नमक और पानी जो कि हर जगह उपलब्ध है, साफ पानी गुनगुना कर लें, फिर ठंडा कर लें उसको, और उसमें थोड़ा चीनी नमक डाल के जरूर पिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, और जहां नजदीकी हॉस्पिटल है वहां दिखा लें।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आपदा के समय में जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूं?
1: देखिए, मैंने जागरूकता के स्तर पे तो आपको बता ही दिया, अब इसके साथ कार्रवाई के स्तर पे अगर हम बात करें, हीट वेव की जैसे ही स्थिति होती है उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पानी। तो पानी की आपूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी तहसीलों में और खास करके नगर निगम एरिया में प्याऊ सेंटर होते हैं, जिनको आप जैसे परमानेंट कुछ लगाए गए हैं जिसको वाटर कूलर ठंडा पानी की आपूर्ति हो सके। अभी वर्तमान में अगर बात करें हमारे, तो मुरादाबाद में 53 जो है वो परमानेंट वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस भी हम लोग करा लेते हैं, कुछ कुछ खराब हो जाते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया भी चल रही मेंटेनेंस कराने की। साथ में अस्थाई प्याऊ सेल्टर भी हम लोग लगाते हैं जिससे कि पानी की आपूर्ति, और इसके साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो है टैंकर्स जो पानी के होते हैं उससे भी सप्लाई की जाती है, जगह जगह पानी की आपूर्ति की जाती है, और जलकल विभाग जल निगम ये भी आपूर्ति सुनिश्चित कराता रहता है। इसके लिए निर्देश है कि पानी की आपूर्ति कहीं भी बाधित ना हो। साथ में ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो अस्थाई सेल्टर की बात की जाती है, भी जैसे आपके मजदूर वर्ग हैं, ये ठेला वाले हैं, साथ में जो आपके ये ई रिक्शा वाले हैं, तो कहीं कहीं जगह में आप देखते होंगे कि अगर हरे पेड़ नहीं है, छावदार वृक्ष नहीं है, बहुत खुला बहुत बड़ा चौराहा ही टाइलैंड जिसको बोलते हैं, खुली जगह है, जाम लग गया है, तो वहां पे क्या है कि आसपास कोई ऐसा हम अस्थाई शेल्टर भी बनाते हैं टेंट तंबू से, जहां कूलर वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, फर्स्ट एड किट होती है, डॉक्टर्स की टीम होती है, इसका भी योजना में शामिल किया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह की, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या किसी को वैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम वहां पे वो आराम कर ले और उसको मेडिकेशन दिया जा सके। तो ये भी कार्रवाई हमारे स्तर से होती है और तहसीलों को भी निर्देश दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में खास करके आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह बहुत सारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो उसको रिचार्ज करने के लिए पानी वैकल्पिक साधनों से उसमें पानी भर दिया जाता है कि पशुओं को भी पानी पीने, मतलब पानी की उपलब्धता रहे। तो ये भी कार्रवाइयां वहां पे पैरेलल चलती रहती है। हाँ, एक चीज और हमारा कहना है कि आपदा में आप सावधान रहें और जागरूक रहें। साथ में ये है कि अगर आपदा से नुकसान होता है, जैसे हम बात करें जनहानि की, तो जनहानि में सरकार राह देने का कि उसका जो परिवार है वो हम उस किसी के जीवन को वापस तो नहीं ला सकते अगर किसी की जनहानि हो गई, आपदा से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार का प्रावधान है कि 4 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता उसको देते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि लोग एक नियम होता है पोस्टमार्टम कराने का, तभी हमको कॉज ऑफ डेथ पता लगता है कि किस कारण से डेथ हुई है, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है। अब उसमें लोग थोड़ा अल्टी ये सब रखी जा सकती है, तो जो और अक्सर करके देखिए कि बहुत सारे वैसे ज्वलनशील सामान जो किचन में रहते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमके जागरूक होने की जरूरत है कि कम से कम अपने किचन को जैसे हम मॉडिफाई करके रखते हैं तो साथ में सेफ्टी मेजर्स भी रखें। फायर डिस्टिंग्विशर के छोटे आते हैं उसमें जो सेफ्टी की, आप तुरंत उनसे आग को काबू कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में ये है कि मॉक ड्रिल कराई जाती है, उसमें प्रैक्टिस करें, और चाहूंगा कि सावधानी ही बचाव है।
2: बिल्कुल।
1: और हम आपको इस विषय में थोड़ा सा बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने किचन में भी जाके देखें कि क्या वहाँ फायर डिस्टिंग्विशर है, तो शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है।
2: बिल्कुल।
1: तो छोटे फायर डिस्टिंग्विशर जो किचन में रखे जा सकते हैं, या 2 बकेट पानी या बालू की बाल्टी, ये सब रखी जा सकती है, तो जो और अक्सर करके देखिए कि बहुत सारे वैसे ज्वलनशील सामान जो किचन में रहते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमके जागरूक होने की जरूरत है कि कम से कम अपने किचन को जैसे हम मॉडिफाई करके रखते हैं तो साथ में सेफ्टी मेजर्स भी रखें। फायर डिस्टिंग्विशर के छोटे आते हैं उसमें जो सेफ्टी की, आप तुरंत उनसे आग को काबू कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में ये है कि मॉक ड्रिल कराई जाती है, उसमें प्रैक्टिस करें, और पानी की बाल्टी वगैरह रखें गर्मी के दिनों में खास करके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी माताओं बहनों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा करके आप खाने का जो बनाने का टाइम है वो चेंज कर लें। सुबह 8 बजे से पहले खाना बना लें और शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद, शाम में देर रात को खाना बनाएं, दोपहर में खाना ना बनाएं। इसके साथ एक चीज और ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि हम लापरवाही करते हैं, जो आग वगैरह है कहीं भी चलते हुए छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम उसका भी ध्यान रखें, जो भी आग है उसको बुझा दे ठीक से, जिससे कि कोई भी वैसी घटना ना हो।
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने तमाम जानकारी दी।
1: और मैं दूसरी बात, जहाँ तक गाड़ियों का है, तो गाड़ी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एक तो 2-3 चीजें इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गाड़ियों में भी जैसे वायरिंग वगैरह होती है, गाड़ी का इंजन होता है, प्रॉपर सर्विस कराइए, वायरिंग मेंटेन रखिए। और एक छोटे से उसमें भी ये SOP है कि आप छोटा डिस्टिंग्विशर आता है उसको आप गाड़ियों में, फायर डिस्टिंग्विशर रहने से उसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, उसकी मॉडल भी कराई जाती है, तो वो कम से कम ये रहेगा कि आग लगती है जब तक आप इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं कैसे आग को बुझाएं, तब तक वो बड़ा स्वरूप कर लेती है। एक आम जन को हम और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आम पब्लिक को भी, कि आप अक्सर करके देखते होंगे बहुत लोग इस तरह से नासमझी करते हैं, हालांकि ये मना भी है, कि आप कोई भी ज्वलनशील जैसे चाहे ये पेट्रोल वगैरह है, ये कभी भी गर्मी के दिनों में इसको डिब्बे में लेने की कोशिश ना करें, ना या डिब्बे में ले करके ना जाएं, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि कब ये जानलेवा बन जाए। गाड़ी में कभी भी डिब्बे में आप पेट्रोल लेके उस तरह का ज्वलनशील सामान लेके ना चलें, कृपा करके बचाएं। और गर्मी के दिनों में बच्चों को गाड़ियों में बंद करके ना छोड़ें, ये मेरी अपील है, बच्चों को लेके सेंसिटाइज रहें। घर में कहीं अगर आग है, कहीं खाना बन रहा है, तो आसपास छोटे बच्चों को ना छोड़ें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं जबकि बच्चों में गाड़ी गाड़ी, गाड़ी में बच्चे को बंद कर दिया गया, गर्मी का दिन है, वो सफोकेशन से उसको जो है दिक्कत हो गई। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे उपाय हैं कि हम बचाव कर सकते हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी। साथ में एक बहुत बड़ी अपील मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा, जो कि सरकारी अभी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दो चीजें देखने को मिली हैं कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो चूंकि वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, तो वहां पे गर्मी का इफेक्ट कम देखते हैं, लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है, चूंकि बिल्डिंगें बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो उस प्रॉपर हो नहीं पाता है। साथ में हमारे ग्रीन कवर भी कम है, तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा, ऑक्सीजन भी हमारे लत हो गई। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे उपाय हैं कि हम बचाव कर सकते हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी। साथ में एक बहुत बड़ी अपील मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा, जो कि सरकारी अभी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दो चीजें देखने को मिली हैं कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो चूंकि वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, तो वहां पे गर्मी का इफेक्ट कम देखते हैं, लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है, चूंकि बिल्डिंगें बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो उस प्रॉपर हो नहीं पाता है। साथ में हमारे ग्रीन कवर भी कम है, तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा, ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम सब इसको जिम्मेदारी को समझें तो हमारा घर भी अच्छा होगा कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला अपने परिवार के गार्जियन से आपस में एक दूसरे से, जैसे बहुत सारे होते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं और हम जो है आपके शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट की बात करते हैं। हम चाहेंगे कि बच्चे ये गिफ्ट मांगे अपने पेरेंट्स से कि हमको 10 गमले घर पे पेड़ के लगाने हैं। महिलाएं अपने हस्बैंड से मांगे कि 10 पेड़ घर में लगाने हैं जो आप छत पे सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेशन तो होगा ही, और साथ में क्या है कि जो आपका एनवायरमेंट है वो भी थोड़ा फेयर होगा, अच्छा होगा और मेंटेन होगा। अब आप समझिए, अगर 1,00,000 घर मुरादाबाद शहर में मैं मान लूं हाउस होल्ड, तो अगर 10 पौधा हर घर लगाए अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो 1,00,000 पौधे को वो देख भी सकते हैं, उसका प्रॉपर केयर कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेशन का आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और देखी गई है कि जो छत होती है, छत आप भी जानते हैं कि जितना काला होता है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है।
0: करेक्ट।
1: तो और व्हाइट शर्ट पहनने के लिए, लूज कपड़े पहनने के लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग लूज कपड़े पहने, व्हाइट शर्ट पहने, तो क्या है कि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस चली जाती है एनवायरमेंट में। तो अगर छतों को, छत के ऊपर सिरे को व्हाइट करने के लिए रूफटॉप हम लोग बोलते हैं कि आप पूरे घर को बहुत पेंट कराते हो, और होता क्या है कि अगर छत को आप व्हाइट करा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप अपने घर का टेम्परेचर 2 से 4 अंश सेल्सियस तक कम कर सकते। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 4,000 स्क्वायर फीट, 3,000 स्क्वायर फीट आपकी छत है और उसके टेम्परेचर को हम 2 से 4 अंश सेल्सियस कम कर देंगे, तो उसका एक परिणाम ये भी होगा कि आपको एसी कम चलानी पड़ेगी, ये भी हो सकता है, और घर का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। तो ये मेरी अपील है कि रूफ टॉप के तहत लोग अपनी छत के ऊपरी वाले सिरे को भी व्हाइट पेंट से ये पेंट कराएं। हालांकि सरकारी भवनों को पेंट कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के द्वारा निर्देश चले गए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, और 10.5 लाख स्क्वायर फीट छत हम लोगों ने चिन्हित की सरकारी भवनों की, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के हैं, ब्लॉक्स के हैं, फायर सर्विस के, थानों के हैं और जो सरकारी भवन है उनके हैं, जिसपे हमने अभी लगभग 1,00,000 स्क्वायर फीट छतें हमारी व्हाइट रूफ टॉप हो गई हैं, जिससे कि हम इस जो हमारी गर्मी है इसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर सकें, एनवायरमेंट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें।
0: सर बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला, इतना महत्वपूर्ण समय हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, और सबसे अच्छी बात आपने जो गमलों का एडवाइस दिया ना, ये बड़ा अल्टीमेट था, बड़ा यूनिक था, और साथ में आपने बताया कि छत को हम कैसे व्हाइट पेंट करा के गर्मी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब एसी कम चलेगी तो बिल भी कम आएंगे, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो जाते जाते तमाम लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश
1: देना चाहूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के साथ पूरी जिला प्रशासन टीम आपके सेहत स्वास्थ्य को लेके बहुत ही संवेदनशील हैं, और सरकार स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, उनसे अनुरोध करिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से, सर की तरफ से आप सबसे पुनः यह अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्मी के दिनों में दोपहर में घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें, और बहुत सारे जो उपायों पे बात की गई इसका ध्यान रखें, आपकी सेहत ही हमारी संपत्ति है। धन्यवाद।
0: थैंक यू सर। आप सुन रहे थे FM मुरादाबाद 89.6 विद RJ आनंद। फिर मिलते हैं किसी और नए कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल घुमाइएगा नहीं। स्टेडियम
2: जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रीना। दोस्तों सोचिए, अगर हमारी थाली में हरी सब्जियां, दालें और दूध जैसी चीजें गायब हो जाए तो क्या होगा? कमजोरी, थकान और बीमारियां हमें घेर लेगी, है ना? लेकिन अगर हमारी थाली में रंग बिरंगी हो, हरी सब्जी, पीली दाल, लाल टमाटर और सफेद दूध से भरी हुई, तो सेहत भी खिल उठेगी और जिंदगी भी। तो आज सेहत से ही लाभ कई में हम बात करेंगे पोषण की, यानी स्वस्थ जीवन की असली चाबी। इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस कड़ी के एक बहुत नित्य साथी सेहतिया जी। सेहतिया जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, और मुझे उम्मीद है हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे होंगे। मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है कि आप हर बार एक नई थीम लेकर आती हैं हमारे श्रोताओं को, और इस बार तो सबसे जरूरी पोषण। अगर हम पोषण अच्छा लेना शुरू कर दें तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी और हम ऐसे ही काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हमने सोचा जब पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 में मनाया जा रहा है तो हम क्यों पीछे हटे अपने श्रोताओं को बताने से।
1: आरजे जी, यही तो रेडियो की खूबी है कि आप अपने श्रोताओं को हर जानकारी हमेशा जोड़ कर रखते हैं। आप अपने श्रोताओं को हर जरूरी जानकारी से हमेशा जोड़ कर रखते हैं। पोषण की बात चल रही है तो मुझे अपने गांव की घटना याद आ रही है। हमारे गांव में एक नन्ही सी बच्ची है, त्रिशा, घर की इकलौती और सबकी लाडली। प्यार इतना ज्यादा था कि घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते थे, मगर उसके माता पिता और उसके रिश्तेदार हर रोज उसे चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे के और पैकेट वाले खाना ला लाकर खिलाते थे। सोचिए, मासूम बच्ची जब खुश होकर खाती थी तो किसी ने रोकना ठीक नहीं समझा। लेकिन अचानक से ही उस बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और हालत ये हो गई कि लगातार उल्टियां होने लगी। परिवार घबरा गया, डॉक्टर के पास उसको लेकर गए। कई दिनों तक इलाज चला। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इस बार बाहर का जंक फूड बिल्कुल मत देना, वरना हालत और भी बिगड़ सकती है। देखा आपने, थोड़ा सा स्वाद, थोड़ी सी लापरवाही और बच्ची की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है।
0: हाँ, हम अपने श्रोताओं को ये गलती नहीं करने देंगे।
1: जी चलिए, बिना देरी के अब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करते हैं, और इसकी थीम है सही आहार बेहतर जीवन, यानी ईट राइट फॉर बेटर लाइफ।
0: तो आप हमारे श्रोताओं को सही बताइए कि सही आहार का मतलब आखिर है क्या और ये हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाता है।
1: सच कहूँ रीना जी तो पोषण का विषय हर परिवार के लिए उतना ही जरूरी है जितना घर की नींव। बिना सही पोषण के कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि ये राष्ट्रीय सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसके शुरुआत कैसे हुई।
1: देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में हर साल 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और तब से लगातार इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है और सही और संतुलित खानपान और पोषण से ही स्वस्थ जीवन संभव है। और इस साल सन 2025 का थीम है ईट राइट फॉर बेटर लाइफ। इसका मतलब है कि अगर हम सही खानपान अपनाएंगे तो न केवल बीमारियों से बचेंगे बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे।
0: वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन सेहतिया जी, जब हम पोषण की बात करते हैं तो अक्सर सुनते हैं कि भारत में बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: जी आरजी रीना जी, बिल्कुल। भारत में कुपोषण अभी भी एक गंभीर चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के आंकड़े हमें बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 35.5% बच्चे अवरुद्ध यानी कम लंबाई के हैं और 19.3% बच्चे यानी उनका वजन कम है और 32.1% बच्चे अंडरवेट हैं। यही नहीं, अमीनिया यानी खून की कमी भी सबसे बड़ी समस्या है। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में 67%, 5 बच्चों में 59% किशोरियों और लगभग 57% महिला अमीनिया से पीड़ित हैं।
0: ओहो, ये तो सचमुच चिंता की बात है। तो क्या इसका असर सिर्फ शरीर पर होता है या फिर पढ़ाई लिखाई और काम काज पर भी पड़ता है?
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल असर पड़ता है। कुपोषण से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। वो जल्द ही बीमार पड़ते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग, आगे चलकर वो समाज और देश की प्रगति में भी पूरा योगदान नहीं दे पाते। एक कुपोषित बच्चा बड़ा होकर भी एक कमजोर रहता है और अक्सर बीमार रहता है।
0: ठीक है, अब ये बताइए कि सही पोषण का मतलब क्या है, हमारी थाली में आखिर क्या क्या होना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छा सवाल आरजी रीना जी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने इसके लिए गाइडलाइंस दी है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी थाली संतुलित होनी चाहिए। इसमें तीन बड़े हिस्से जरूरी हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, रोटी, आलू और अनाज जो हमें ऊर्जा देते हैं।
0: सेहत या भैया, प्रोटीन का भी और विटामिन का भी तो बताइए।
1: हाँ हाँ अर्जी रीना, बताता हूँ। एक तो तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है, तो श्रोताओं, दूसरा प्रोटीन जैसे दाल, अंडा, दूध, मछली और मांस जो शरीर की मरम्मत और विकास में काम आते हैं। और तीसरा विटामिन और मिनरल्स जो फल और सब्जियों से मिलता है जो हमें बीमारियों से बचाते हैं।
0: ये सब तो काफी अच्छी जानकारी है, पर सेहतिया जी, लोग सोचते हैं तेल घी से मोटापा और हृदय की बीमारी होती है। खैर, हमारा मन तो अटपटा चटपटा खाने से मानता ही नहीं है।
1: हाँ भाई, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, पर कभी कभार तो चल जाता है। हमारी रोजमर्रा की थाली में थोड़ी मात्रा में तेल घी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। नमक 6 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सबसे जरूरी, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
0: तो क्या इसका मतलब है कि हर इंसान को दिन भर में लगभग कितनी कैलोरी लेनी चाहिए?
1: बहुत ही अच्छा सवाल आरजे रीना जी। प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 2000 से 2500 कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन उम्र, लिंग और काम के अनुसार बदलता है।
0: अच्छा सेहतिया जी, इतना सब कुछ बताया तो ये भी हो सकता है कोई सही मात्रा में ना ले पोषण, तो सभी अंगों का कितना भाग होना चाहिए?
1: प्रोटीन लगभग 50 ग्राम रोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कुल ऊर्जा का 55 से 60% होना चाहिए और वसा यानी फैट 30% से ज्यादा नहीं। साथ ही 25 से 30 ग्राम फाइबर रोज लेना जरूरी है जो हमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज से मिलता है।
0: वाह, अब ये सब के लिए बड़ी उपयोगी जानकारी है, लेकिन क्या सिर्फ संतुलित आहार से ही सब ठीक हो सकता है? ठीक हो जाएगा, सरकार भी तो कई कार्यक्रम चला रही है।
1: बिल्कुल, सरकार कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है, जैसे एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB। इसका लक्ष्य है बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया कम करना। इसके लिए आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं और समय समय पर कीड़ों की दवा दी जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस यानी NDD, इसमें स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को साल में 2 बार अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है उनके पेट में कीड़े न पनपे।
0: और वो माँ करके एक प्रोग्राम था वो?
1: अरे हाँ हाँ भाई, वो भी बता रहा हूँ, माँ का स्नेह माँ कार्यक्रम। इसका मकसद है कि हर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पीना शुरू करें और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। लैक्टेशन मैनेजमेंट सेक्टर्स LMCS, यह बीमारी या समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए माँ का दूध सुरक्षित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRCS, ये ऐसे बच्चों के लिए है जो गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। यह उन्हें इलाज और पोषण यहाँ उन्हें इलाज और पोषण दोनों दिए जाते हैं।
0: सेहतिया भैया, आप एक और भूल रहे हैं, विटामिन ए वाला एक प्रोग्राम था ना?
1: अरे हाँ भाई हाँ, वहाँ भी पहुँच रहा हूँ। और आखिर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, 5 साल से छोटे बच्चों को हर 6 महीने पर विटामिन ए की खुराक दी जाती है।
0: वाह सेहतिया जी, आपने तो सारी जानकारी एक साथ दे दी, लेकिन हमारे गाँव में लोग अक्सर कहते हैं कि फल और सब्जियाँ महंगी है, तो क्या पोषण सिर्फ अमीरों के लिए है?
1: आरजे रीना जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोषण हर किसी के लिए है। हमारी लोकल और मौसमी चीजें जैसे चना, मूंगफली, दालें, गुड़, हरी सब्जियां और मौसमी फल, ये सब बहुत पौष्टिक होते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं है। जरूरी है कि हम इन्हें रोज अपनी थाली में शामिल करें।
0: बहुत बढ़िया सेहतिया जी, हमारे गांव और मोहल्ले में लोग पोषण को लेकर तरह तरह की बातें

0: कुछ बड़े मिथक की परत खोलते हैं।
1: सबसे पहले तो यही सुना है गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खाना खाना चाहिए, चाहे जैसा भी हो।
0: देखिए, ये पूरी तरह गलत फहमी है। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन चाहिए। अगर वह सिर्फ तली भुनी चीजें या सिर्फ चावल रोटी खाएंगी तो माँ और बच्चा दोनों कमजोर रहेंगे। थाली में हरी सब्जियाँ, दालें, दूध, फल और अनाज सब होना चाहिए।
1: ठीक है, अब दूसरा मिथक, लोग कहते हैं बच्चों को 6 महीने से ऊपर ही ऊपर का दूध या खाना देना चाहिए।
0: अरे नहीं आरजे रीना जी, WHO और भारत सरकार दोनों की गाइडलाइन साफ कहती है कि बच्चे के जन्म के पहले 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। यही उसका सबसे और पर्याप्त पोषण है। ना पानी, ना शहद, ना ऊपर का दूध, सिर्फ माँ का दूध।
1: अब सुनिए तीसरा, लड़कों को दूध, घी और फल ज्यादा देना चाहिए, लड़कियों को उतना ही जरूरी नहीं।
0: यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है, यही लैंगिक भेदभाव और बच्चों की सेहत बिगाड़ता है। सच्चाई ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर का पोषण मिलना चाहिए। किसी को कमजोर रखने का मतलब पूरे परिवार और समाज को कमजोर करना है।
1: बहुत सही, लेकिन एक और मिथक है, मीठा और जंक फूड बच्चों की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस दांत खराब करता है।
0: नहीं आरजे रीना जी, ये तो सबसे खतरनाक सोच है। लगातार मीठा और जंक फूड बच्चों को मोटापा, डायबिटीज और पेट की बीमारियां देता है। सिर्फ दांत ही नहीं, पूरा शरीर बीमार हो जाता है।
1: अब अगला मिथक, पानी या दाल में डाला गया आयरन फॉलिक एसिड पाउडर दवा है और इसे साइड इफेक्ट होगा।
0: बिल्कुल गलत, यही सुरक्षित पोषण सुधार तकनीक है। खाना खाने का स्वाद नहीं बिगड़ता और शरीर को जरूरी आयरन मिलता है। इससे बच्चे और महिलाओं में अमीनिया कम होता है।
1: ठीक है, एक और सुना है खून की कमी सिर्फ औरतों को होती है, पुरुषों को नहीं।
0: गलत फहमी, ये भी गलत फहमी है। अनीमिया पुरुषों में भी होता है, बस दर महिलाओं और बच्चों में ज्यादा। खून की कमी किसी को भी कमजोर बना सकती है।
1: और आखिरी मिथक, नाश्ता छोड़ने से वजन कम होता है।
0: ये तो सबसे बड़ा झूठ है रीना जी। नाश्ता छोड़ने से शरीर थका थका रहता है और दिन भर इंसान ज्यादा खा लेता है। यह सच्चाई है कि नाश्ता करने से वजन नियंत्रण रहता है और सेहत अच्छी रहती है।
1: वाह सेहतिया जी, आपने तो आज पोषण से जुड़े सारे मिथक तोड़ दिए। मुझे लगता है हमारे श्रोता अब और ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अब अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर?
0: आरजे रीना जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सही पोषण ही असली धन है। अगर हम अपने बच्चे और परिवार को संतुलित आहार देंगे तो बीमारियाँ कम होंगी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी। इसलिए सब लोग इस सप्ताह यह संकल्प लें कि हम अपनी थाली को रंग बिरंगी और संतुलित बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तो तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कहीं।
1: वाह सेहतिया जी, आज आपने बहुत ही काम की बात बताई। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1 सितंबर से लेकर यानी कि 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, यानी कि पोषण। हमें अपने डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो शामिल करने चाहिए जिससे हमें यानी कि एनर्जी मिले और हमारे बाल भी सही रहे और हमारे स्किन भी सही रहे। कहते कि हेल्दी खाना ही आपको हेल्दी रखता है। तो आज मेरे साथ कनेक्ट है डॉक्टर किरण मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए।
2: मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, महिला चिकित्सालय में और मुरादाबाद में, और हमारा SNCU का वो है मेनली। तो हम यूनिट्स को देखते हैं, 28 दिन तक के बच्चे सारे हमारे पास ही आते हैं, और साथ में लैक्टेशन यूनिट भी है हमारा। तो उसमें हमारा मदर का भी हमारा पूरा होता है, KMC का भी हमारा यूनिट है, जिसमें कि हम बच्चों को गर्म करना और कैसे उनको गर्माई दे करके लो बर्थ वेट को हमारे को सही करना है।
1: ओके मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक आखिरकार मनाया क्यों जाता है? ये
2: हमारे पास पोषण वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से सरकार भी ये प्रयास करती है कि इस तरह के वीक्स अगर वो बनाते हैं तो हर जना सेम टाइम पर पे उस चीज को पोटेंशिएट कर देता है।

0: उस बात को, उस हमारा जो भी हम एक थीम को लेकर के चलेंगे, तो कुपोषण वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत है, क्योंकि भुखमरी भी काफी है
1: बिल्कुल,
0: और गरीब लोग भी काफी हैं, है ना, एंड दूसरा अमीर भी हैं तो दे डोंट नो द स्टाइल ऑफ ईटिंग, तो वो फिर ज्यादा वो मीडिया और उसके हिसाब से जैसे जो चीजें ज्यादा पब्लिसाइज हो रही हैं उस पे चले जाते हैं, तो मतलब ओबेसिटी भी कुपोषण है, ओवरवेट होना भी
1: बिल्कुल
0: कुपोषण है, और अंडरवेट होना भी कुपोषण
1: है,
0: तो वी कैनॉट से कि कोई अमीर है तो वो वेल न्यूट्रिश्ड है ना, वेल नरिश्ड है, क्योंकि उसके अंदर भी हमारा हम देखें तो वो बच्चे ओवरवेट हैं, क्योंकि उनका जो मोड ऑफ ईटिंग है एंड चॉइस ऑफ ईटिंग है वो बिल्कुल ही अलग है, तो इस वजह से कुपोषण दोनों हर लेवल पे हर जगह पे हमारे को मिल रहा है।
1: तो मैम जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने डाइट में, रेगुलर डाइट में ऐसा क्या शामिल करना चाहिए जिनसे उनको एनर्जी मिले, और डाइट में अपने क्या क्या ऐसी चीजें जो शामिल करे वो?
0: देखिए जो भी हम जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, जो वहाँ का लोकल फूड है वो हमारे लिए बेस्ट डाइजेस्टेबल है, जो फ्रूट है वो क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से है क्योंकि वो महंगा है इसलिए वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा, जो सीजनल फ्रूट होगा भले ही वो अमरूद हो, वो केला हो, है ना, या जिस सीजन में जो चीज हो रही है, एप्पल है तो एप्पल का हमें लेना है, सीजनल फ्रूट अगर हम लेंगे तो उसमें हमारे को सारे विटामिन एंड जितना भी उसका मिनरल्स अगर मिलने हैं वही मिलेंगे। सेम चीज हमारे पास वेजिटेबल्स के लिए है, जितनी फ्रेश होंगी एंड कितनी टाइमली हम उसको यूज कर लेंगे, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि मंडी से गई, वहां से मतलब खेत से आया तो मंडी पे आया, ठीक है, फिर मंडी से वो मार्केट में आया, मार्केट से हमारे फ्रिज में गया, फिर भी हम धीरे धीरे ओवर अ वीक हमने से खाया, तो जितना वो स्टेल होता चला जाएगा, पुराना होता चला जाएगा, उतना उसके जो मिनरल्स एंड जो उसकी पौष्टिकता है वो चीज कम होती चले जाती है, इसलिए हमारे को हर चीज कोशिश करनी है कि फ्रेश खाए जो भी हम खाएं, जैसे हमारे सिस्टम में है रोटी सब्जी दाल चावल, हम दाल लें या नॉन वेज लें, प्रोटीन हमें उसी से मिलता है, ठीक है, दूध दही फल एंड सैलड, ये अगर हमारे न्यूट्रिशन जैसे हमारा ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन है जो हमारी थाली बनती है, तो वो सबसे अच्छा फूड है, चीपेस्ट भी है एंड बैलेंस्ड भी है। जितना हम अलग अलग चीजों में जाते हैं, जितना ये फास्ट फूड्स आ गए, ठीक है, विच इज कॉल्ड जंक फूड, तो वो वाकई में जंक है, बिकॉज उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं है, और उसमें हमारा अमाउंट ऑफ फैट एंड चीज ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, तो वो पब्लिसाइज इतना हो गया है मीडिया उसमें एडवर्टीजमेंट्स वगैरह उसकी वजह से ना, तो बच्चे उसकी तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट हमारे को उनको इस चीज को एजुकेट करना चाहिए, सरकार ने तो अपनी तरफ से अच्छा कर रखा है, क्योंकि साइंस जब से भी स्टार्ट होती है फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर हमेशा न्यूट्रिशन एंड डाइट पे ही होता है, तो दैट इज एन अवेयरनेस जो कि बच्चे को अपने स्कूल में ही मिल रही है, टीचर से ही मिल जा रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, और उसमें वो समझ में आता है उनको कि क्या क्या चीजें उनको किस तरह से मिल रही है, बैलेंस डाइट क्या है, वो सारा स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। अब इस वीक में हमने उसको और पोटेंशिएट कर दिया, हमने और अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो उन्हें मीडिया में भी सुनने को मिल गया,
1: हाँ जी,
0: जो कि एक मीडिया की तरफ से कोई मैसेज आता है तो बच्चे काफी अटेंटिव है, ऑन द मीडिया, और एज के हिसाब से हम लोग रिलेटिवली काफी कम उसको यूज करते हैं, तो ये एक मैसेज हमारा बड़ा अच्छा सा जाता है उससे।
1: तो मैम जो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाती हैं उनके लिए डाइट कितना जरूरी है, और अपने डाइट में ऐसा क्या शामिल करें ताकि बच्चों को भी पोषण मिले और उनको भी पोषण मिले?
0: जैसे पूरी प्रेगनेंसी रही तो सब वो जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को मिला वो मदर से ही मिला,
1: हाँ जी,
0: अब डिलीवरी के बाद भी उसको मदर से ही मिलना है, तो इस वजह से मदर अब डबल तो खा नहीं सकती,
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारे को कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनसे हमें सप्लीमेंट करना होता है, उसमें हमारे पे ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, है ना, मिल्क आ जाता है, जो चीज वो इजिली ले ले कंज्यूम कर ले, और उसको हमें ध्यान देना है कि उसकी डाइट में प्रोटीन्स भी अच्छी हो, दो बार मुंह से डाल दें दलिया दें, ठीक है, क्योंकि दलिया में हमारा फाइबर्स भी आ जाता है, और जिसमें फाइबर आएगा साथ में विटामिन भी आ जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, साथ में हम फ्रूट्स ले सकते हैं जो भी सीजनल फ्रूट्स हों, एंड ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, जैसे बोले, बस हमें इतना ध्यान रहना पड़ता है कि जो सिजेरियन वाले हैं क्योंकि उनमें हीलिंग होनी है अभी जितने टाके हैं, तो उसमें जो फैटी चीजें हैं, ऑयली चीजें हैं, घी का इस्तेमाल थोड़ा संभल के कर लें, बाकी और चीजें ले सकते हैं।
1: और ऐसी क्या चीज है जो उनको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए?
0: कोई चीज ऐसी नहीं है नहीं लेनी चाहिए, ये जो हमारे सिस्टम में बना हुआ है परहेज फॉर 3 मंथ्स, और कितनी मदर आज तक भी ऐसी आती है जो कि सिर्फ मूंग की दाल खा रही है 3 महीने, विच इज इम्पॉसिबल, कोई जना 3 महीने मूंग की दाल लगातार खाए तो वो खा ही नहीं सकता, है ना, अल्टीमेटली अवॉइड ईटिंग इट। और हमारा जो बच्चादानी है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज बिल्कुल डिफरेंट, है ना, तो बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चादानी अपनी जगह पे आ गई, नसें बंद हो गई 42 डेज में, है ना, तो हमारा 6 वीक्स का जो है उस बीच अगर हमें परहेज करना है तो हम ठंडे का कर लें। आप ऐसे मान लो कि नसें खुली हैं, अगर उनको करना भी है तो ठंडी वाली चीजें, बर्फ की चीजें, कोई भी ऐसी चीज है फ्रिज व्रिज की रखी हुई, उसका परहेज कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फूड में देखें नीड एवरीथिंग, सब कुछ डाइजेस्ट होता है, इसे कोई ऐसा परहेज नहीं है कि हमारे को सिर्फ मूंग मसूर ही खानी है 3 महीने के लिए, कुछ करनी है नहीं। उससे क्या है, मतलब मदर का तो न्यूट्रिशन हमने खराब कर ही करी थी, उसका दूध भी नहीं अच्छा उतरेगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: जितनी अच्छी डाइट उसकी होगी उतना ही हेल्दी उसका मिल्क भी होगा। वही चीज है, क्योंकि 6 महीने तक हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं, ठीक है, तो बच्चे को हमें कुछ भी नहीं देना है, तो वो टोटल डिपेंड पे उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। तो मदर का हम जितना न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे तो उतना हमारा बच्चा ही तो हेल्दी होगा।
1: और जो हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग होते हैं मैम, उनको एक्चुअल में जो सही डाइट है उनके लिए, बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि उनके दांत भी टूट जाते हैं, तो उनको ऐसा डाइट में क्या शामिल करना चाहिए जिससे उन्हें दिक्कत भी ना और पूरी हेल्दी यानी कि पूरी अच्छे से पोषण उनको मिल जाए।
0: देखिए डाइट तो बेसिकली वही है,
1: हाँ जी,
0: है ना भाई, हमारा है दाल है सब कुछ, तो ये हम कर सकते हैं कि मतलब बहुत हैवी वाली चीजें उनको ना दे, क्योंकि थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो आई जाती है उनको विद टाइम।
1: हाँ जी,
0: तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको हमने जैसे खिचड़ी के फॉर्म में दे दिया, उसी में हमने वेजिटेबल्स भी मिला दी, ठीक है, हमने रोटी या कुछ बोती तो हमने उनको दे दिया दाल में, क्योंकि प्रोटीन्स की कमी होती है मेनली एज के साथ। रोटी तो वो खा ही लेते हैं पर प्रोटीन्स का इतना वो ध्यान नहीं रखते, सब्जी अपना मन के हिसाब से खा ली। एंड ओल्ड एज एक बड़ी ही डेलिकेट एज है एज अ चाइल्ड विद ईगो, मतलब अपना चाहते भी हैं अटेंशन, देना भी पड़ता है, नहीं दे पाए तो नाराज भी हो जाते हैं है ना? पर बच्चे को थोड़ा डर होता है।
1: हाँ, बिल्कुल जी।
0: और उनसे हम डरते हैं है ना, ये डिफरेंस होता है।
1: बिल्कुल जी,
0: तो इसलिए इट इज अ वेरी नाइस थिंग कि हमारे को उनको प्यार से भी रखना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, डांट भी खानी पड़ती है, पर यह है कि मतलब उस हिसाब से उनको बस उनकी उन्हें एक अफेक्शन मिल जाए, उन्हें टाइम मिल जाए हमारा।
1: तो मैम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि मोटापे और कुपोषण से बचने के लिए हमें क्या करना है?
0: देखिए मोटापा हटाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे को खाना बंद कर देना है, ठीक है, डाइट प्लान्स चल रहे हैं बिल्कुल भूखे रहते हैं वो, या तो आप उस चीज को बिल्कुल ही किसी डाइटिशियन के अंडर ही करें, ठीक है। मेन थिंग इज जो हम खा रहे हैं, हमारी लाइफ इतनी स्टैग्नेंट हो गई है, ठीक है ना, तो हर चीज तो अब आप सोचिए बाहर निकलो तो खेलने की जगह नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: देर आर नो फील्ड्स, तो बच्चे खेले तो कहाँ खेले, छत पे खेलते हैं या घर पे खेलते हैं या मोबाइल पे खेलने,
1: छत पे भी खेलने से मना करते हैं।
0: हाँ, वही वहाँ भी गिर जाते हैं बच्चे, भी एक जना अटेंडेंट हमेशा चाहिए उन्हें देखने के लिए, बाहर रोड में नहीं खेल सकते ट्रैफिक इतना है, बाहर कहीं दूर जाएं तो बच्चे चोरी हो जाते हैं।
1: हाँ,
0: है ना, तो पेरेंट्स वैसे भी डर के मारे भेजना चाहते हैं, तो इस हिसाब से हमारा मेन थिंग ये है कि एक्टिविटी कोई हो जाए, मतलब जो हम खा रहे हैं वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट, खाना सब कुछ है, साथ में हमारे को उसको बर्न आउट कर देना है, तो बच्चे कोई साइकिलिंग कर लें, डांस कर लें 1 घंटे का, है ना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लें जिसमें कि उनको पसीना आए, ठीक है, और वो कंटिन्यूस हो, एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, और अगर पॉसिबल है तो जिम कर लें, एनीथिंग, मतलब एक्सरसाइज करनी है, जरूरी नहीं हम जिम जाएं तभी हमारी एक्सरसाइज होगी, घर पे भी कर सकते हैं, या अपना खेल लें कुछ एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी हो जिसमें कि हमारी वो एनर्जी बर्न हो, है ना, तभी वो हटेगी। नहीं खाने से हमारा BMR कम हो जाता है और वो दोबारा वेट गेन करता है।
1: अच्छा अच्छा, मतलब डबल वेट गेन करता है वो।
0: मतलब BMR क्या करता है, BMR इज हमारे बर्निंग ऑफ द कैलोरीज वी आर ईटिंग, तो उसमें हमने क्या करा, जब हमने अपनी कैलोरीज कम कर दी, 1000 से भी कम कर दी, अब हमारी बॉडी में BMR भी कम हो जाएगा अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है, तो BMR कम हो गया मतलब अब हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई, अब हम जितना खा रहे हैं उतना भी बर्न आउट होकर के कंज्यूम नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उसके बाद अबव दैट जो हमने खाया वो फिर हमारा वेट गेन नहीं आ जाएगा, ठीक, इसलिए इट इज नेसेसरी कि खाना हम पूरा खाएं जितनी हमारी डाइट बनती है 1500-2000 कैलोरीज तक का, ठीक है, और उसके बाद उसको हम बर्न आउट भी करें। एल्डर्स हैं वॉक कर लें,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, और बच्चे हैं तो डांस कर लें, साइकिलिंग कर लें, एक्टिविटी कर लें, खेल कूद करें, मतलब अच्छा प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी।
1: एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे, खाना सा मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे,
0: खाना तो हमें बैलेंस ही खाना है, एंड जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है दैट इज द बेस्ट, दैट इंक्लूड रोटी सब्जी दाल चावल दूध दही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और सारा हमारा सैलेड, यही बैलेंस्ड है।
1: थैंक यू मैम।
2: आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, सही पोषण बेहतर जीवन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे और सेहतिया जी को अनुमति।
3: नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी,

दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, और प्रोग्राम है आपका फेवरेट। जी हाँ दोस्तों, आप बेसब्री से इंतजार करते हैं इस प्रोग्राम का। एक बार फिर से ये लीजिए, अब आपके इंतजार की प्रतीक्षा खत्म करते हैं। मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ दे रहे हैं हमारे प्यारे से दोस्त अखिल जी। कैसे हालचाल है सर आपके?
1: बढ़िया आनंद जी, बढ़िया। आपके कैसे हालचाल है?
0: मेरे हालचाल बहुत ही अच्छे हैं अखिल जी, आप बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं, और गर्मियों में कैसी जा रही है आपकी दिन और रात?
1: गर्मियों में दिन में पसीना,
0: हाँ, रात में मच्छरों ने जीना कर दिया दुश्वार मुश्किल नहीं, ये तो है यार। खैर श्रोताओं, मैं और अखिल जी आज आपके साथ इस प्रोग्राम में रहने वाले हैं। प्रोग्राम का नाम हमने आपको बताया सोच बदलो, और आज हम किस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए जरूर आपको पता लगेगा, जिससे कि इसका नाम ही है सोच बदलो। अखिल भाई, आप पहली बार हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए हैं और इसका नाम है सोच बदलो, तो कुछ मतलब नाम से कुछ लग रहा है आपको कि इसका क्या टाइटल ऐसा है, तो अंदर क्या होगा इस प्रोग्राम?
1: आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं कहता हूँ हालात नहीं बदलते हैं जब तक इंसान भी अपनी सोच नहीं बदलता है।
0: तो है,
1: जब तक हम लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे या किसी चीज को लेके अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तो अपने हम हालात भी नहीं बदल सकते।
0: गॉट इट, 100% सही कहा आपने, लेकिन हालात बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और आजकल हर इंसान परेशान है, कोई करियर को लेके, कोई रिश्तों को लेकर, और कोई खुद से हार चुका है। तो आज इन सब मुद्दों पर बात करना मुझे लगा बहुत जरूरी है। प्रोग्राम सोच बदलो है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता तब तक चीजें बहुत अच्छे लेवल पे हम कर पाएंगे।
1: नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
0: वाह,
1: सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
0: करेक्ट,
1: कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।
0: वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बात कही है अखिल जी ने, और बिल्कुल सही बात है। जब आप अपनी दिशा बदलते हैं तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं।
1: छोटी छोटी जो बातें होती हैं कभी
0: जी,
1: कभी
0: जी,
1: वो जिंदगी में की लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव ले आती
0: है। करेक्ट, और छोटी सी शुरुआत ही जो है हमें जीवन में वहां तक पहुंचा देती है जहां हम जानना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, है ना। एक सवाल, अगर सुबह उठते ही इंसान ये सोच ले कि आज भी कुछ खराब होगा तो क्या दिन अच्छा जाएगा?
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिमाग वही ढूंढता है
0: जो हम बताते हैं।
1: बिल्कुल सही, वही दिमाग हमारी चीज ढूंढ रहा होता है।
0: और अभी फिलहाल मेरा और आपका दिमाग ढूंढ रहा है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं होगा म्यूजिक वाला, तब तक हमारा दिमाग भी ढूंढता रहेगा गाना कहाँ है, गाना आ गया आपका फेवरेट गाना। एक छोटा सा गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। मैं और अखिल आपके ही में जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो और गुनगुनाते रहो।
0: वेरी नाइस।

0: वेलकम बैक है। इस ब्यूटीफुल गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी अखिल जी, कुछ कह रहे थे आप अभी?
1: मैं यही कह रहा था कि आजकल लोग छोटी सी परेशानी में भी बोल देते हैं मेरी किस्मत ही खराब है।
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं, सभी इंसान इस चीज पे बिलीव करते हैं और सभी बोलते हैं। मोस्टली हर इंसान जब भी स्ट्रेस में होता है या उसका कोई काम नहीं बनता है तो ये चीज को जरूर बोलता है। अखिल भैया, लाइन क्या बोली थी अभी आपने? वो
2: ऐसे बोल दो
0: जी भैया,
1: ओहो मेरी तो किस्मत ही खराब है।
0: और ये जो लाइन है ना, ये अखिल भैया आप नहीं, मुझे लगता है दुनिया का हर दूसरा इंसान बोल रहा होता है। करेक्ट,
1: बिल्कुल सही।
0: दोस्तों, सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए कोशिश होती है कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कस किए जाएं और ये वो टॉपिक्स हम लेकर आते हैं जो एक्चुअली हमारी और आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं।
1: अब देखो ना, अगर बारिश हो रही होती है तो कोई बारिश को देखकर ये बोल देता है ओह आज तो ट्रैफिक होगा, बारिश हो रही है, और कोई उसी बारिश को देख के कहता है अरे आज मौसम कितना प्यारा हो गया।
0: बस अपने अपने देखने का तरीका है, नजरिया है ना। लेकिन ये सच है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में हुई है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। अखिल भाई
1: बिल्कुल सही बात कही।
0: चलो,
1: अरे आनंद भाई, कभी कभी ना अगर कुछ लोग इतने नेगेटिव मिलते हैं कि अगर आप उन्हें फ्री में पिज्जा भी दो ना तो ये कहेंगे आपसे अरे कहीं कोल्ड पिज्जा तो नहीं दे दिया, कहीं ठंडा तो नहीं दे दिया हमें।
0: मतलब पिज्जे के अंदर भी वो नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो फिर पक्का उन्हें सोच बदलने की जरूरत है। और श्रोता, मुझे ऐसा लगता है कि सोच अगली बात से डेफिनेटली बदल जाएगी। और कुछ लोग अखिल भाई इतने पॉजिटिव होते हैं, आप यकीन मानिए कि मतलब अगर उनके घर में उनका वाईफाई ना भी चले तो भी भैया उनको ये लगता है कि चलो आज वाईफाई ना चला ना सही, एटलीस्ट फैमिली से तो बतिया लेंगे भाई, फैमिली से तो बात कर लेंगे। और ये जो गेट टुगेदर वाला टाइम होता है ना, ये एक अलग ही होता है और यहीं पर निकल के आती है पॉजिटिविटी। अगर आपका, मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा श्रोता, अगर कोई काम आप कर रहे हो और अगर वो नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुल या वो नहीं बन पा रहा है तो आप सोचिए उसके पीछे भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में, अखिल भाई ऐसा होता है, हम बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से और वो हमें नहीं मिलती तो हमें लगता है यार ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, जबकि थोड़े दिन के बाद उससे भी बेहतर से बेहतरीन हो रहा होता है। फिर हमें लगता है कि यार अगर वो चीज हो जाती तो शायद ये नहीं होता।
1: बिल्कुल सही बात। तो जिंदगी कहाँ परफेक्ट होती है? जिंदगी परफेक्ट कहाँ होती है? नहीं होती ना जिंदगी परफेक्ट। लेकिन अगर सोच पॉजिटिव हो तो वो और सफर थोड़ा सा और आसान हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और मुझे भी लगता है कि दोस्तों जिंदगी देखो परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकती, ना ही इंसान कभी परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक गाना जो मैं लगा रहा हूँ ये जरूर परफेक्ट हो सकता है आपके लिए और हमारे लिए। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। मैं और अखिल, प्रोग्राम है सोच बदलो। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। भैया बजाते रहो या गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो या बजाते रहो, बात एक ही, फिलहाल हम बजा रहे हैं गाना।

0: और इस बेहतरीन गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं मैं और अखिल जी आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। साथियों, आज का हमारा टॉपिक कोई स्पेशल नहीं है, बस हमने कुछ चीजों को उठाया है, कुछ चीजों को हम चुनकर लेकर आए हैं जिसपे हमें अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो अहम और कड़क वाला मुद्दा बना हुआ है वो है आज के टाइम में सोशल मीडिया। क्यों अखिल जी? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें ना जिसकी भागदौड़ में छोटे से लेकर बड़े तक और बड़े से लेकर बुजुर्ग तक भी शामिल है। हर किसी को लग रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं, हर किसी को लग रहा है मेरे अच्छे व्यूज आ जाए। और मजे की बात तो यह है दोस्तों, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी फोटोज डालते होंगे ये उम्मीद करके कि शाम तक तो 200 लाइक आ ही जाएंगे, और उस पे 2 लाइक भी ना आए तो आपका मन बड़ा उदास हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं आपको बोलूं तो मैं भी कभी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी डालता हूं तो मुझे भी लगता है यार शाम तक 500 लाइक तो आ जाएंगे, और जब 5 भी नहीं आती तो थोड़ा सा मन उदास होता है। लेकिन फिर वहीं पे हमें अपने मन को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। टाइम पे क्या करना है भाई, क्या हम 500 लाइक या 5 लाइक पे अपने आप को थोड़ी रख रहे हैं भाई?
1: बिल्कुल सही बात कही। और हमें सोशल मीडिया से अपने आप को कंपैरिजन करना ही क्यों है?
0: एब्सोल्युटली अखिल भाई, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन और हमारी फैमिली। अगर फैमिली खुश है, हम खुश हैं तो सब बढ़िया है। तो गाइज यहाँ पर भी सोच बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे अखिल जी ने दुबई में जाके एक बढ़िया से फूड की फोटो डाली तो मेरे को ये लगे भैया मैंने नहीं डाली तो मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं कहाँ बैठा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। अखिल भाई की अपनी लाइफ है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है।
1: तुमने दुबई बोल के ना कुछ पुरानी
0: मेमोरी याद दिला दी। वैसे मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, जो महान इंसान है, ये दुबई भी घूम के आ चुके हैं और दुबई में इन्होंने अरीना मरीना सब देखा है, एलेन और पता नहीं अबू धाबी कहाँ कहाँ घूम के आए हुए हैं भाई।
1: दुबई तो अपने में बहुत ही अच्छी जगह है।
0: और लेकिन यार आज की डेट में पता है सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है अखिल भाई?
1: क्या है
0: यार? मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम जो है ना हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे आ गया है जैसे मतलब बिना टमाटर की सब्जी नहीं बनती, वैसे इंस्टाग्राम से जब तक खोलो ना ये दिन की शुरुआत नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इंस्टाग्राम जो हमारी जिंदगी में आके मतलब इसने तहलका मचाया ना।
1: एक बात बोलूंगा तुमसे कि इंस्टाग्राम में देख के ना कभी भी अपने आप को ना अनसक्सेसफुल मत।
0: एक मेरा फ्रेंड है, रिसेंटली उसने पता नहीं अनाप शनाप डाला और उसके इतने व्यूज आ गए, इतना वायरल हो गया वो बंदा। अभी किसी और की बात क्यों करे, कॉकरेज की बात कर लेते हैं भाई। है? कॉकरेज भाई को ले लो, इतने वायरल हो गए यार। तो मतलब कभी कभी लगता है यार फिर हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से, तो वो स्ट्रेस अपने आप ही आ जाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं?
1: मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो अगर हम किसी को देख के अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है।
0: वो मतलब हमें सोच बदलनी चाहिए। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग है, हर किसी का डिजायर अलग है। तो जरूरी नहीं है जो अखिल भाई की लाइफ में चल रहा हो मेरी लाइफ में भी चल रहा हो।
1: और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे ना लोग अपनी

0: ब्रेक, म्यूजिकल डायरेक्शन, जहां जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स और रिलीफ दोनों मिलेंगे, हमारी जुबान को भी, हमारे गले को भी, और आपके कानों को भी मिलेगा सुकून। तो एक छोटा सा गाना, उसके बाद वापस आते हैं मैं और अखिल जी। हाँ, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये इंस्टाग्राम जितना प्यारा है ना, उतना टेंशन का कारण भी बन गया आजकल की, स्पेशली जेंजी का। कभी कभी तो मेरे अखिल भाई को भी टेंशन हो जाती है कि यार सुबह वीडियो डाली थी, शाम तक आई क्यों नहीं, कल जोक बनाया था, 2 महीने हो गए तक आया क्यों नहीं, तो इनको भी बहुत टेंशन हो जाती है।
1: इसके लिए तो मैं जरा आनंद को अकेले में पकड़ूंगा,
0: और फिर ये अकेले में पकड़ने गलत मतलब मत समझिएगा श्रोताओं, फिर बाद में कहते हैं बच्चा है तू मेरा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं, फिर मिलते हैं।

0: ये गाना सुन के तो मैं अपनी चेयर से गिरने वाला था। अखिल भाई ने पकड़ लिया कि बेटा रुक जा, इतना डांस मत कर। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाना बहुत ही मजेदार था ये। और इस गाने के बाद इसी बात पे आपका वेलकम कर लेते हैं जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद एंड अखिल के साथ। सो अखिल जी, आप कुछ अभी माइक के पीछे मुझे चार लाइनें, चंद लाइनें सुना रहे थे, जरा हमारे श्रोताओं के सामने पेश करें।
1: मैं बहुत ही सिंपल और ये कहना चाह रहा था, हर चमकती चीज जो होती है वो सोना नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: लेकिन ये जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये कौन सी सोने की बात चल रही है? जो रात को नींद पूरी नहीं हुई वो, या फिर आजकल जो महंगा हो गया है वो? थोड़ा सा विस्तार से बता दें। मैं थोड़ा कंफ्यूज में।
1: अच्छा आनंद, तुम्हारे पास कितना सोना आज बता दो लोगों को।
0: मेरे पास सिर्फ वीकेंड पे ही सोना होता है, सैटरडे एंड संडे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये दो दिन ही होते हैं। सैटरडे रात को जागता हूँ, संडे को सोना सोना करता हूँ, और उसके बाद भी हो नहीं पाता है क्योंकि भाई इतना काम पड़ा होता है ना वीकेंड पे, वो भी कम्प्लीट करना होता है।
1: तुम्हारा सोना है ना वो एक्चुअल में जो दूसरा सोना है उससे ज्यादा कीमती है।
0: करेक्ट यार। और अगर वो सोना कम्प्लीट नहीं है आपका, तो फिर सारे सोने बेकार है, सब अनसक्सेसफुल है। करेक्ट, क्योंकि आपकी हेल्थ भी उसी से जुड़ी है।
1: बिल्कुल सही है। हाँ। वो असली हेल्थी आपकी सोना है ना।
0: और अगर आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, तो आपके चेहरे पे जो सोने जैसा निखार आएगा ना, भाई साहब, हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। करेक्ट। चलो जी, ट्रैक से नहीं भटकेंगे, सोच बदलो में हम थोड़ा सा फन और एक्टिविटीज ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अभी अखिल जी, आपने जो वो चार लाइनें कही थी, वो लाइनें मैं जरा आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा। हाँ, हर चमकती चीज
1: सोना नहीं होती,
0: सोना नहीं होती,
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल। इस बात में मैं भी कहना चाहूंगा, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है श्रोताओं। तो जो ये कंपैरिजन, इसको अपनी लाइफ से हटा देंगे तो कितना बढ़िया होगा अखिल जी।
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: बात।
0: लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हम इंसानों की आदत है, फितरत है, हम ये हटा ही नहीं सकते हैं।
1: हाँ।
0: ये कंपैरिजन करने वाली आदत। वेल, आप आगे क्या कहना चाह रहे
1: हैं? मैं तो ये कहूंगा कि अपने को ना किसी और की कहानी से मत नापिए।
0: हाँ,
1: आपकी जो अपनी जिंदगी है ना, उसकी टाइमिंग अलग है।
0: टाइमिंग अलग है यार, हर किसी की लाइफ के पैरामीटर सेट है,
1: एक अलग ही टाइमलाइन चल रही है, तो वो अच्छी ही चल रही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप उसे कंपैरिजन में ही निकाल दें या गांव दे।
0: अगर सोशल मीडिया आपका इनर पीस खराब कर रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही बात। और एक थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स भी करवाएं, इतना सारा डिटॉक्स चल रहा है।
0: डिजिटल डिटॉक्स के बारे में थोड़ा बताएं।
1: थोड़ा सा एक बढ़िया सा गाना लगा दीजिए, वही डिजिटल डिटॉक्स है।
0: हाँ, मैं गाना जरूर लगाऊंगा, और बहुत जल्दी जल्दी हम गाने सुनवा रहे हैं, तो श्रोता हमें सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया है, सारे गाने सुना के जाएंगे क्या?
1: थोड़ी स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं,
0: थोड़ा मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि लाइफ में ना एक चीज और है अखिल जी, जिसपे हमें ना थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड को जो है सेट करने की जरूरत है, और थोड़ी सी थॉट्स और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, वो है फेलियर। हर किसी की लाइफ में ये फेज आता है।

0: है, मुझे ऐसा लगता है छोटे बड़े बच्चे हर किसी के जीवन में आता है ना। तो लोग इतना फेलियर शब्द से क्यों डरते हैं, इतना अनकॉन्फिडेंट अनकॉन्शियस क्यों फील करते हैं?
1: मेरे हिसाब से ना, मुझे क्या लगता है, क्योंकि जो सोसाइटी है ना,
0: हाँ,
1: वो सिर्फ आपकी सक्सेस ही सेलिब्रेट करती है।
0: गॉट इट, 100% अग्री विद यू।
1: और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की बहुत ही लंबी कहानी होती है।
0: करेक्ट,
1: हमें तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो लोग डर रहे हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं, जब तक फेलियर्स से आपका सामने नहीं होगा तो सक्सेस का वो मजा भी आप नहीं ले पाएंगे।
0: इनफैक्ट जब आप फेल होते हो ना अपनी लाइफ में दोस्तों, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप फेल हो रहे होते हो तो आप ना उस वक्त बहुत कुछ सीख रहे होते हो, इतना आप सक्सेस में जब सेलिब्रेट करोगे तब नहीं सीखते, इतना फेलियर वाले पीरियड में सीख पाओगे, बिकॉज वो जो फेस होता है ना वो आपको वो सारी चीजें सिखाता है, वो चेहरों से रूबरू कराता है जो एक्चुअली आप कभी आप उनको मिल भी नहीं पाओगे।
1: एक बार बताओ आनंद,
0: हाँ,
1: हम फेल हुए, बिजनेस नहीं चला या रिलेशनशिप टूट गया, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या?
0: नहीं यार, ये एग्जाम, रिलेशनशिप, बिजनेस, ये तो लाइफ का पार्ट है। अगर इन सब चीजों पे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता यार कि हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर ना हमारी डायरेक्शन को बदलता है ना।
1: बिल्कुल सही, डेस्टिनी नहीं बदल सकता वो।
0: करेक्ट, तो वही है ना, आपकी अगर डेस्टिनी स्ट्रांग है, आपका आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आप उस पर फोकस्ड हैं तो आई एम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। बट अगर लाइफ में आपको थोड़े से डाउनफॉल मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा वो फेस आ रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि यार अब मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फुली कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहिए, क्योंकि आपको पता है ना आप कहां पर सही है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, और आपको पता है आपकी मंजिल कहां है, तो फिर बस आपको तो भैया अच्छी चीज के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आगे निकलना है, और वो कहना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: क्या बात है
0: ना,
1: क्या
0: इस मोटिवेशन को अपने अंदर लेकर आओ और अपनी सोच को बदलो, देखो जिंदगी कितने प्यारे रिजल्ट देगी। कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन नहीं भर दिया आज हमने लोगों में?
1: ऐसा मोटिवेशन दे दिया, कल आ जाएंगे फोन के भाई साहब आ रहे हैं, हम भी एक आरजे बनने वाले हैं। आनंद,
0: कोई दिक्कत नहीं है जी, चेयर बिल्कुल खाली है, अखिल भाई को थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा करेंगे, आपको अंदर बिठाएंगे और आपको यहाँ बिठाएंगे, टेंशन मत लो आप। फिलहाल अखिल भाई ने एक गाने की बात करी थी, तो गाना जो है आ गया है निकल के बाहर, और ये गाना बहुत अच्छा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, आपने सुना है गाना?
1: सुना है।
0: कयामत से कयामत फिल्म थी आमिर खान साहब की, और ये गाना भाई साहब आज भी मजेदार लगता है मुझे।
1: और गाना गाने के बाद आमिर खान की तो मैं बात कहूंगा, आज क्या नाम कर रखा है
0: आमिर खान साहब ने, अरे गजब। और ये उदित साहब का भी कमाल है, उदित नारायण जी ने जब ये गाना गाए थे तो भाई साहब उनकी भी रातों रात पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, उदित साहब की आवाज है ना।
1: देखा एकदम आपका जो थे जितने भी फेलियर्स थे सभी एक उस गाने से सक्सेस।
0: एब्सोल्युटली यार, और आमिर खान की भी फर्स्ट मूवी थी क्यामत से क्यामत तक मूवी है, इसमें आमिर खान साहब को अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से देखना, उनका जो फेस है एकदम यंगर वाला, क्या लग रहे हैं भाई। एक काम करेंगे, अगर हम इन्हीं पे बातें करेंगे तो पूरा स्टोरी निकल जाएगा, गाना नहीं सुन पाओगे, तो पहले गाना सुनो उसके बाद लौट कर आते हैं।

दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक यू लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और ये गाना भी आपने सुना कयामत से कयामत मूवी का, और बहुत ही कमाल की फिल्म थी और बहुत ही फैंटास्टिक लगे मुझे तो आमिर खान। और इसमें एक गाना है, मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर। अभी तक वो चेहरा मुझे तो नजर नहीं आया, लेकिन अखिल जी क्या कहना चाहते हैं, प्लीज टेल अस यार।
1: मैं एक्चुअली क्या है ना, अभी हम बात
0: कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
1: मगर आमिर खान साहब ने एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम किया है। एक मूवी थी यादों की बारात करके,
0: हाँ।
1: और उन्हीं के अंकल हैं, डायरेक्टर थे जो उस मूवी के थे, नसीर साहब थे। तो मतलब बचपन से ही इज लाइक इन एक्टिव, और इतना कहते हैं ना कि बचपन खून में है, तो वो खून वाली ही चीजें थी कि हाँ भाई खून में है एक्टिंग, और इतना अच्छा आज के समय में ऐसा नाम।
0: मेरी तो आमिर खान साहब से बात भी हुई है, एक्चुअली एक रेडियो स्टेशन का नाम तो नहीं लूंगा, तो आमिर खान साहब मुंबई के एक स्टूडियो में थे और मैं अपने घर से खड़ा फोन लगा रहा था। लाल सिंह चड्ढा इनकी मूवी आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे। तो इन्होंने बोला था जो सबसे क्रिएटिव लाइन सुनाएगा मैं उससे लाइव बात करूंगा। तो मैं बस जस्ट रैंडमली मैंने फोन लगाया एक स्टेशन में, और वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। तो आमिर खान साहब ने बोला हाँ कौन बोल रहे हो, मैंने कहा आनंद, तो कह रहे मैंने कहा मैं आमिर खान से बात करो, आमिर खान ने बोला यस बेटा मैं आई एम आमिर, टेल मी आनंद कहां से हो, मैंने बताया और मेरे को आरजे बनना है, आई एम वेरी पैशनेट ये वो। तो आमिर ने बोला ठीक है मैं यहां के डायरेक्टर से बात करता हूं, जो वहां का प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे, कि और तुम्हें कुछ एक चांस दिलाते हैं। बट स्टेशन मुंबई में था तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर आमिर खान साहब ने बोला एक राइमिंग बनानी है लाल सिंह चड्ढा की मूवी के ऊपर, तो फिर मैंने बना दिया। मुझे बड़ा मजा आया भाई जब मैंने बनाया, तो ताली वाली सब बजाई, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है अखिल भाई। वो लाइन थी कि जाना था मुझे बस के अड्डा, मुझे आज भी याद है, जाना था मुझे बस के अड्डा, लेकिन जैसे रेडियो खोला तो नजर आ गया लाल सिंह चड्ढा। इतनी तालियां बजाई आमिर खान, मतलब आमिर खान इज वेरी हैप्पी कि हाँ यार बंदे ने कुछ तो क्रिएटिव। एक दो लाइन और बोली थी वो, शायद मेरे पास मुझे ध्यान नहीं है, वो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है। और जब मैंने आमिर खान साहब से बात करी तो उस दिन पूरा दिन मुझे नींद ही नहीं आई भाई, लगा ही नहीं कि मैं कहां बैठा और कहां आमिर खान साहब से, मतलब जिनको पिक्चर में देख रहे उनसे बात कर रहे हैं। अपने आप में एक बहुत गोल्डन चांस,
1: हमारे साथ ये वाला वाक्य हो गया कि पापा कहते हैं
0: बड़ा नाम करेगा। हाँ बट मम्मी को बहुत खुशी हुआ था, मेरी मम्मी को मतलब फेवरेट है आमिर खान। और फिर एक बार मेरी अक्षय कुमार साहब से भी हुई है यार ऐसी।

0: तो दूसरे स्टेशन के, मतलब मैं शुरू से ही ज्यादा एक्टिव रहा हूँ चीजों में, तो मतलब आई फील कि यार हाँ ठीक है रेडियो पे अगर हम, और रेडियो में भी मेरा आने का मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटी से ही मिलना है, मतलब एक रियल कनेक्शन बनता है, जैसे मेरी बात उनसे हुई मैं खुश हुआ, ऐसी हमारे तमाम लिसनर जो हमसे बात करते हैं उन्हें खुशी मिलती है, तो ये एक अलग ही यू नो हैप्पीनेस होती है। और ये अखिल जी जो बैठे ना ये भी बहुत कमाल धमाल करके आ चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में, और ये एक बहुत अच्छे स्टेशन में साउंड इंजीनियर जो भी है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता इनका प्रोफेशन क्या रहा है, बट इन्होंने अच्छा किया है।
1: मैं बताना चाहूंगा आमिर खान साहब को मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है, बात भी हुई है, उनकी एक मूवी की शूटिंग हुई थी जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था,
0: तो दुबई
1: नहीं नहीं नहीं गुड़गांव में,
0: गुड़गांव
1: ऑफ ड्रीम्स,
0: अच्छा ओके,
1: तो वहाँ पे ना इनकी शूटिंग थी पीके मूवी की,
0: पीके ओके, आमिर खान और अनुष्का,
1: हाँ अनुष्का शर्मा, और दोनों ही आए थे उस अच्छा। गाने को शूट करने के लिए दोनों ही लोग आए थे। तो मेरी मतलब आमिर खान साहब का तो शॉट रात में था, और रात में आप मतलब मानोगे नहीं, रात में 1-2 बजे भी ऐसा लग रहा था कि सुबह के एकदम ताजा उठे हुए और वो शूट कर रहे थे, और उस बीच उनका एक
0: मतलब प्रोडक्टिविटी एकदम मॉर्निंग वाली थी,
1: इतने एक्टिव कुछ पूछो मत। और उस शूट में एक मजे की बात और थी कि उन्हीं के बेटे जुनैद खान वो उसमें असिस्टेंट थे।
0: ओ वाओ क्या बात,
1: सॉन्ग के असिस्टेंट थे,
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये तो जानकर हमें बहुत खुशी हुई अखिल जी, थैंक यू सो मच, आपने एक कड़क अपडेट हमें बताई, और अगर हम कभी आमिर खान से मिले तो जरूर आपका मैसेज तक पहुंचा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप हमसे पहले मिले तो हमारा पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल प्रोग्राम है सोच बदलो, और उनका पीके मूवी का इन्होंने जिक्र किया तो एक मीम बहुत वायरल होता है, अच्छा हमें सिखाएगा, अच्छा हमें बता दिया है, आई एम श्योर आपने देखो ना। और ये मूवी की शूटिंग के दौरान ही मैंने इनका एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि इन्होंने इस मूवी में जो डायलॉग बोल रहे ना, अच्छा हमें सिखा रहा है, ये वाला करने के लिए उन्होंने 100 पान चबाए थे भाई, ये वाले शॉट के लिए आमिर खान साहब ने, वो पान खाते हो और तब ये वाला वायरल होता, तो इस मूवी के लिए उन्होंने 100 पान को खाया यार, एक एक्टर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है सोचो आप,
1: बिल्कुल सही।
0: और दोस्तों सिर्फ एक्टर को नहीं, एक रेडियो जॉकी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं और ट्रैक पे हम लोग आ गए तो हमें वापस अपने ट्रैक पे जाना है। सो वेल ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिसनर्स के काम की, भाई हर किसी को हर चीज नहीं पता होती है, रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल मीडिया पे, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अखिल जी आप फेलियर के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे।
1: मैं तो कहूंगा यही
0: जी भैया,
1: गिरकर उठना सीख लिया हमने, अब मुश्किलों से डर नहीं लगता,
0: वाह,
1: क्योंकि सपने शहर देखकर नहीं हौसले देखकर पूरे होते हैं आनंद।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, और हौसले अगर आपके मजबूत है ना तो फिर आपको कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं हरा सकता, करेक्ट। तो बस अपने इरादों को मजबूत रखिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, और जिंदगी में कुछ बढ़िया करने के लिए ना कुछ बढ़िया सोचना जरूरी है, कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते, तो ये बिल्कुल फैक्ट है, आप भी अच्छा सोचिए ऑफकोर्स आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। और आज के छोटे छोटे टॉपिक्स हमारा सिर्फ यही मतलब था, यही मुद्दा था बताने का कि इन सब की वजह से ना हम बहुत भटकते हैं अपनी लाइफ में, सोशल मीडिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, फेलियर हो गया, ये सब चीजों के पीछे हम इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हम अच्छी चीजों को ही नहीं पाते, हमें लगता है कि भाई यही सब चीजें जो हमें दबा रही है और इन्हीं चक्कर में हम आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा सा सोच को बदलिए, सोच बदलोगे तो आपके इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो आपकी सफलता आपके सामने खड़ी होगी, है ना भैया। और मुझे लगता है अगर आप सही दिशा में प्रयत्न करोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता डेफिनेटली मिलेगी।
1: आनंद कभी अब तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अपने आसपास वालों को बदल दूं?
0: यार आसपास वालों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को जरूर बदल लूंगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं भाई, बट हम सही काम करेंगे तो डेफिनेटली बदल सकते हैं यार,
1: बिल्कुल
0: है ना। एक इंसान की सोच सब कुछ बदल सकती है, तो बस वही चीज है। बाकी अभी मैं और अखिल जी लेते हैं इजाजत, बहुत सारी ज्ञान और काम की बातें भी हो गई और फिल्मी शिल्मी वाली बातें भी हो गई, एंड जल्दी गुफ्तगू करने के लिए फिर किसी और मोड़ पर नए एपिसोड के जरिए आपसे रूबरू होंगे मैं और अखिल जी। तो अखिल जी जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ बिल्कुल आनंद, बस एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा मैं कि अगर खुद पर भरोसा हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी बन जाती है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कह दिया अखिल जी, और बहुत ही बड़ी बात ही है मुरादाबाद के युवाओं के लिए। बस यही एक प्यारा सा मेरी तरफ से भी संदेश रहेगा कि दोस्तों जिंदगी में ये मत सोचिए कि हर चीज परफेक्ट होगी, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, जब आप अपनी लाइफ में शुरुआत करते हो ना वही सबसे पहला और सबसे बेहतरीन कदम होता है।
1: अपने साथ स्माइल रखनी है बस हमेशा,
0: करेक्ट, आपने स्माइल के साथ आगे बढ़िए, नो स्ट्रेस नो टेंशन, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल हम भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक अच्छे से गाने की प्रस्थान करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा पानी पीते रहिए, गर्मियां बहुत हैं, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और थोड़े से कूलर शूलर भी चला लीजिए,
1: कूलर तो पूरा ही चला,
0: मतलब हाँ भाई यार पूरा ही चला लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, बाय कर दीजिए आप भी,
1: बाय बाय, रेडियो बजाते रहो,
0: गुनगुनाते रहो और सुनते रहो आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, बाय
1: बाय।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
4: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
4: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काटलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद्र स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
8: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
7: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
9: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
10: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाएं। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
9: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
10: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बोतल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
0: सर में भी दर्द होने लगता है रीना।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। सो मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: सो अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई बार महिलाएं इतनी जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकाले, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या है ना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: हाँ। तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं। और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह,
0: खीर बहुत
1: तो?
0: पसंद है मेरी मम्मी को सच में।
1: हाँ,
0: हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है,
1: क्योंकि
0: उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारी जो घर की वुमेन होती है ना, वुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से के रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। सो अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज के शो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमनिया हैं, बस एक दूसरे की हेल्प करें, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना।

भी आप जरूर खाएं। और एक और सब्जी है जो सभी फ्रूट से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है मोरिंगा, जो लंबे फलियां होती हैं। और मोरिंगा का आप सूप बनाकर पीजिए, सब्जी बनाकर खाइए। सभी फलों से भी ज्यादा गुण होता है उसके अंदर, सब्जियों से ज्यादा पावर होती है उसके अंदर। सो इसको जरूर आप अपने डाइट में शामिल करें, इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस, बाय।

0: भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और श्रोताओं, अभी हमारे साथ एक बहुत ही रेडियो के श्रोता लिसनर्स कनेक्ट हो गए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नरेंद्र सिंह।
0: नरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मानसरोवर से।
0: मानसरोवर से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ कम बुलाने को।
0: जी बताइएगा आप क्या करते हैं सर, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं गार्ड की ड्यूटी करता हूँ।
0: अच्छा, ओके।
1: कई बार बात हो चुकी है आपसे इस बारे में?
0: हाँ जी, हाँ जी, बात तो आपने की है। तो ये ट्रैक क्यों सुनना चाहते हैं आप? ठीक है सर, सुनवाते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं नरेंद्र जी की पसंद पर ट्रैक। एंड आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं मेरे प्यारे से श्रोताओं, मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए और अपने इस दोपहर के खूबसूरत सफर को और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और आपके सफर को बनाएगी और भी ज्यादा खूबसूरत आपकी पसंद के प्यारे गानों के साथ। तो श्रोताओ, आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका सर?
1: मैं जरा रामपुर ग्राम के रहता अंदर से मोहम्मद रेहान बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा रेहान जी, कैसे हैं आप?
1: हाल चाल बढ़िया। जब मैम आपसे बात हो जाती है और अच्छा हो जाता है तो
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही रहना चाहिए। बताइएगा आप, क्या फरमाइश है आपकी?
1: गाने का नाम है जब कॉलेज बंद हो जाएगा हम तेरे घर को जाएंगे।
0: अपने घर को जाएंगे। तो ये गाना आप किन के लिए सुनना चाहते हैं सब?
1: मोहम्मद
0: हाँ जी,
1: उनके साथ सुनना चाहते हैं।
0: ओके, चलिए आपकी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं।
1: खासी बता रही क्या बात?
0: हाँ जी, कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं।
1: अच्छा
0: जी, एंड सुनिएगा एक खूबसूरत सा ट्रैक। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया सर। तो श्रोताओं, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया, तो एड ब्रेक के बाद सुनेंगे एक खूबसूरत सा ट्रैक।
2: शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं
3: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
2: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अच्छा तो लगता है जब आपका फोन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर लग जाता है, आपको भी बहुत खुशी होती है हम जानते हैं। पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप भी इस फोन कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी समय हुआ है 3:37 एंड हमारे नेक्स्ट लिसनर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार बहन जी। नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। सत श्री अकाल जी, दसो की हाल चाल?
1: बहुत बढ़िया जी, बहुत मजे में, आनंद में है जी।
0: जी आनंद में तो रहना ही चाहिए सर। बताइएगा आपके यहाँ का मौसम कैसा है पंजाब का?
1: बहन जी बहुत भीषण प्रचंड गर्मी अभी पड़ रही है।
0: अच्छा, अभी का टेम्परेचर कितना है सर वहाँ का?
1: 42 चल रहा है जी।
0: ओके, हमारे यहाँ तो 38 है, आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है।
1: बहुत गर्मी पड़ रही है कुछ दिनों से, बस अभी बादलों का इंतजार है, आए और बरसे तो थोड़ा सा राहत मिले।
0: अच्छा, तो वहाँ पर बारिश नहीं हुई है ना अभी? बारिश वगैरह नहीं हुई है?
1: बारिश 15-20 दिन पहले हुई थी बहन जी, 2-3 दिनों से राहत रही, फिर उसके बाद फिर वही हाल, गर्मी गर्मी गर्मी।
0: अच्छा अच्छा, तो बताइएगा सर, आज आपका कॉल लगा है हेलो फरमाइश में, आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: बहन जी फिल्म है पारस।
0: हाँ जी।
1: और लता जी और मुकेश जी की आवाज में गीत है, बड़ा ही प्यारा सा मधुर सा गीत है।
0: जी जी बिल्कुल, बताइए।
1: तो बोल मैं उसके तरन में बताना चाहूंगा। तेरे होंठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होंठों के दो फूल प्यारे प्यारे,

0: ये गीत सुनवा दीजिए।
1: बहुत प्यारा गुनगुनाते हैं आप सब।
0: बस ऐसे थोड़ा सा सुनते रहते हैं रेडियो, तो साथ साथ में गुनगुनाते रहते हैं।
1: जी जी जी, आवाज बहुत अच्छी है आपकी, और सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका सर।
0: धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद,
1: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सर की पसंद का एक खूबसूरत सा गीत और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गाने गुनगुनाते रहिए, वो भी अपनी पसंद के।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी पारस, जो 1971 में आई थी। और इस खूबसूरत से गीत को गाया था मुकेश कुमार जी, साथ में लता मंगेशकर जी की बहुत प्यारी सी आवाज। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, अपना शुभ नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
1: जिला रामपुर तहसील स्वार से जावेद अंसारी बात कर रहा हूँ मैम।
0: सर प्लीज आप रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, आपकी साइड से बहुत बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है।
1: जी मैम।
0: जी बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी।
1: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाने के बोले, मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना मैम, ये गाना सुनना है।
0: अरे वाह, किसी की शादी है क्या परिवार में आपकी।
1: नहीं शादी तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ये गाना सुनने को मन करता, अच्छा लगता है, मतलब साधारण सा सिंपल सा गाना है।
0: जी जी जी बिल्कुल सुनवा दें गीत आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए सर।
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए सर, जावेद जी की रिक्वेस्ट पर एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा और इंतजार करो, शायद जिनकी तलाश में आप हैं वो भी आपको ढूंढ रहे हों। और ये खूबसूरत सा गाना सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: क्या बात है दोस्तों, इतना खूबसूरत गाना कि कोई खुद को रोक ही नहीं पा रहा है। इतना डांस कर रहे हैं आप, हाँ एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। यही तो है रेडियो का खूबसूरत सा सफर, जहाँ पर कभी भी कोई भी ट्रैक प्ले हो सकता है। और अभी हमारे साथ एक और हमारे लिसनर जुड़े हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं, जानेंगे उनकी पसंद भी क्या है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें।
0: हेलो फरमाइश।

0: ये लीजिए जनाब, ये तो होल्ड पर हमें रखकर भूल गए, लेकिन हाँ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून। आप प्लीज रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। हेलो।
1: सुना
0: है मैम, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बहुत अच्छी हूँ पिंटू जी, आप बताइएगा कैसे हैं?
1: जी आपसे पहचान लिया मैम, आप शो में आके चार चार लगा रहे हैं, ऐसे एक बात है।
0: जी थैंक यू सो मच।
1: और आपके स्टाफ का सब ठीक है ना?
0: हाँ जी ऑल गुड, सब बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा आपके परिवार में सब ठीक है? जी चलिए अच्छी बात है, हमेशा ऐसे ही खुश रहिए आप। बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना है जो आपने चुना है आज?
1: मैम गाना सुनना है इस तरह मोहब्बत की शुरुआत के लिए।
0: अच्छा ये कौन सी मूवी का गाना है?
1: मैम ये मूवी का गाना नहीं है, मगर फिलहाल गाना अच्छा है।
0: अच्छा ओके, बताइए दोबारा से।
1: गाना इस तरीके से है, किस तरह मोहब्बत की शुरुआत के लिए।
0: अच्छा ओके, चलिए सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: जी मैम, मैं एक शायरी अर्ज करना चाहता हूँ।
0: इरशाद।
1: न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख बुरा बोले तो मुस्कुरा के छोड़ दीजिए।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं आपकी।
1: थैंक यू वेरी मच मैम।
0: मोस्ट वेलकम, चलिए सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको, कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये प्यारा सा गाना पिंटू जी की पसंद पर, और हम लौट कर आते हैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर, और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश, जहां पर आप अपनी पसंद के खूबसूरत गाने सुनते हैं, चाहे वो हरियाणवी हो, पंजाबी हो, हिंदी हो. गाने वही जो आपका दिल चाहे. एंड अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं. हेलो फरमाइश.
1: हेलो मैम.
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मैम कपिल.
0: कपिल, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: जी मैम, मैम मुरादाबाद से बोल रहा हूँ.
0: अच्छा, मुरादाबाद से बात कर रहे हो. बताइएगा अभी क्या, कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं आप?
1: मैम मैं इंटर कर रहा हूँ.
0: अच्छा, ट्वेल्थ में हैं आप?
1: जी मैम.
0: ओके, और रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
1: मैम ये तो लगभग हो गए शायद

0: ओके तो चलिए गाना आपको सुनवाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: जी मैम, कुछ और तो कुछ नहीं, पर मौसम बहुत गर्मी बहुत हो रही है।
0: हाँ गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इस गर्मी में अपना ख्याल रखो अच्छे से, ठीक है?
1: ठीक है मैम।
0: तो चलिए सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक, आपको कॉल करने के लिए शुक्रिया। एंड दोस्तों ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, और किसी से शिकवा या गिला करने से क्या फ़ायदा है दोस्तों? देखो किसी को ना तो आप परेशान करो ना ही परेशान हो। मैं तो ये कहती हूँ कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इसे हर पल एंजॉय करो। एंड अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना, तो उसे ज़्यादा सोचना नहीं है। एक्चुअली सोचने से क्या होता है, टेंशन और ज़्यादा हो जाती है। जो होगा बेस्ट होगा, एंड खुद पर और ऊपर वाले पर हमेशा विश्वास रखिएगा, वो कभी गलत नहीं होने देंगे। और ये प्यारा सा गाना सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो हेलो फरमाइश। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना कुमार सानू जी की आवाज में, फ्रॉम द मूवी नसीब। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी बहना जी, प्रणाम नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार, नाम बताइएगा सर।
1: जी मैं राजीव यादव, ग्राम प्रेका श्रीराम पडेरा, सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं और हल्की सी बारिश का आनंद ले रहे हैं, साथ में एफएम मुरादाबाद में गीतों का भरपूर मजा ले रहे हैं।
0: बारिश हो रही है आपके यहाँ पर?
1: जी बहना जी।
0: जी तो कब से हो रही है बारिश बताइएगा?
1: अभी 30 मिनट हो गए बहना जी।
0: अच्छा तो बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: बहना जी मूवी का नाम रहेगा राजा हिंदुस्तानी, गीत के बोल होंगे, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, प्यार बन के आए हो मेरे।
2: ये वाला गीत सुनेगा?
0: ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद आपने कॉल किया।
1: लाइने भी कहेंगे बहन।
0: जी जी जी बिल्कुल बताइएगा।
1: नजरें मिली तो दिल धड़कने लगा, तुम्हारा नाम होंठों पर आने लगा, ना जाने कैसा जादू है, आपकी मोहब्बत में हर ख्वाब में तुम्हारा चेहरा नजर आने लगा।
0: बहुत प्यारी लाइनें हैं आपकी सर, और सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: जी बहना जी प्रणाम,
0: आपको भी नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक सर की पसंद का, और आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। और ये बहुत ही

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही प्यारा से ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी से उदित नारायण जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शरवण जी और लिरिक्स थे समीर जी के। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, हमारे साथ कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश
1: बेटा।
0: हाँ जी, आपको भी सत श्री काल सर। कैसे हैं आप, बताइएगा मनु।
1: हाँ जी बेटा जी, बहुत बढ़िया जी। मैं बेटा गाँव मौरपुर से, पिंड मौरपुर से, देश को बठिंडा पंजाब से दिल्ली को मट्टू बोल रहा हूँ बेटा जी।
0: हाँ जी हाँ जी, दसो जी सब बढ़िया ना उठे।
1: बहुत बढ़िया भाई, तुम दसो भाई, छोटी सेहत घर परिवार बाल बच्चे ठीक है भाई छोटे।
0: हाँ जी, ते तो सब बढ़िया है जी। तुसी दसो की गाना सुनना है आज।
1: गाना बेटा मेला फिल्म है बेटा, मेला पुरानी फिल्म है
0: हाँ जी हाँ जी
1: बेटा, गुनगुना कर बता दूं गीत के
0: हाँ
1: बोल।
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुनगुनाओ, मैनु सुनना है।
1: ठीक है बेटा ठीक है। रुत है मिलन की साथी मेरे यारे, ये गीत है बेटा।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत है सर। तो ये गीत आपको सुनवाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप, अपने दोस्तों के नाम वगैरह लेना चाहते हो।
1: अब बेटा क्या बात है बेटा, हाउ प्राउड ऑफ यू बेटा, विद फैमिली बेटा बेटा, मेरे हिसाब से तो मान लो गए कि सरदार प्रगट सिंह ढिल्लों साहब तेजी मलकी से चली जाए बेटा कोन्याला मंडी तो, तेजी डीएस नगर साहब है जी, ते अमरजीत सिंह भाला साहब से परमजीत सिंह भागा प्राला, भागा प्राला जी बेटा, सुनो प्यार सत्कार भी सत श्री अकाल
0: हाँ
1: बोलाऊंगा
0: जी,
1: बेटा।
0: आपको भी सत श्री अकाल सर। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया।
1: बेटा बाबा नानक को बेटा सुनो चाबी गाज रखे, बाबा नानक को चाबी गाज रखे,
0: हाँ
1: गुरु
0: जी हाँ
1: का
0: जी,
1: रखे
0: सब
1: बेटा भाई
0: वाहेगुरु
1: बेटा।
0: जी दी मेहर होती है तो सभी लोग बढ़िया रहते हैं।
1: क्या बात है बेटा, थैंक यू बेटा,
0: मोस्ट
1: वैसा
0: वेलकम
1: थैंक यू बेटा,
0: सर,
1: थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं खूबसूरत सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है आपका कॉल जरूर लगेगा। एवरीवन, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: हरियाली से सजे हर
4: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: आपके साथ आपकी खुशी। यहाँ पर वक्त हुआ है 4:28 और हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए, तो उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैयर एमपी से।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक मैम, बस बैठे थे, हमें सोचे हमें जोड़ जहाँ चलते चलते तो फोन भी लग गया मैम।
0: जी बहुत अच्छा किया आपने, बताइएगा आपकी क्या फरमाइश है सर।
1: जी आज सुनवा दीजिएगा फिल्म आओ अब लौट चले का, इसमें कोई सभी गाना सुनवा दीजिएगा मैम, सभी गाने अच्छे हैं।
0: जी ठीक है सर, सुनवाते हैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद मैम, थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक सर की पसंद का, एंड मैं लौट कर आती हूँ, बस आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा, और हाँ शानदार से गाना एंजॉय कीजिएगा, चाहे आप कार में हो या फिर आप घर में हो।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का वेलकम है हेलो फरमाइश शो में. और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना बी पराग जी की आवाज़ में. एंड ये गाना जो फरमाया गया था गिपी ग्रिवाल साथ में शरगुन मेहता जी के ऊपर. एंड बहुत ही प्यारा सा ट्रैक. और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर. हेलो फरमाइश. हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर. अपना नाम बताइएगा.
1: जी, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ. दीदी, आज लाइव ले लिया आपने?
0: हाँ जी, आज आपसे लाइव बातचीत हो रही है. बताइएगा आपकी क्या फरमाइश है सर.
1: दीदी, फिल्म का नाम है बरसात की रात और गाने के बोले वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई.
0: ओके, तो ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: जी दीदी, हमारे मित्र हैं प्रेम सिंह सिसोदिया जी, सारून अंसारी जी हैं, गराजन गंगवार जी हैं, और सभी श्रोताओं को डेडिकेट रहे जो लाइव सुन रहे हैं सर.
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक. शुक्रिया आपने कॉल किया.
1: धन्यवाद.
0: मोस्ट वेलकम सर. तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक. लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा. नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 98-378-96-896. ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिस पर आपको मुझे कॉल लगाना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है. तो सुनिएगा ये शानदार सा गाना.

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए दोस्तों, वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई। ये ट्रैक अभी आपने सुना, लेकिन खुशी ने भी आपसे वादा किया था कि इस गाने के बाद लौट कर आने वाली है। और अपने नेक्स्ट कॉलर से अभी बात करते हैं कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: रोहित कुमार बाली।
0: रोहित कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद
0: जी। बताइएगा आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
0: झूठा ही सही। हाँ अरे वाह, बहुत प्यारा गाना है ये। किनको डेडिकेट करना चाहते हैं आप?
1: सभी सुनने वालों को और आप लोगों को।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ट्रैक। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू
0: मोस्ट वेलकम।
1: Welcome.
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं रोहित कुमार बाली जी की रिक्वेस्ट पर ये प्यारा सा ट्रैक, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, आप भी हमें एक बार कॉल कर लीजिए, ट्राई तो करो। जब ट्राई करोगे तो लग भी जाएगा, आप ट्राई भी नहीं करोगे तो कैसे कॉल लगेगा आपका, बताइए मुझे। नंबर है 9837896896, फटाफट से इस नंबर पर कॉल करो और एफएम मुरादाबाद 89.6 सुनते रहो।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी सिंगम से कुणाल गंजोवाला, साथ में ऋचा शर्मा जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ट्रैक आपने एंजॉय किया। और दोस्तों, अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, लेकिन हम आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में अभी नेक्स्ट प्रेजेंटर भी हैं आरजे रीना जी, जो आपको करने वाली हैं और भी ज्यादा एंटरटेन एंड एंटरटेनमेंट का डोज वो आपको देने वाली हैं 5 से 7। तब तक के लिए आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 और अपना, अपनों का एंड अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है। और मुस्कुराना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब मुस्कुराते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। एंड अभी फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग। एंड जाते जाते बस यही कहूँगी कि अब अगर अभी आप ऑन द वे कार में हैं तो प्लीज़ केयरफुली ड्राइविंग कीजिए एंड सीट बेल्ट ज़रूर बांध लीजिएगा। और हाँ, जो टू व्हीलर वाहन चला रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाइए। बाकी बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। गृहमंत्री ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्लेषण और गैर क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए कम मात्रा में सभी औषधियों के आयात की अनुमति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ये सरल प्रक्रिया यौन हार्मोन, साइटोटॉक्सिक और बीटा लैक्टेम संबंधी

0: रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाय, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। समय की बात करूं तो 5:10 हो चुके हैं। श्रोताओं, इवनिंग मस्ती शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं और आज का दिन यानी कि आज की तारीख 26 जून बहुत ही शानदार है। शुक्रवार का दिन है और आज मुहर्रम भी है और आज गवर्नमेंट्स बहुत छुट्टियां भी हैं। सो ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बॉलीवुड तक की बातें करेंगे और साथ ही साथ कड़क सवाल भी मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। सो आप ऑन द वे हैं तो बस यही कहेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो पैदल सवारी है, जो घर जा रहे हैं या फिर पैदल थोड़ी दूर के लिए भी जा रहे हैं, तो प्लीज़ छाता लेकर जाइए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, यानी कि अभी टेम्परेचर की बात करूँ तो 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस टाइम। और अपने आप को मतलब कवर करके रखना हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सच में जो बाहर इस टाइम काम करते हैं, मतलब प्राउड फील है उनके लिए, मतलब प्राउड होता है कि वो इतनी गर्मी में कैसे काम करते हैं। जो घर बनाते हैं, मकान का काम करते हैं, उनको सोचिए। जो खेत में किसान काम करते हैं, मतलब इतनी गर्मी में भी, और हम बच्चे थोड़ा सा धूप में जाते तो कहते यार इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखिए, पानी की बोतल अपने साथ रखिए, मौसमी फ्रूट्स तरबूज खरबूज अपने साथ रखिए और इनको खाते रहिए। बाहर की जो चीज़ें हैं जितना आप अवॉइड करेंगे उतने ही आप ठीक रहेंगे। और अभी ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं। फिलहाल आज तो मूवी रिलीज़ हो ही गई है, वेलकम टू जंगल, तो आप सभी ने देख लिया है क्योंकि 10 बजे से शो स्टार्ट था। तो अगर आपने देख लिया है तो मैसेज करके बता सकते हैं कि ये अक्षय पाजी की मूवी आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, क्योंकि मूवी तो सच बताऊँ ट्रेलर तो बहुत ही झकास था, अभी तक मैं भी नहीं गई हूँ देखने। अगर आपने देख लिया तो आप मुझे बता सकते हैं कि मूवी कैसा है कैसा नहीं है। चलिए जी, यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। श्रोताओं कहीं नहीं जाना, एक बहुत ही शानदार आप सभी के लिए गाना मैं प्ले कर रही हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में ये वाला जो गाना है सुनना तो बनता है जी। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिएगा।

0: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
1: सही है सही।
0: मजा ही मजा ब्रो। चलो शुरू करते हैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए एएसके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां डीएलएड बीटीसी 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
2: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: जी,

जी, गुड वाली इवनिंग। शो में और समय की बात करूं तो 5:22 हो चुके हैं श्रोताओं, और जरा ट्रैफिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप सड़क पर निकल पड़े हैं तो आपने क्या करना है? साथ में देखिए, मौसम भी यानी कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय। गर्मी में अपने गर्मी अपने यानी कि चरम सीमा पर है। ऐसे में सफ़र के दौरान अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। अगर संभव हो तो ORS का घोल या ग्लूकोज भी अपने साथ रखें। साथ ही साथ शरीर में पानी और ऊर्जा की कमी ना हो। अगर आप ORS ग्लूकोज अपने साथ रखते हैं, एनर्जी लो होता है तो आप इनको अगर मिक्स करके पीते हैं तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहती है। धूप से बचने के लिए छाता, कैप, गमछे या गमछे का इस्तेमाल करें। हल्के कलर के सूती कपड़े पहने। अगर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट के साथ साथ पूरा चेहरा ढकने की कोशिश करें। लंबे सफर में अगर आप जा रहे हैं बाइक पर है तो रुक रुक कर पानी ज़रूर पिए, क्योंकि जो गाड़ी में है वो तो एसी चला लेंगे, उनको उनके लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो बाइक स्कूटी पर है उनको ध्यान रखना अपना बहुत ज़रूरी है। बाइक रोक रोक कर अपना पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि पानी पीना इस गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कंटिन्यू गाड़ी चलाते हैं और थक भी जाते हैं। इसमें गर्मी पर से इतनी ज्यादा है कि एनर्जी लो होने लग जाती है, इसीलिए अपने साथ पानी की बोतल ORS घोल अपने साथ जरूर रखें। और इस गर्मी में जितना हो सके हल्के कलर के कपड़े पहनिए। जितना आप हल्के कलर के कॉटन के कपड़े पहनेंगे उतनी आप ठीक रहेंगे, अदरवाइज आपने डार्क कलर पहना तो उस दिन आपको और भी ज्यादा गर्मी लगने वाली है। साथ ही साथ हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर बांधे, जरूर रखें अपने साथ। चलिए जी, फिलहाल एक और गाना, उसके बाद लौट कर आएंगे और बताएंगे आखिरकार आज मुहर्रम है तो मुहर्रम आखिरकार मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में ही बात करने वाले श्रोताओं।

0: 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग का।
1: जीना मरना पैसा पैसा पैसा, नींद चुराए मेरी पैसा पैसा पैसा, एक ही तो शौक है मेरे।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नव।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 5:31 हो चुके हैं श्रोताओं। और आज यानी कि मुहर्रम है, और मुहर्रम सच्चाई, त्याग और इंसाफ की याद में मनाया जाता है। यानी इसकी सबसे बड़ी वजह है करबला की घटना है। यानी कि इस्लामी मान्यता के अनुसार 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन और उसके साथियों ने अन्याय और जुल्म के सामने झुकने के बजाय सच्चाई का साथ निभाया था और अपने साथियों और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और शहीद हो गए। यही कारण है मुहर्रम मनाने का। यानी कि सच्चाई और न्याय की जीत का संदेश देता है, त्याग, बलिदान और धैर्य का प्रतीक होता है, लोगों को इंसानियत, ईमानदारी और सही रास्ते पर चलने का सीख देता है। तो मुहर्रम सच्चाई और त्याग के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, कहते हैं ना, जब आप गलत नहीं हो तो किसी के आगे क्यों झुकना है। इसीलिए ये मुहर्रम है, मनाया जाता है। सो लौट कर आएंगे और भी ढेर सारी बातें करेंगे। आज का स्पेशल डे क्या है, क्योंकि आज मनाया जाता है कोकोनट डे, सो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये वाला गाना एंजॉय करिए।
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। ये जवानी है दीवानी, ओहो जी। और समय की बात करूँ तो यानी कि 5:42 हो चुके हैं श्रोताओं, आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट हैं इवनिंग मस्ती शो में। और 1 जुलाई से कुछ नियम है वो चेंज होने वाले हैं, यानी कि 1 तारीख आते भैया पता नहीं क्या हो जाते, हर 1 तारीख को कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है ना। तो एक बहुत ही प्यारी खबर है आप सभी के लिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कॉलेज या ऑफिस से छुट्टी भी ले ले और सारे दस्तावेज भी तैयार कर लीजिए, लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब ये कहा जा रहा है भैया कि 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो सकता है, यानी अगर आपने समय रहते आवेदन नहीं किया तो आपकी जेब पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ, यानी कि खर्चा बढ़ सकता है। इसीलिए घर से निकलने से पहले अपनी अपॉइंटमेंट, फीस और जरूरी दस्तावेज एक बार जरूर जांच कर लीजिए। सही जानकारी, सही समय और सही तैयारी, यही है समझदारी, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपका समय भी बर्बाद कर सकती है और खर्चा भी। जरूर जागरूक रहे, अपडेट रहे और बेफिक्र होकर अपनी यात्रा को सफर करते रहिए। लेकिन भैया 1 जुलाई से यानी कि पता है आपको ये कितना महंगा हो सकता है, 1500 से लेकर 2500, 2000 से लेकर 3500 महंगा हो सकता है।
1: यारा संभलना, कोई हो जाए नाराज जो।
0: अगर ये आप 36 पेज वाला बनवाते हैं तो भैया 1500 से 2500 महंगा हो सकता है, अगर वहीं आप 60 पेज वाला बनवाते हैं तो 2000 से 3500 महंगा हो सकता है। तो भाई अब ये समझ नहीं आ रहा कि हर 1 तारीख को हर चीज महंगी कर देती है, और ऊपर से देखिए आप ऑफिस से छुट्टी लेते हैं इस चीज को बनवाने के लिए, कहा आप लंबी लाइन कतार में लगे रहते कि भैया हाँ बन जाए तभी हम कहीं और घूमने जा सकते हैं। और जब भी आप जाएंगे तो देखिए आपके पासपोर्ट पर ये जरूर लिखा होना चाहिए कि आप इंडियन हैं भैया। अब सोचिए हमारे पासपोर्ट तो ये लिखा जाएगा, लेकिन कोई वही विदेश का कोई आएगा तो क्या उसके लिए भी ये चीज नियम है वो लागू किया जाएगा कि उनके पासपोर्ट पर भी लिखा ना होना चाहिए कि वो इंडिया में आ गए तो इंडिया गई है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि हर 1 तारीख को क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे भाई। सच बताओ इतनी महंगाई, मतलब क्या करना चाह रही है सरकार, सब्जी से लेकर खाने तक, कपड़े से लेकर दूध दही, हर चीज तो महंगी हो गई है, इनफैक्ट गैस भी। भाई समझ नहीं आ रहा कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो इसीलिए कहती हूँ भैया फिर से वो जो पुराने जमाने वाली जिंदगी है ना, वही बहुत आसान होती थी, चूल्हे पर खाना बनाइए आराम से, मस्त रहिए, आपके हेल्थ के लिए भी सही होगा, क्योंकि बहुत से गैस पे खाना, मतलब गैस पे जब खाना बनाते हैं तो रोटी हम डायरेक्ट गैस के ऊपर सेकते हैं, तो ये चीज आपने नहीं करनी, अगर आप सेकते हैं तो बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए जी, फिलहाल एक बहुत ही शानदार गाना, यानी कि पासवर्ड महंगा हो चुका है इसीलिए गाने भैया सुनिए इसका।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूँ तो 5:53 हो चुके हैं और आज की तारीख हमारे लिए बेहद खास है। 26 जून है और आज मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड नारियल डे, यानी कि विश्व नारियल दिवस। तो श्रोताओं, नारियल को यूं ही नहीं कल्प वृक्ष नहीं कहा जाता, इसकी हर चीज किसी ना किसी रूप में हमारे काम आती है। गर्मी के मौसम में नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और ऊर्जा देता है। वहीं नारियल की गिरी में अच्छे फैट, फाइबर और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो संतुलित मात्रा में खाने पर सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि नारियल का तेल भी बेहद उपयोगी होता है, बेहद फायदेमंद होता है। अगर इसको आप अपने बालों में लगाते हैं तो नमी मिलती है, जो बाल कहते हैं ना कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उसकी समस्या है वो कम हो जाती है। और साथ ही साथ ये स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, रूखापन आपके जो फेस पर है वो कम करता है। अगर आप नारियल के तेल को बादाम रोगन के साथ अगर आप मिक्स करके लगाते हैं अपने फेस पर, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ जी, आपको कभी पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फेशियल करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नेचुरल ग्लो। और साथ ही साथ आपके फेस पर जो छोटे छोटे दाने कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक महीना आप कंटिन्यू लगा के देखिए, आपके फेस पर अपने आप नेचुरल ग्लो आता जाएगा और फर्क अपने आप आपको दिखने लगेगा। लेकिन बादाम रोगन तेल में नारियल का जो तेल है वो मिक्स करके आपने लगाना है। अगर आप बादाम रोगन तेल नहीं लगाना चाहते तो सिंपल आप नारियल तेल भी लगाकर रात को लगाकर आपने सो जाना है, फिर देखिए कमाल का होता है नारियल तेल। यानी इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाते अपने फेस पर केमिकल वाले, जो सिर्फ 2-3 दिन के लिए हमारे फेस पर वो ग्लो देते हैं, लेकिन ये जो है नेचुरल आपको ग्लो मिलेगा अगर आप नारियल का तेल अपने फेस पर लगाते हैं। इनफैक्ट कहीं जल जाता है फेस पर, स्किन पर, बॉडी में कहीं भी, तो अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं तो जला हुआ का जो निशान है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो नारियल भैया देखिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये प्राकृतिक का हमारे लिए उपहार है जिसका इस्तेमाल हमें अपने करने चाहिए। और गर्मी का मौसम है तो इस मौसम में तो नारियल पानी जितना पियेंगे उतना फ़ायदेमंद होता है, तो ज़रूर पीजिए नारियल पानी श्रोताओं। और एक और शानदार सा गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं स्टेशन ऑफ द नेशन पर। बस आपने किथे नहीं जाना है, अर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहना है, कुछ मैसेज है, चलिए उनको शामिल कर लेते हैं। रीना जी गाने, ओ माय गॉड, बहुत ही शानदार प्ले करती हो भी। नोरा जी का, हां जी गर्मी है, गर्मी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना सर। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं विक्की सागर जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। टेम्परेचर की बात करूं भैया तो अभी भी 38 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जो लू लग रहा है ना भाई, सच बताऊं, ऊपर से अगर इस टाइम आप नहाने चले जाओ तो पानी तो बिल्कुल बॉडी पर रखने का मन ही नहीं करता है भाई, सच में। और इस ऐसे में ये कहेंगे आप सभी से कि गाड़ी भी अपने छांव में ही खड़ा करिए, और एसी भी चलाते हैं तो अपने सर्विसिंग ज़रूर करवाते रहिए भैया। सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का, जैसे हमें भूख लगता है उनको भी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। चलिए फिलहाल एक गाना, उसके बाद लौट जाए।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण

0: अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ। और समय की बात करूं तो दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6:09 हो चुके हैं। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है।

ठुमका, शो मी द ठुमका, ओ माय गॉड। अगर आप भी नाचने के दीवाने हैं तो मैं कहती हूँ भैया नाचना बुरी बात नहीं है, नाचिए, एंजॉय करिए, क्योंकि नाचते हैं तो एक तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और वेट कम होने में फायदेमंद होता है। साथ ही साथ अब हम बात करने वाले हैं यानी कि शहर में लगातार बढ़ती यानी कि डॉग बाइट यानी कि कुत्ते के काटने की घटनाओं को जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब ये कहा जा रहा है, अगर आप अपने घर में डॉगी पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे अरे अरे बिल्कुल आसान है भैया, सुनिए जरा ध्यान से। अब ये कह दिया गया है कि अगर आप कुत्ता पालते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो भाई जिनके जिनके घर में जो डॉगी पालते हैं, जिनको डॉगी पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उनको अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे अपने घर में कुत्ते लेकर आते हैं, डॉगी लेकर आते हैं, पालतू कुत्ता लेकर आते हैं, तो कुछ समस्याएं आपको उठानी पड़ेगी, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब इंसान का खुद की पहचान आधार कार्ड से होता है ना श्रोता हो, तो इसीलिए कुत्ते की पहचान रजिस्ट्रेशन उनका करवाना, उनके लिए भी अब पर्चिया आधार कार्ड अलग से बनने चाहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। आप घर पर कुत्ते पालते हैं तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और यूं ही आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहे ऑल न्यू ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की अगर मैं बात करूं तो 6:11 हो चुके जी। चलिए फिलहाल नेहा कक्कड़ की आवाज़ में बहुत ही शानदार वाला गाना।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: हरियाली से सजे हर
2: प्रकृति संग खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। हरियाणवी गाने सुनकर भाई साहब पैर तो बिल्कुल रुकते नहीं, कतई भी नहीं रुकते। सच बताओ, मैं स्टूडियो में एक गाना सुनते सुनते ना डांस कर रही थी, क्योंकि डांस करना बहुत ज़रूरी है जी। और आरजू रीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं, तो देखिए डांस करना तो बनता है। समय की बात करूँ तो 6:19 हो चुके हैं, और एक बहुत ही राहत वाली क्या है जी अपडेट है मेरे पास, सुने जरा। यानी कि रसोई गैस से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर है। अगर आपने अपने घर में PNG यानी कि पाइप नेचुरल गैस का कनेक्शन ले लिया है, तो अब आपको क्या करने पड़ेगा जी। यानी कि PNG क्षेत्रों में ये कहा जा रहा है कि अगर आपने दूसरा जो इसके लिए तो राहत ही है, साथ ही साथ आप LPG गैस यानी कि कनेक्शन बुक करते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि पहले ये था कि 15 दिन के बाद, यानी कि उससे और भी डेट बढ़ा दिया गया था कि आप नहीं ले।

तो देखिए जी, बस हर कोई गैस के लिए बहुत परेशान हो रहा था कि भैया अब क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो ये चीज़ें हैं जो राहत मिल चुकी हैं, थोड़ी सी राहत मिलने वाली है यानी कि गैस के लिए, और आगे क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी हम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक शानदार गाना, और इसके बाद मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए कड़क सवाल। आज का कड़क सवाल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो तो बाद में पता चलेगा जी। पहले ये वाला गाना

लो जी, हम तो आ गए फ्लाई करके आप सभी के बीच। आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:27 हो चुके श्रोताओं, और इसी बीच में आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ क्या ऐ है कड़क सवाल। यानी कि आज का जो कड़क सवाल है वो क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। यानी कि आप मैथ्स में है तेज तभी आप आंसर दे पाएंगे, देख लीजिए। मैथ स्ट्रोंग होना चाहिए जनाब, वरना पता चले कि भैया माइनस प्लस लगाना तो भूल ही गए थे, उसी में नंबर कट जाता है। तो आज का हमारा कड़क सवाल है मैथ से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े बूढ़े जवान तक हर कोई बता सकता है जी। तो चलिए देखते हैं अगर आखिरकार आज की जो कड़क सवाल है वो क्या है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान है श्रोताओं, बस आपने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अदरवाइज लेकिन थोड़ा दिमाग पर जोर भी देना पड़ेगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आज का कड़क सवाल है, 100 में से 10 को आप कितनी बार काट सकते हैं। ये आपने मैसेज करना, हमें नंबर है 9823789682 पर आपने मैसेज करना है कि 100 में से आप 10 को कितनी बार काट सकते हो। 100 है और उसमें से आपको 10 काटना है, तो आप कितनी बार काटोगे, 1 बार 2 बार 5 बार या 8 बार। सोचिए और मैसेज करिए। चलिए फिलहाल उससे पहले एक और गाना आप सभी के बीच हो, एक मैसेज भी आ गया कि मैडम एक बार और रिपीट करो, एक बार और। चलिए जी मैं रिपीट करती हूँ, यानी कि 100 है उसमें से आपने 10 को कितनी बार आप काट सकते हैं, यानी कि 100 है, 100 में से आपको 10 बार यानी कि 10 को कितनी बार आप काट सकते हैं, ये काटना है और हमें बताना है कि फॉर एग्जांपल भाई 5 4 3 1, ये फॉर एग्जांपल है, इसमें से आपने सोचना है कि क्या राइट आंसर हो सकता है ये। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: क्या बात है जी, टैटू वाली बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, क्योंकि हर किसी को शौक होता है भैया टैटू बनवाने का। जिनके भी आप हाथों पर देखेंगे टैटू ही मिलेंगे आपको, है ना। ऊपर से कभी कोई, बहुत से तो ऐसे कि दोनों हाथ को ऐसे भर लेते भाई टैटू बनवा के कि पता ही नहीं चलता है भाई इनकी जो रियल वाली स्किन है वो कहाँ है। जो टैटू के शौकीन होते भैया, आय हाय क्या ही है जी। मतलब मेरे को लगता है कि उनको दर्द नहीं होता है क्या जब बनवाते हैं भैया, सच बताऊँ उनको दर्द नहीं होता, लेकिन जो देखता है ना उनके पसीने छूटते रहते हैं। और इस समय की बात करूँ, आरजेरीना के साथ आप कनेक्ट हैं इवनिंग मस्ती शो में, और समय हो चुका है 6:37 श्रोताओं।
1: मेरी बारी है,
0: और आज मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ बचपन की तरफ। हाँ, बिल्कुल जी, बचपन की तरफ। बचपन की तरफ ही जाना में बहुत ज़रूरी है ना। ऊपर से न्यू न्यू स्कूल शुरू हो चुके हैं, न्यू सिलेबस, न्यू बुक्स, न्यू नोटबुक्स होंगे आप सभी के पास। तो क्या करते हैं, जैसे ही हमें पता चलता है कि भैया हम अगले क्लास में आ गए हैं, तो ऊपर से नए नए बुक्स होते हैं हमारे पास, नए नए नोटबुक्स होते हैं, और उनको हम इतने प्यार से सजा कर रखते हैं ना भैया कि कोई कोई किसी को हाथ टच नहीं करने देते। ऊपर से उसके ऊपर कवर लगाते हैं, इतने प्यार से कवर लगाएंगे, फिर नाम वाला स्टिकर चिपकाएंगे, उस पर नाम लिखेंगे, बड़े सुंदर सुंदर से सजा सजा कर लिखते हैं। और उसको 2-3 महीने तो ऐसे रखते हैं भैया, ओफो, छोटा सा भी कोई ऊपर कुछ लिख देता है ना तो गुस्सा आ जाता था। उसको बड़े प्यार से सजा कर रखते थे। देखिए, मैं तो सभी न्यू जब अगले क्लास में आती थी, तो आप सभी को पता है कि नए बुक और नए नोटबुक उनको सजाने का हर किसी को शौक होता है। क्या आपको भी था ऐसा? और जो बच्चे न्यू क्लासेस उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, क्योंकि क्लासेस बहुतों के स्कूल खुल चुके हैं, बहुतों के स्कूल 1 तारीख से खुलने वाले हैं, तो अभी तक आपने क्या तैयारियां कर रखी है जी? और आप कैसे अपने बचपन में तैयारियां करते थे, आप महसूस करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं और हमारी स्कूल कॉलेज भी खत्म हो चुके हैं। वही हम बच्चों को देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को, तो बस अपना दिन याद आता था कि यार हम भी ऐसे ही करते थे, है ना। तो मैसेज करके बताने हैं। साथ ही साथ आज का कड़क सवाल भी बहुत ही शानदार था, मुरादाबाद इज। हम बस थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है, अगर आप हैं मैथ में तेज तो आप इसका आंसर डेफिनेटली बड़े आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आज का कड़क सवाल यही है, 100 में से 10 को आप कितनी बार कट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है 5 4 3 1, सोचिए आखिरकार क्या इसका एग्जाम्पल, यानी कि मैंने आपको दे दिया है, क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर नहीं होने वाला है, वो तो जी आप ही बताएंगे। फिलहाल के लिए एक और शानदार गाना, सो इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ श्रोताओं। और इतने सोचिए और मैसेज करिए, बहुतों के मैसेज सही आ चुके हैं, बहुत अभी कंफ्यूज है कि आखिरकार 100 को हम 10 में, यानी कि हमारे पास 100 में से 10 को हम कितनी बार काट सकते हैं। 0-0 है जी, तो देख लीजिए, ध्यान से सोच लीजिए कितने काटेंगे आप, कितनी बार कट करेंगे उसको।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और भाई समय की बात करूँ तो 6:48 हो चुके श्रोताओं, और बहुत तो के भैया राइट आंसर आ चुके, बहुत अभी बहुत ही कंफ्यूज है उनका कहना है कि भाई वो बाद में बताएंगे लेकिन जो हमारा सवाल था यानी कि 100 में से 10 को आप कितनी बार काट सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया था श्रोताओं कि 4, 5, 3, 1 आप कितनी बार काट सकते हैं, बस आपने सोचना था और हमें मैसेज बताना था। साथ ही साथ अगर मैं वेदर अपडेट की बात करूं तो ये कहा जा रहा है 27 जून को 26 राज्यों में यानी कि आंधी तूफान और 70 की स्पीड में बारिश आंधी तूफान आने की संभावना जताई जा रही है। और इसमें भैया मुरादाबाद भी अब की बार इंक्लूड है, तो अब देखना ये है कि 27 जून को बारिश आती है या फिर मौसम एकदम अपना रुख बदल देता है। सो आप सोचिए और मैसेज करिए, क्योंकि अगली बारिश सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपके जो मैसेज आए हैं प्यारे प्यारे वो शामिल करने हैं कि आखिरकार 100 में से 10 को आप कितनी बार काट सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 4, 3, सोचिए और मैसेज करिए। चलिए जी, ये वाला गाना

नहीं बच सकते हैं जी, क्योंकि आपका मैथ अगर स्ट्रोंग है तो आप आंसर कर सकते हैं। यानी कि चलिए, आप सभी के मैसर शामिल करने का वक्त आ गया है और हमारा आज का कड़क सवाल यही है कि 100 में से 10 को आप कितनी बार कट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। ये वंशिका हमारे साथ कनेक्ट होती है और इनका कहना है कि 10 की टेबल में, यानी कि 100 की टेबल में 10 आता ही नहीं है, तो काट कैसे सकते, यानी कि 0 हो गया। माय गॉड, मैंने तो टेबल बोला ही नहीं आपको, मैंने बोला 100 में से 10 को आप कितनी बार कट कर सकते हैं। ओ माय गॉड, इन्होंने बोला कि भैया 0 हो सकता है, नहीं कट सकता है, वो काट ही नहीं सकते हैं, यानी कि 100 के टेबल में 10 आता ही नहीं है। अब सोचिए, 100 के टेबल में 10 कैसे आ जाए, 10 के टेबल में 100 तो सुन सकते हैं, लेकिन भाई बड़ी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चलिए अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि एक बार काट सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, और अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है, नईम अली कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और इनका कहना है कि एक बार काट सकते हैं। वंशिका हमारे साथ कनेक्ट होती है और इनका कहना है कि आंसर है मैम 10 बार। देखिए, हमने आपसे आंसर नहीं पूछा है, हमने आपसे ये पूछा है कि 100 में से आप 10 को कितनी बार कट कर सकते हैं। इन्होंने सीधा भैया उनको, यानी कि 100 में सीधा इन्होंने मैथमेटिक्स वाला, यानी कि स्कूल वाला फॉर्मूला अपनाया है और आंसर बताती है कि 10। ओके जी, और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं राजन वर्मा जी और इनके कहने की 2 टाइम्स। ओ, 2 टाइम कैसे काट सकते हैं जी, जरा सोचना पड़ेगा ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से अब लेती हूँ जाने की इजाजत और हमारे पास, यानी कि राइट आंसर सबसे पहले पहुँचाती हैं विक्की सागर जी और इनका कहना है कि एक बार ही काट सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर आप नोटबुक पर इसको करके देखिएगा, 100 में से आप 10 को सिर्फ एक बार ही कट कर सकते हैं। अगर आप आंसर बताते तो वो 10 होता है, लेकिन हमने बात की थी कि सिर्फ काटना आपको है, तो 100 को यानी कि 10 बार, 10 में से आप काटेंगे तो सिर्फ एक ही बार कटेगा, क्योंकि 0 0 से कटेगा तो सिर्फ एक ही बार कटता है जी। चलिए, इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे सेम टाइम, नो नो नो, सेम टाइम तो हम नहीं मिल सकते श्रोताओं, कल मिलेंगे हम 10 बजे आप सभी के साथ मिलने वाले हैं और ढेर सारी बातें करने वाले हैं। अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर अभी भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस है, तो अपना ध्यान रखना है, गर्मी में पानी पीते रहिए और बाहर के जो जंक फूड है उससे आप बचते रहिए। चलिए जी, बाय।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 MCC-C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ा

0: है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए आप सुने।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आपके शहर का सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर। और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
3: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
2: थैंक यू सर,
3: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
2: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
3: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
2: क्या बात है।
3: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
2: जी जी, प्लीज।
3: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से, फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
2: वाओ।
3: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
2: क्या बात है।
3: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
2: जी,
3: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
2: हाँ जी।
3: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल्दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
2: हाँ जी।
3: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
2: Alright.
3: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। तो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
2: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
3: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
2: जी जी।
3: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते हैं।
2: जी जी जी।
3: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
2: जी जी जी।
3: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
2: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
3: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
2: हाँ जी,
3: तो
2: हाँ
3: हम
2: जी.
3: प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
2: दिस इज कंगारू मदर केयर, आई थिंक।
3: sort of, it's a different thing.
2: All right.
3: Kangaroo mother care mostly preterm बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं.
2: हाँ जी, हाँ जी,
3: ठीक है. In every baby, delivery के बाद क्या होता है, अंदर

0: जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
1: ओके।
0: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है
1: तो जी,
0: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
1: ओके।
0: ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके। डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2-3 आवर्ली इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
1: हैं उनको
0: नहीं पता
1: नहीं
0: होता
1: पता
0: है, वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: ओके।
0: क्योंकि क्या होता है अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
1: हाँ जी,
0: उसमें
1: हाँ
0: हमारे
1: जी।
0: फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं।
1: ओके।
0: तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
1: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: कोई रीजन कोई कारण मतलब जिससे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोस ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोस ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है, बहुत
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है, तो हमें मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म से जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए, बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं। तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू। तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं, जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात कर रहे हैं, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है। उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यू बॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कत हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश जाते जाते?
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
1: हाँ जी,
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना
1: है? जी जी,
0: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे, बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू, और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे सर।
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री,
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
1: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल एसआईटी की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। एसआईटी मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
2: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
1: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
3: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा फानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ के तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर पीएसी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शामे गरीबा मजलिस उफरामाप इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवत या वह लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की मह तक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती हैं, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंग लता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सके और साथ ले जा सके।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ ये नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाइयों काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में

0: कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टल पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। अपने लेख में श्री वर्मा ने कहा कि सरकार नशे को भारत के युवाओं के भविष्य और राष्ट्र की प्रगति से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा मानती है। उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक विशेषकर युवाओं से नशे के खिलाफ इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया। उन्होंने सभी से इस आह्वान को जनसंकल्प में बदलने और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्त भारत की ओर मिलकर आगे बढ़ने का आग्रह किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन न केवल व्यक्तियों और परिवारों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि सामाजिक संरचना को भी कमजोर करता है। श्री संधू ने कहा कि नशा मुक्त दिल्ली के निर्माण के लिए परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक संगठनों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने दिल्ली के युवाओं से आग्रह किया कि वे जागरूकता, रोकथाम, पुनर्वास और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से मिलकर स्वस्थ, सशक्त और नशामुक्त दिल्ली के निर्माण में योगदान दें। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर आरंभ किया है। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन का प्रयोग होगा। इस 11 दिन की रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का अवसर मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये यात्रा दिल्ली में सफदरजंग रेलवे स्टेशन से आरंभ होगी और ये रेलगाड़ी वाराणसी, पुरी, कोणार्क, चिलिका, भुवनेश्वर, कोलकाता, गंगासागर और बैद्यनाथ धाम जाएगी। इस रेलगाड़ी में थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में टिकट लिए जा सकते हैं। इस विशेष रेलगाड़ी में यात्रियों को प्रति व्यक्ति फर्स्ट एसी के लिए 1,13,530 रूपए, सेकेंड एसी के लिए 1,06,145 रूपए और थर्ड एसी के लिए 91,370 रूपए चुकाने होंगे। इसमें यात्रियों को 3-स्टार होटल में विश्राम, सभी भोजन, अन्य सभी यात्रा, एसी वाहनों में दर्शनीय स्थल और यात्रा बीमा तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं। इसके लिए IRCTC के टूरिज्म पोर्टल पर या देश भर में IRCTC पर्यटन कार्यालयों पर बुकिंग कराई जा सकती है। ये रेलगाड़ी 5 अक्टूबर को यात्रा पूरी कर वापस दिल्ली पहुंचेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली नगर निगम और कार्य निष्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लेगेसी कचरे के निस्तारण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: इस अवसर पर श्री सूद ने बताया कि वर्तमान में गाजीपुर में प्रतिदिन लगभग 7,000 मीट्रिक टन कचरे की बायोमाइनिंग की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 जुलाई तक प्रतिदिन की क्षमता बढ़ाकर 12,000 मीट्रिक टन की जाए तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए श्री सूद ने कहा कि गाजीपुर लैंडफिल परियोजना की अब साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 7 मार्च 2025 को फेज टू के अंतर्गत 30 लाख मीट्रिक टन लेगेसी कचरे की बायो माइनिंग का कार्य आवंटित किया गया था, जिसे इस वर्ष सितंबर तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। श्री सूद ने कहा कि फेज टू के अंतर्गत अब तक लगभग 24 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है तथा लगभग 20 एकड़ भूमि कूड़ा मुक्त हो चुकी है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि तीनों लैंडफिल साइट्स को चरणबद्ध तरीके से साफ करना सरकार की प्राथमिकता है।
4: तीनों लैंडफिल साइट को समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके में खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। भलसवा और ओखला में तेजी से काम हो रहा है। गाजीपुर लैंडफिल साइट में जगह की कमी और यहां से तेजी से निकल रहे जो वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने में जो प्रॉब्लम है, उसका मैंने आज रिव्यू किया। एक महीने बाद फिर मैं यहां आऊंगा और इस रिव्यू के आधार पर क्या कार्रवाई हुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए हम चरणबद्ध तरीके से तीनों लैंडफिल साइट को साफ करना चाहते हैं।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के माध्यम से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण, मरम्मत, उन्नयन और जनकल्याण से जुड़े कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2025-26 और 26-27 में राजधानी की विभिन्न झुग्गी बस्तियों में कुल 1510 विकास और निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें 2025-26 में 1253 कार्यों पर लगभग 389 करोड़ रुपए तथा वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 257 कार्यों पर लगभग 61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि नरेला, तिमारपुर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, आजादपुर, बवाना, रोहिणी, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, शादरा, करावल नगर, संगम विहार, द्वारका, नजफगढ़ तथा राजधानी के अन्य क्षेत्रों में स्थित झुग्गी बस्तियों में विकास कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया है। आज दिल्ली भाजपा द्वारा आयोजित आपातकाल विषयक गोष्ठी में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल लागू किया था। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस दौरान संविधान की भावना को आघात पहुंचाया गया, नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन हुआ और लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज राष्ट्र लोकतंत्र सेनानियों के साहस और बलिदान को नमन करते हुए ये संकल्प दोहरा रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने आज एक फर्जी गैस कनेक्शन और डिसकनेक्शन धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार लोगों को झारखंड और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि लोगों को गैस कनेक्शन काटे जाने के फर्जी संदेश भेजकर ये आरोपी ठगी करते थे। उन्होंने कहा कि आरोपी ठगी की रकम का इस्तेमाल महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने में करते थे। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि आरोपियों के पास से 20 मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण, सोने चांदी के आभूषण, नकदी तथा एक वाहन बरामद किया गया है।
5: सबसे पहले हमने शाहीन बाग में एक कोरियर मॉड्यूल को ध्वस्त किया, जो कि इस ठगे हुए पैसों से महंगे फोन खरीदकर कोलकाता भेजता था। ये चारों मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चला रहे थे, जिसके तहत कॉलिंग टीम, डिजिटल ऑपरेटर्स, रिसीवर कैरियर नेटवर्क और डिस्पोजल नेटवर्क, ये चारों ही आपसी तालमेल में काम करते थे। इस कार्रवाई में हमने अभी तक 20 मोबाइल फोन, 61,900 रुपए कैश, एक टाटा हैरियर गाड़ी, सोने और चांदी के सिक्के, एक लैपटॉप और एक टैबलेट रिकवर किया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार भारतीय विद्यालय खेल महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय खेल महासंघ के बीच आज एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
6: दिल्ली के शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद की उपस्थिति में किया गया यह समझौता अगले वर्ष आयोजित होने वाली ISF अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय रेसलिंग प्रतियोगिता और ISF अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी के संबंध में किया गया। इस अवसर पर श्री सूद ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आयोजन में 50 देश और लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने, उनके प्रदर्शन को बेहतर करने और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मदद करेगा। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना विकसित करने और राजधानी को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले गए। दिल्ली में जामा मस्जिद, निजामुद्दीन, ओखला और मेहरोली सहित विभिन्न स्थानों पर जुलूस निकाले गए। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली नगर निगम और कार्य निष्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कचरे के निस्तारण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली सरकार, भारतीय विद्यालय खेल महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय खेल महासंघ के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। और आशुराए मुहर्रम पर आज राजधानी में विभिन्न स्थानों पर जुलूस निकाले गए। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
8: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
9: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
10: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
11: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज़ आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और एक बार फिर से आपकी शाम को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ खूबसूरत लोगों को स्टूडियो में हम लेकर हाजिर हो गए हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही कमाल के कलाकार मौजूद हैं जो आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत और भी शानदार बनाने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त, और साथ में अखिल भैया भी मौजूद हैं स्टूडियो में, और आज हमारे बीच में शाम को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए कमल शर्मा जी हैं। तो और वो क्या करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को वो जरूर बताएं अपने बारे में। और मैंने ऐसा सुना है कि वो पहले भी रेडियो पे आ चुके हैं, तो यानी कि उनकी आवाज पहली बार नहीं जा रही है श्रोताओं आपके कानों में, हो सकता है पहले भी आपने उनको सुना हो। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत वेलकम है।
12: मैं बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद आपका बहुत इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मेरा नाम कमल शर्मा है।
11: जी कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मुझे अपना नाम भी तो बताना पड़ेगा ना अखिल भाई, बहुत जरूरी है क्योंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको पता तो होना चाहिए।
13: आपका नाम आनंद है और यहाँ आनंद मैं सीन चल रहा है।
11: देखो A4 आनंद, A4 अखिल, एंड K4 कमल शर्मा जी। तो सर कैसे हाल चाल है आपके?
12: बहुत बढ़िया।
11: अरे वाह, जैसे मैंने बताया अपने श्रोताओं, क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं, तो पहले आप आ चुके हैं या मैंने मतलब वैसे ही फ्लू में बोल दिया?
12: नहीं, पहले आ चुके हैं। अच्छा, प्रोग्राम,
11: यानी कि आपने प्रोग्राम कर दिए हमारे स्टूडियो में, लेकिन मेरा और आपका फर्स्ट टाइम संवाद हो रहा है।
12: मे बी शायद टाइम
11: मे बी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मिला सर से, इसलिए मैं, मेरे को लगा शायद आप पहली बार आए।
12: नहीं, हमारे जो प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे ज्यादा संडे में होते थे,
11: संडे में हमारी छुट्टी होती है ना, यही
13: संडे इज लाइक फंडे ना।
11: सही बात है,
12: क्योंकि संडे में शायद कोई ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता नहीं है, तो इसलिए दोपहर में हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते थे।
11: अच्छा जी, रिकॉर्डिंग वाला शो, आप समझ गया मैं। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आज आप आए। तो आज हमारे श्रोताओं को आप बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, हमें सूत्रों से पता लगा है।
12: सूत्रों से
11: लोगों ने हमें ऐसा मैसेज दिया है कि आज जो है कमल शर्मा जी हंसाने वाले हैं, और हमारे जो पड़ोस अखिल भैया बैठे हैं वो भी कुछ जो है आज बढ़िया सी चटपटी बातें करने वाले हैं। क्यों अखिल भैया, अपने बारे में थोड़ा बताओ। जी अखिल भैया बताओ जरा।
13: मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर भी एक शायरी और एक पोइट्री वाली चीज है। मतलब क्या, मुझे भी उन चीजों से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, मैं बहुत सुनता भी हूँ इन सब चीजों को, और जो मेरे साथ है ना वो चलती फिरती आती है, मतलब एकदम एट रैंडम आती है,
11: रैंडम आती है,
13: और मैं एकदम आपको सुना देता हूँ। तो ये तो मेरे पास अच्छा मौका है।
11: मैं तो अखिल जी को जितना मैं जान पाया हूँ, ये वो आदमी इनको जहाँ शिफ्ट कर देते हो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। इनको शेरो शायरी में डाल दो आप वहीं शुरू हो जाते हैं, इनको आरजे में डालो, इनको इंस्टाग्राम की रील में डालो ये वहां फिट हो जाते हैं। आज ही ये मेलोडी खा के आए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे। ये मतलब ऑलराउंडर वाले हैं, बढ़िया वाले, जबरदस्त इंसान। तो सर आपका हम स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं।
12: मेरा नाम कमल शर्मा है
11: जी।
12: मैं यहाँ मुरादाबाद में ही जॉनसन जॉनसन सर्जिकल सेल्स में पॉइंट हूँ।
11: अरे वाह।
12: तो जैसे कभी बोलता हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक तरफ ये और एक तरफ लिखना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है?
11: जी ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि कैसे पॉसिबल होता होगा।
12: बट ये है कि अब अगर हम इस चीज को मैनेज कर पाते हैं, कुछ ऐसा कर पाते हैं, तो अच्छी चीजें निकल रही है। अगर दोनों विपरीत छोरों को मिलाकर हम एक नई चीज निकाल रहे हैं,
13: नहीं तो ये अच्छी बात है। ये तो आप ऐसे कहते हैं कि ये भी एक तरीके से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है।
11: करेक्ट करेक्ट, और ये भी एक क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं। और सर जो इंसान का लगाव होता है ना जिस चीज से, वो उसके लिए समय भी

0: कुछ खास सुनाएंगे आज?
1: तो पहले तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपना परिचय दे दूं कुछ पंक्तियों
0: में। मैं वही चाह रहा हूँ, बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए सर, मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर, पंक्तियों के माध्यम से दीजिए।
1: तो लीजिए पेश है कि जीवन अपना क्या है कमल,
0: जी
1: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है।
0: वाह,
1: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है, खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है।
0: क्या बात है,
1: खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है, कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं।
0: वाह,
1: कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं है। और अदरक वाली चाय कमल सुबह शाम पीनी है।
2: अरे क्या बात, बहुत खूब।
0: मजे की बात ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ये तो आपने सुबह हमने सेलिब्रेट किया और देखिए चाय की बात भी हुई है, तो हम आपको चाय पिलाकर ही भेजेंगे और अदरक भी डलवाएंगे, आप चिंता ना करें। समझ गए हम आपकी बात, आपकी शायरी से। तो श्रोताओं, ये जो मस्ती है, जो फन है, वो लगातार बरकरार रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6, आरजे आनंद अखिल और कमल शर्मा जी के साथ।

0: और फिर से वेलकम बैक है आज हंसने के लिए और कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमारे स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं कमल शर्मा जी। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर
0: जी। अदरक वाली चाय तो आपने हमें याद दिला दी, आप उम्मीद करेंगे कि हमें पिलवाई भी जाए क्यों अखिल जी?
2: बहुत बहुत सही कहा आपने।
0: नहीं लेकिन इस वक्त कमल सर कह रहे हैं कि नहीं बेटा इस टाइम पे चाय आप हमें पिलवाइए, हमें ज्यादा जरूरत है, हम आपके गेस्ट हैं। जी सर।
1: यस सर।
0: जोक सपाट तो चलता रहेगा श्रोताओं, फिलहाल कमल सर हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपने चार पंक्तियां सुनाई लेकिन वो जबरदस्त वाली थी, अब कुछ और हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए बढ़िया सा जो अपने

0: फिलहाल में कुछ अच्छा लिखा हो?
1: हाल फिलहाल में क्या, बस अभी अपने घर से यहाँ तक आते हुए दो लाइनें दिमाग में आई थी।
0: अरे वाह, यही तो खूबसूरत होती है, खूबसूरती कलाकार की। जी सर।
1: कि बुढ़ापा कह रहा है जवानी दे दो।
0: वाह
2: क्या बात है।
1: बुढ़ापा कह रहा है जवानी
3: दे दो,
1: और आत्मा कह रही है गिलास ठंडा पानी दे दो।
0: वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, क्या बात।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: पानी की बोतल है कि ठंडी?
2: बगल वाला नाई कह रहा है कि भाई साहब कलर वाली डाई दे दो।
1: चलिए, मैं आपको कलर करवा लिया था, वो मैंने कलर करवा लिया था।
0: हाँ, सर को देख के लग रहा है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
2: आनंद, तुम्हारी तरफ से शायरी बोलना चाहूंगा।
0: सर बिल्कुल, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, आप मेरी तरफ से।
2: मैंने पिछली बार तुम्हारी तरफ से बोली थी, इस बार
0: बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर।
2: मैं अभी अपने सभी श्रोताओं से कहूंगा कि जो मेरे शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आनंद के शब्द हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ रहे हैं, जहाँ पे जूता पढ़ने की बात आएगी वो अखिल जी के शब्द हैं, आप थोड़ा समझ जाइएगा।
2: तेरी डीपी पे आज भी दिल जाता है।
0: वाह।
2: तेरा ऑनलाइन आना मौसम बदल जाता है।
0: वेरी नाइस।
2: अब मोहब्बत खतों में कहाँ मिलती है जनाब। अब तो टाइपिंग में ही दिल बहल जाता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल तुम टाइपिंग नहीं कर रहे, हम बातें कर रहे हैं, और वो भी हमारे कमल जी के साथ। बहुत ही अच्छा अखिल भैया आपने बताया, और ये अखिल जी ऐसे बीच बीच में अपने मजेदार शायरी से आपको हंसाते रहेंगे। और एक बार फिर से हम कमल सर की ओर आगे बढ़ेंगे। जी सर, आपने वो दो शब्द तो सुना दिए जो आपके जहन में अभी आए, और बड़े मतलब इस्तफाक की बात है कि एकदम रियल वाले थे।
2: अच्छा,
0: ऐसा लग रहा है अचानक तो आए, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं भी ये बात कहने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद। ठंडा पानी पिलवाएंगे, चिंता ना करो आप। जी सर, आप थोड़ा सा कुछ और नया सुनाइए। सर
1: नया क्या सुनाऊं, बस
0: जो आपके पास है आज आप वो सुना दीजिए।
1: नाम की वजह से मतलब लोगों की नजरों में रहता हूँ हमेशा।
0: अरे वाह क्या बात है, आज से हम भी आपको अपनी नजरों में रखेंगे। आप
2: चिंता मगर ये खिले हुए तो बहुत टाइम से हैं।
1: उसका कारण तो जानो ना।
0: जी जी सर प्लीज।
1: कि सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: कमल कमल कमल।
0: जी जी जी,
1: अगर आप उसका पॉलिटिकल एंगल देखें तो फिर कमल, अच्छा पिछले 12 साल से इन्होंने तो जान खा रखी है, खा देना रखी।
0: समझ सकते हैं सर, लेकिन फिलहाल आज हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि ये वाले जो कमल है इनकी खूबसूरती कुछ अलग ही है।
2: हाँ।
0: तो आप अपनी बातों से और अपने शब्दों से इस कमल की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे सर आज की शाम।
1: तो लीजिए चार पंक्ति इसी के नाम पे लीजिए।
0: बिल्कुल सर।
1: कि रोज एक किस्सा नया सहने की आदत हो चुकी है।
0: वाह।
1: रोज एक किस्सा नया
0: सहने की आदत
1: हो चुकी है। क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है।
0: क्या बात है जी।
1: क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है
0: जी।
1: और हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर।
0: वाह।
1: हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर। जिंदगी लगता है तू भी भाजपा सी हो चुकी है।
0: अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त।
1: तो मैं तो इसको मतलब एक बहुत अच्छा, हम लोग जो होते ना लिखने वाले, वो बड़े मतलब चारों तरफ निगाह रखते हैं कि कहाँ से सब्जेक्ट मिले लिखने का।
0: करेक्ट, कहाँ से कंटेंट मिले, ऑब्जर्व करते रहते हैं आसपास में चल क्या रहा है।
1: क्योंकि मेरे साथ एक प्लस पॉइंट गया, माइनस पॉइंट गई है, मैं सुबह कम से कम आधा पौना घंटा अखबार पढ़ता हूँ, दो खबर।
0: बहुत ही बढ़िया,
1: ताकि एक नई चीज आपको पता चलती है, सब्जेक्ट आपको मिलता है कि आपके पास पड़ोस में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है।
0: ये तो सर रेडियो में बताते हैं, ये हम रेडियो में भी बताते हैं सर।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो आजकल जरा आनंद जी बताएंगे क्या हो रहा है।
0: हम भी रिसर्च करते रहते हैं देश विदेश में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि लोगों को रेडियो का सुनने का फायदा भी तो होना चाहिए।
1: सही बात, अब कोई सोचे कि एक रुपए की टॉफी मशहूर हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे।
0: सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल की शादीशुदा लोगों के बारे में कुछ है आपके पास पंक्तियां, बड़े परेशान रहते हैं आजकल।
1: दुखती रख क्यों छेड़ दिया आपने?
0: अरे मैं आपकी बात नहीं करना चाहता,
1: ये जरूरी था।
0: मैं सोच रहा हूँ जब आप आए हैं तो कुछ सुन लेते हैं।
2: एक बार भाभी ने इनसे पूछा भी
1: नहीं, हंसी माहौल का,
2: कितना प्यार करते हो आप हमें
0: जी,
2: तो इनका पता जवाब क्या है?
0: हाँ जी,
2: जितना फोन 1% बैटरी होने पर चार्जर से प्यार करता है।
0: ये तो जबरदस्त वाली बात कर दी आपने भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। अखिल भैया ने जो शायरी सुनाई है उससे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी शादी करूं और फिर मैं इस पे जरूर चर्चा करूंगा। फिलहाल तो अभी मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तों। जी अखिल भैया, आप अपनी शायरी को थोड़ा संभाल के रखें, बाद में सुनूंगा। जी कमल सर, आप थोड़ा कुछ फरमाएं, चार पंक्तियां आपकी कुछ बढ़िया सी हो जाए।
1: तो जो आपने बात करी है शादीशुदा वालों की,
0: जी जी,
1: तो वो दर्द थोड़ा बाद में खोलेंगे, अभी हंसी खुशी का माहौल चल रहा
0: है।
1: थोड़ी
0: अगर आप चाह रहे हैं कि अभी जो है लोगों का दिल वैसे ही टूटा है आजकल, बहुत
2: जाके इन्हें बेलन ना चलाना पड़े,
0: हो सकता है इनके ऊपर चल जाए भाई, कुछ भी हो सकता है।
1: हंसी खुशी का माहौल है तो अच्छी लाइनें निकलती रहनी चाहिए।
0: अच्छी वाली सुना दो, पॉजिटिव वाली, मजा आ जाएगा।
1: कि अच्छा, मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग तो सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कोरोना में।
0: अरे वाह,
1: क्योंकि सब्जेक्ट था बहुत बड़ा, सब्जेक्ट
0: बहुत
1: था
0: बड़ा टॉपिक,
1: और हम लोग तो क्योंकि ढूंढते रहते हैं तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल सर,
1: देखिएगा कि जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ।
0: वाह।
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ।
0: वाह जी वाह।
1: जब भी मिलता हूँ किसी से, खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ और वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, बस ढक के चेहरा आजकल घर से निकलता हूँ।
0: वाह क्या बात है, बहुत
2: क्या बात है, बहुत खूब
0: शानदार। और एक मैसेज भी दे दिया, आजकल गर्मियां बहुत है तो चेहरा ढककर ही निकले, ये हो सकती है,
1: ये बात आज भी लागू हो सकती है।
0: एग्जैक्टली इसीलिए मैंने बोल दिया। वेल दोस्तों, अभी रात में तो खैर आपको धूप नहीं मिलेगी, तो आप चेहरा उघाड़ कर भी चल सकते हैं।
2: आनंद जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
0: प्लीज सर पूछिएगा।
2: इस मॉडर्न एरा, जो मॉडर्न एरा चल रहा है अभी अपना,
0: जी जी,
2: उसमें प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है।
0: हाँ जी,
2: जो ट्रस्ट है ना आपस में,
0: हाँ हाँ,
2: वो धीरे धीरे क्यों जल्दी खत्म होता है आपके हिसाब से?
0: मैं इस पे जरूर अभी लौट कर आऊंगा तो अपनी टिप्पणी करूंगा, लेकिन श्रोताओं भी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल इस पे अपनी ओपिनियन दूंगा, अपनी टिप्पणी करूंगा, अपने राय दूंगा, अपनी पूरी वार्ता दूंगा, आप चिंता ना करें। बट अभी रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वी कम बैक। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद। और एक शाम की धमा चौकड़ी मचाने के लिए मैं और मेरे साथ स्टूडियो में दो लोग और हैं, एक को आप जानते हैं, दूसरे को भी आप पहचान ही चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमल शर्मा जी की और साथ में अखिल जी भी मौजूद हैं। और आज हम बातें कर रहे हैं बहुत सारी आपकी शाम को बेहतरीन बनाने की, कुछ शेर और शायरी से और कुछ जेन्युइन बातें दिल से जुड़ी हुई, प्यार से जुड़ी हुई। जैसे अभी अखिल भाई ने कुछ मेरे पे सवाल छोड़ा था, क्या था आपका क्वेश्चन भैया?
1: मेरा सवाल बस इतना सा है कि इस मॉडर्न एरा में प्यार बहुत जल्दी हो जाता है
0: जी,
1: मगर जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता है।
0: ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म
1: हो जाता है।
0: हाँ,
1: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि मुझे प्यार नहीं हुआ, इसलिए मुझे वो ट्रस्ट भी नहीं पता है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। कैसे कि रब्ते से कोई ये टॉपिक पे कुछ भी कहना चाहता है तो वो इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताओ, ताकि मैं इनको इसका जवाब दे सकूं। पहले आगे बढ़ते हैं। और शायद मुझे लगता है ट्रस्ट इसलिए भी खत्म हो जाता है क्योंकि ट्रस्ट करने वाले लिए अब दुनिया बची नहीं है यार अखिल भाई, मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट। मगर अगर मैं अपने तरीके से देखूं तो बहुत ट्रस्ट करके देख लिया लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, बदले में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, धोखा
1: दगा।
0: तो इसलिए लोग जो है करते नहीं है ट्रस्ट। खैर, हमारे बीच में सीनियर सिटीजन बैठे हैं एक सर, हम उनसे पूछ लेते हैं। आओ घूम फिर के जरा सर के पास चलते हैं। कौन सर, आप बताइए इसके विषय में जरा, जो अखिल सर ने पूछा है अभी।
2: अखिल सर धीरे धीरे उसी विषय पर पहुंचना चाह रहे हैं,
0: आप समझ गए ना,
2: शादी के बाद वाली
0: है ना।
2: मैं उस हिस्से को भी छूना नहीं चाह रहा। मैं सोच रहा हूँ हंसी खुशी का माहौल है तो थोड़ी बातें ऐसी चलती रहे।
0: नहीं, ये उसमें भी खुश हो जाते हैं, ये वो उसमें क्या आदमी है, आप चिंता ना करें।
2: तो चार पंक्तियां देखिएगा
0: जी सर,
2: क्योंकि शादीशुदाओं की बात चल रही है तो चार पंक्तियां समर्पित किसको हो सकती है,
1: ये तो बाय डिफॉल्ट है,
0: समझदार है।
2: देखिएगा कि लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया।
0: वाह
1: क्या
0: बात है।
2: लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया, गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया।
0: वाह जी वाह,
2: गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया। वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे।
0: क्या बात है।
2: वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे, बैठ कर संग चाय पीना तो बहाना हो गया।
1: क्या बात है,
0: बहुत ही खूब। जी अखिल जी, आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं इसमें
0: हाँ, मैं आपसे भी पूछता रहूंगा, आपने बहुत सारी गूगल बाबा से आज निकाल के रखी हुई है सुबह से। हाँ,
1: तेरी आवाज आज भी कानों में रहती है।
0: वाह,
1: तेरी बातें अब भी रातों में रहती हैं। तू दूर होकर भी दूर नहीं मुझसे, क्योंकि तू मेरी हर धड़कन में रहती है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। मैं समझ सकता हूँ कौन रहती है, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। जी कमल सर।
2: यस सर।
0: आप अब और क्या स्पेशल सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को? आप जो है लगातार बढ़िया बढ़िया पंक्तियां सुना रहे हो, ये चार पंक्ति के ना, आप मुझे लग रहा है हमें सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। क्यों अखिल भैया?
1: बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल क्या है ना, रिलेशनशिप जो है वो टूटते कम है, ईगो ज्यादा जीत जाता है उनमें। तो ऐसे जो है ना, एक मतलब अगर आप छोटी सी सॉरी भी बोल दो किसी को तो बहुत ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आपका टूटने से बच जाता है।
0: अरे भैया, आजकल सॉरी बोलने से भी कुछ ना होता, जिनको ब्लॉक करना होता है वो करके भाग जाते हैं, भले वो दो दिन बाद अनब्लॉक कर दें, वो बात अलग है। खैर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, तू जेन्युइन ही है। आजकल के रिलेशनशिप में ईगो बहुत है, क्योंकि सामने वाले का पहल वो करे और जो इस पार बैठा है उसको लगता है पहले वो करे, इस चक्कर में क्लैशेस होते रहते हैं और चीजें खराब हो जाती है। ऑलमोस्ट यही हो रहा है आजकल,
2: बिगड़ जाती है।
0: एब्सोल्युटली सर, क्योंकि वही रीजन है ना, सामने वाला चाह रहा है तू आ, वो चाह रहा है कि भैया नहीं तू आज इस चक्कर में।
2: पहले आप ट्रेन निकल गई, ट्रेन चली गई लखनऊ से।
0: सही कह रहे हैं, इससे पहले हमारी ट्रेन निकल जाए हम सर आपके पास वापस आ जाते हैं। आप प्लीज कुछ सुनाइए हमारे लिसनर्स को और बढ़िया जबरदस्त सा श्रोताओं।
2: अगर जी, अगर मेरे दोस्त राघव पंक्तियां सुन रहे हो तो मैं चार पंक्तियां उनको ये समर्पित करना चाहूंगा,
0: डेडिकेट करना चाहूंगा। जरूर सुन रहे होंगे
2: कि महफिल का हर शेर उभरता उसका था।
0: अरे वाह,
2: महफिल का हर शेर उभरता उसका था, एक शमा थी हर परवाना उसका था।
0: वाह,
2: एक शमा थी हर परवाना जिसका था, वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे।
0: जी गजब,
2: वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे
0: जी,
2: चलो बताओ वो दीवाना किसका था।
0: अरे वाह क्या बात है राघव जी, देख लो सवाल छोड़ के जा रहे हैं सर, मैं पूछ लूंगा फोन करके आपसे। लास्ट टाइम राघव जी आए थे सर हमारे स्टूडियो में अभी रिसेंटली, बहुत ही बढ़िया उनके साथ भी एक संवाद लगा हमने किया, अखिल भाई आप भी थे, बहुत अच्छा सेशन किया उन्होंने और बहुत ही कमाल किया, जबरदस्त लिखते हैं बोलते हैं।
1: आप ये चीज देखे ना, वो एज अ प्रोफेशनली वो एक एडवोकेट है, तो उनके यहाँ भी हल्की सी छाप थी रिश्तों को कैसे टूट रहे हैं और कैसे उसे बचा रहे हैं। और हमारे केमिस्ट साहब हैं हमारे इधर, सर्जिकल सारी सप्लाई इनके हाथ में है, तो इनके में भी वही छाप आ रही है हल्की हल्की सी, कि कैसे किसी की तोड़ा है और कैसे किसे जोड़ना। आप क्या कहेंगे आनंद जी?
0: नहीं, मैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आपसे मुलाकात करके, और जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे लिसनर हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनको भी बहुत आनंद आ रहा होगा। और बस यही है, छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को हंसाती है। बट सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगती है एक आर्टिस्ट की, कि जब वो लिखते हैं ना, चार चीजों को सोच के जो वो लिखते हैं, और जब उनसे एक नई चीज बनती है उसकी बात ही अलग होती है। शायद अब आप जो सुनाने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी होगी आई एम श्योर।
1: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे।
0: वाह,
1: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे
0: जी।
1: अब उसकी स्टोरी में कोई और नजर आता है।
0: अरे वाह।
1: और हम आज भी वही पुराने स्क्रीनशॉट संभाले बैठे हैं।
0: बहुत ही बढ़िया, मुझे दिखा देना, मैं भाभी को दिखा दूंगा।
1: हाँ, तुमसे तो कुछ कहना ही गुना है, तुम तो हर बात पे एकदम जो है ना
0: भाभी को ले आते हैं।
1: बिल्कुल, गृह मंत्री को ही पकड़ लेते हो, छोटे मोटे मंत्रियों को पकड़ा करो एकदम गृह मंत्री तुम।
0: अरे गृह मंत्री जो कर सकते ना, वो छोटे मोटे मंत्री नहीं कर सकते ना, इसलिए हम सीधा वहीं पहुंच जाते हैं मेन पॉइंट पे। सर आप कुछ कह रहे थे?
2: अब अखिल भाई इतने समय से वो पन्ना खोलना चाहते, थोड़ा सा तड़का उसका लगा देता हूँ।
0: अरे सर बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली
1: तैयार में।
2: तो तैयार है अखिल जी सुनने के लिए?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: कि जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में।
0: क्या बात है,
1: बहुत खूब।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, मिलकर भी वह मिल ना सका जो था हाथों की लकीरों में।
0: वेरी नाइस,
1: क्या कहा है?
2: मिलकर भी वो मिल ना सका जो था हाथों की लकीरों में, लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया। लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया, घूम रहा लेकर कुंडली पीरों और फकीरों में।
0: अरे बहुत क्या बात, बहुत ही खूब, बहुत ही।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, संगी साथी छूट गए, संगी साथी छूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, बेरंग जिंदगी लगती है कोई रंग नहीं तस्वीरों में।
0: अजी वाह,
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने।
0: जबरदस्त,
1: बहुत खूब,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: और जो आपने धोखे वाली बात करी
0: जी सर,
2: कि दिल अंदर छलनी छलनी है, दिल अंदर छलनी छलनी है
0: जी,
2: पर बाहर से कोई घाव नहीं।
0: क्या बात है,
2: पर बाहर से कोई घाव नहीं, जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में। शमशीर मतलब तलवार।
0: हाँ। जी जी,
2: जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में, और कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, रांझे की चिंता किसको है सब घिरे हुए हैं हीरों में।
0: अरे क्या बात है, गजब गजब शानदार।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, और कोई किस्मत बदल नहीं सकता
0: जी,
2: कोई किस्मत बदल नहीं सकता, कोई होनी पलट नहीं सकता, क्या पता कमल कुछ हो जाए शायद उसकी तदबीरों में, जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीर।
1: बहुत
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही शानदार सर, पूरी हो गई
1: अंदर से, अंदर से निकल के
0: सर, लग रहा था और सुनता ही रहूं मैं तो, इतनी शानदार थी ये। वाह जी वाह, गजब,
1: अंदर से निकल के आई है,
0: बहुत ही बढ़िया, एकदम नेचुरल, बहुत ही शानदार सर। बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। और मैं बस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस लौट कर आता हूँ श्रोताओं, और हम उसके बाद सर से कुछ पंक्तियां सुनेंगे दोस्ती के ऊपर। आज के टाइम में कहते हैं दोस्ती दोस्ती नहीं रही है, अब जमाना सेल्फिश हो गया है, आजकल जमाना मतलब ही हो गया है। तो थोड़ा सा इस विषय में भी हम सुनते हैं सर के दिल के जज्बात क्या लिखते हैं वो इस पर, बट अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आपकी शाम को और शानदार बना रहे मैं अखिल जी और साथ में हमारे कमल शर्मा जी। कुछ प्यारी प्यारी बातें वो कर रहे हैं आज की शाम, और वो बातें जो शायद कहीं ना कहीं आपके दिल को छू रही होंगी श्रोताओं, और जो शायद इस वक्त सुन रहे हैं उन आपको भी भैया दिल से हमारा सलाम है। अगर आप भी यहां पहुंचना चाहते हैं तो हो सकता है अगला स्टेज अगली कुर्सी आपकी नाम हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें एक छोटा सा मैसेज करना है। अगर आप कुछ बेहतरीन लिखते हैं, आप कुछ बेहतरीन सुना सकते हैं, आपको लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ बढ़िया शेर शायरी, तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलेगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके भी मुझे DM कर सकते हैं। रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, वहां पर भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी बढ़िया सा शेर शायरी का टैलेंट है, या आप कुछ बढ़िया लिखते हैं, या किसी ऐसे पर्सनालिटी को जानते हैं जिसके अंदर ऐसा टैलेंट है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे वो रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। क्यों अखिल भाई?
1: बिल्कुल सही बात, और इसी बात से मेरे को एक बात याद आ रही है,
0: प्लीज
1: कि मैं सभी अपने दोस्तों से और उनके दोस्तों से भी बात कहूंगा कि इस बात को याद रखें, जो सच्चा प्यार है कभी खत्म नहीं होता।
0: क्या बात है,
1: बस लोग मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कुछ कि जो प्यार सच्चा करने वाला है ना, उसका एक अलग है, उससे आप किसी से मैच नहीं करवा सकते।
0: गॉट इट, आई एग्री विद यू 100%, सही बात है। अब सच्चा प्यार मिलता नहीं, वो बात अलग है, है ना?
1: कह सकते हैं
0: ये भी सच्चाई है, बाकी अपना अपना लक है। क्यों कमल सर?
2: बिल्कुल
0: है ना। अच्छा कमल सर, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी फ्रेंडशिप के बारे में, मैं बोल रहा था दोस्ती के बारे में कि लोग कहते हैं कि आजकल दोस्ती जो है पहले वाली नहीं रही, मतलब ही होगी है, जहां काम होता है वहीं दोस्ती होती है, उसके बाद दोस्ती टाटा बाय बाय, तू किसका दोस्त, तू मेरा कौन सा दोस्त, वो चीजें चल रही है बेसिकली। अब भाई देखो कलयुग का टाइम है, बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, सच्चे दोस्त भी है आज की दुनिया में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: दोस्ती एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है
0: जी, ठीक है,
2: दो लोगों के बीच में,
0: ठीक है
1: भाई, मुझे तो
2: सिर्फ एक के दम पर नहीं चल सकती।
0: करेक्ट, वन साइड तो हो ही नहीं सकती, चाहे प्यार हो या
2: डेडिकेशन, दोनों का होता है।
0: एब्सोल्युटली,
2: आपका भी सामने वाले का भी,
0: सामने वाले का
2: वो बॉन्डेशन आपकी सही है तो फिर तो दोस्ती हमारे।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना सर, राह चलते हैं हमें कुछ लोग मिलते हैं, हमारी वाइब मैच होती है, हमें लगता है वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया दोस्त है, या सामने वाले को लगता है वो पर्सन हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और इस चक्कर में कई बार फ्रेंडशिप हो जाती है, बट वो पता चलता है कि वो एक तरफ से ही थी, दूसरी तरफ से था ही नहीं।
2: अब वही कह सकते हैं ना कि हर चीज के दोनों साइड होते हैं।
0: हाँ करेक्ट,
1: कहीं कहीं दिमाग नहीं लगाया जाता ना,
2: डाकर भी है लेटर भी है,
1: कहीं दिल आ जाते हैं कहीं दिमाग लगाया जाता है, तो हर तरह की दोस्ती है, आप चाहे दिल लगाएं या दिमाग लगाएं।
0: सही बात है बिल्कुल, मैं आपसे दोस्ती करूंगा, आप टेंशन न ले, दिल तो नहीं लगा सकता।
2: हमें थोड़ी ना पता था कि उम्र के 4500 साल में हम अखिल भाई मिल जाएंगे,
0: सोचने वाले
2: और चिपक जाएंगे बिल्कुल हमारे साथ।
0: बहुत सर, दोस्ती में कुछ बढ़िया सी चार पंक्तियां हो जाए सर, जो जो दोस्त आपस में बैठ के इस गाड़ी में हमें सुन रहे हैं।
2: दो पक्के दोस्तों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है।
0: अच्छा,
2: पक्के दोस्त हैं लेकिन किसी विषय को लेकर कंफ्यूजन है दोनों के बीच में।
0: हाँ हाँ।
2: तो एक दोस्त कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा है
0: जी,
2: हालांकि उसमें उसका प्यार ही कह लीजिए, गुस्सा नहीं है उसका।
0: ओके, बहुत ही खूबसूरत।
2: कि बदला वक्त जमाना बदला,
0: बदला वक्त जमाना बदला हाँ जी,
2: उसने आना जाना बदला।
0: वाह,
2: बदला वक्त जमाना बदला, उसने आना जाना बदला, इससे अच्छा बदले खुद को, इससे अच्छा खुद को बदले।
1: क्या बात,
2: उसने ठौर ठिकाना बदला।
0: वाह,
2: ठौर ठिकाना मतलब जो उसके रहने की जगह है
0: वो बदला,
2: उसने ठौर ठिकाना बदला,
0: ठीक है।
2: पहले उसने देखे सपने, पहले उसने देखे सपने, बाद में बदली आंखें,
1: अच्छा,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला।
0: वाह
1: क्या बात,
0: क्या बात है।
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला, हरदम पाने की चाहत, मतलब आदमी में लालसा होती है कि ये भी मिल जाए वो
0: भी
2: मिल जाए,
0: करेक्ट करेक्ट,
2: कि हरदम पाने की चाहत अब उसको इस हद ले आई कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला।
1: क्या,
0: वाह क्या बात है,
1: बहुत खूब, मतलब एक तरीके से इन्होंने एकदम एक 95% वाला सच बोल दिया इन्होंने,
2: कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला, सड़कें बदली, गलियां बदली, बदले सारे रास्ते, सड़कें बदली, गलियां बदली, बदले सारे रास्ते, घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला।
0: वाह,
2: घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला, और खुद अपना आकाश बनाकर, खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला,
0: बदले चांद सितारा बदला जी सर।
2: तो खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला। और आखिरी पंक्ति देखेगा कि मैं लिए कलम और एक कागज, मैंने कलम और एक कागज, बस इसी सोच में बैठा हूं, मैं लिए कलम और इस कागज एक कागज, बस इसी सोच में बैठा हूं कि उस पल में क्या होगा अगर वो शख्स दोबारा बदला।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत
0: बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। इन पंक्तियों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मुझे लगता है कि आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं, आई थिंक।
2: नहीं मतलब जैसे मैंने पहले बोला ना, डेडिकेशन है दोस्ती, तो दोनों तरफ से
0: करेक्ट, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ गई ना जो आपने बताया,
2: तो डेडिकेशन दोनों का है।
0: करेक्ट करेक्ट,
2: मैं समझता हूँ कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी साइड से तो वो क्लियर हो जाना चाहिए।
0: करेक्ट, लेकिन तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला इंसान चाहता ही नहीं है, तो फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है सर।
2: इसलिए जो भी कोई ऐसा पॉइंट है दोनों को कहीं पिंच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, वरना वो कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा।
0: करेक्ट, और वो इतना बढ़ेगा कि एक दिन वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा,
2: खत्म हो जाएगा,
0: है ना, वो मतलब रिश्ता कम और वो टॉक्सिक ज्यादा हो जाएगा।
2: बिल्कुल,
1: हमेशा आपके जो जितने भी पुराने दोस्त है ना, जो भी आपके साथ बैठे हैं, जो इस समय भी आपके साथ मौजूद हैं, चाहे गाड़ी में मौजूद हैं, चाहे बाइक पे मौजूद हैं, चाहे कहीं बैठे हुए हैं, कहीं भी एक टाइम टुगेदर आप लोगों का चल रहा है, तो वो क्या है, पुराने जो दोस्त होते हैं वो ना एक गानों की तरह होते हैं, पुराने अच्छे गाने जो आप जिनकी बात आप हमेशा सुनना चाहते हैं, जिनको आप हमेशा
0: गुनगुनाना चाहते,
1: और जो आपके नए नवेले दोस्त बनते हैं ना, वो एकदम एक फ्री ट्रायल की तरह होते हैं, वो बस फ्री पैक आपका खत्म हुआ नहीं और वो आपके गायब हो गए,
0: आपका सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद जैसे ही आपका टाइम गया खत्म। चलो रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, मेरे दोस्त ये गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, जितने भी मेरे श्रोता साथी हैं, जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनके लिए एक दोस्ती वाला गाना, इतनी सुंदर बातें हो गई हैं, तो ये गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आरजे आनंद के साथ हैं आप और इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। फिलहाल आज की शाम मेरा दिल चाह रहा था कुछ बेहतरीन बातें सुनना और इन्हीं बेहतरीन बातों को जो है पेश कर रहे हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में। स्टूडियो में मौजूद हैं कमल शर्मा जी और साथ में अखिल जी, तो बीच बीच में आपको अब ऐसी चटपटी बातें और शानदार प्रोग्राम सुनने को मिलते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सर। और अखिल जी अपने जो है लैपटॉप में घुसे हुए हैं, शायद कुछ अच्छा निकालने के प्रयास में हैं। चलिए अच्छी बात है, उनका प्रयास जरूर मुकम्मल होगा। फिलहाल सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, अभी आपने दोस्ती के ऊपर तो बहुत बढ़िया सुना दी और मैंने शुरू में आपसे बीबी और वो हस्बैंड बीबी के बारे में कुछ पूछा था, तो मुझे लगता है कि इसमें अब आपको सुना दो बढ़िया सा।
1: नहीं मैं समझता हूँ, अगर हंसी खुशी चल रहा तो वही चलता रहे।
0: अच्छा, तो मतलब सर बार बार मुझे पीछे कहेगा, अभी तो छोटा, अभी तो बच्चा है तू, अभी तो ये जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है। जब
1: दो विवाहितों के बीच में आप गलत फंस गए हैं मुझे लग रहा है।
2: नहीं ये अभी ना इन्हें याद रहेगा, क्योंकि जब
0: देखिए दोस्तों मैं आपके आपके फायदे की बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो दो विवाहित लोग हैं ना, ये चाह रहे हैं कि भैया हमारे घर की जो है ना बीबी अगर हमें सुन लेंगी तो दिक्कत हो जाएगी, शायद इसीलिए ये बोलना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों।
1: हम तो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आधी हो चुकी
0: है। देखिए सर आप अभी अखिल भैया को उस स्टेज में मत पहुंचाओ, अभी अखिल भैया को पहुंचने में बहुत टाइम है। अखिल भाई देख लो, भाभी सुनती रहती है, ध्यान से बोलना है आपने।
2: अभी मैं यही
0: रिकॉर्डिंग भेज दूंगा
2: आनंद से, तो मैं यही कहूंगा कि ये टाइम आप अपना अच्छे से एंजॉय करें। हाँ। क्योंकि अभी जो है ना आप अभी दोस्तों के साथ आपका समय बीतता है, जो दोस्तों के साथ अभी आप समय बीतता है ना, तो जब भी अभी आप तो मना कर रहे हो कि भाई मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी मैं किसी से मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, मगर हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो, जल्दी आपको कोई चाहने वाली ले, और जब ऐसा मिले तो आप अपने दोस्तों को मत भूल जाना।
0: ओके बहुत बढ़िया, इन्होंने जो ट्रैक था वो कहीं और से कहीं और शिफ्ट कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्सफुल टू यू अखिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आपकी ये बात भी पूरी होगी माशाल्लाह, कोई ना कोई मिली जाएगी, हम भी इसी मुराद में हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस सफर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जी प्लीज अखिल भाई आपको सुना रहे हैं क्या?
2: कुछ रिश्ते नाम से नहीं एहसास से जाने जाते हैं।
0: वेरी नाइस।
2: वो दोस्त कब मोहब्बत बन जाते हैं पता नहीं चलता। तेरे साथ बिताया हर लम्हा आज भी याद आता है।
0: क्या बात है।
2: कॉलेज की वो चाय और तेरा मुस्कुराना भी याद आता है।
0: वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। मैं आपके कॉलेज जरूर घूमने जाऊंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा आप कैसे मुस्कुराते थे।
2: मैं तो कैंटीन में ही, मैं तो मेरे साथ तो ये था, मैं अपने कॉलेज में कैंटीन में ज्यादा मिलता था, क्लासेस में कम।
0: ओहो वेरी वेरी वेरी अमेजिंग, मतलब आप तो वो
1: जी सर उस हिसाब से तो सही प्रोफेशन में पहुंच गए ना।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बस वो प्रोफेशन का जो भांडा है मैं यहाँ फोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि फिर नहीं तो कई लोग पकड़ लेंगे उनके रेस्टोरेंट पे जाके। अच्छा हो पर उस तुम जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। जी सर आप जाते जाते अभी कुछ सुनाए बढ़िया सा हमारे लिसनर्स को।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऐसे विषय पे मैं एक कविता मैंने लिखी है और मैंने इसको काफी मंच पर सुनाया और लोगों ने काफी इसको पसंद किया।
0: जी
1: जो बच्चे हैं आज शिक्षा ले रहे हैं आपके घर में, आपके भतीजे भतीजी और बेटा बेटी, वो आपके कब तक हैं? सिर्फ इंटर तक, उसके बाद जाहिर सी बात है उनको ऊंची शिक्षा के लिए बाहर जाना है।
0: बिल्कुल सर सही कहा।
1: तो कहीं ना कहीं वो एक घर से कट रहे हैं, उसके बाद वो वापस लौट के कभी नहीं आते।
0: जी
1: क्योंकि ऊंची शिक्षा के लिए बाहर गए, फिर कहाँ नौकरी लग रही है।
0: जी
1: फिर वो कब आते हैं? छुट्टी वाले बच्चे,
0: छुट्टी वाले ओकेजन्स हो गए, छुट्टियां हो गई,
1: त्योहार।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो कुछ पंक्तियां मैंने इसके ऊपर लिखी हैं।
0: जी सर।
1: और मैंने इसको जहां भी सुनाया काफी इसको पसंद किया लोगों ने। पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं।
0: वाह।
1: पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं, धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी बात।
0: छोटी थी बड़ी जानदार और शानदार थी सर ये।
1: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज, बदल गया अब सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था।
0: जी
1: बदल गया अब सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था, सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था।
0: वाह।
1: सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था, माता पिता की फरियादे जो करना पाते दर्ज, माता पिता की फरियादे जो करना पाते दर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात है, बहुत ही।
1: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज। और क्या होली क्या रक्षाबंधन, क्या होली क्या रक्षाबंधन, और क्या बची दिवाली, माता पिता बस एक कमरे में, सारा घर है खाली।
2: बहुत ही गहरी बात कही।
1: माता पिता बस एक कमरे में, सारा घर है खाली। जो बच्चे ना जान सके माँ बाप के मर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों के कर्ज।
2: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही सही।
1: और इसकी अंतिम पंक्ति देखेगा कि घर के कच्चे रास्ते जिनको याद नहीं अब आते, घर के कच्चे रास्ते जिनको याद नहीं अब आते, छुट्टी वाले बच्चे केवल छुट्टी में घर आते।
2: क्या बात कही, बहुत ही सुंदर।
1: छुट्टी वाले बच्चे केवल छुट्टी में घर आते, गांवों को घर कहने में लगता है जिनको हर्ज, गांवों को घर कहने में लगता है जिनको हर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात कही, क्या बात कही। और ये चीज वाकई होती है, मगर अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, ये लोग समझ रहे हैं कि हाँ, चाहे आप कैसे भी रहें, किधर भी रहें, अपनी मिट्टी से जरूर जुड़े रहें।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा अखिल सर। और दोस्तों, आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा इस सेशन को डेफिनेटली। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप आए स्टूडियो में, कमल जी आपने तमाम बढ़िया बढ़िया बातों से, पंक्तियों से रूबरू कराया हमारे श्रोताओं को। और अब जाने का समय हो गया, क्योंकि आपको दोबारा भी बुलाना है। सब कुछ अगर आज ही जान लेंगे तो दोबारा कहाँ से फिर बुला पाएंगे ना, तो दोबारा बुलाने के लिए हमें कुछ तो बचा के रखना है अखिल जी, है ना। तो अखिल भाई का लैपटॉप तो हमेशा खुला रहता है, उनके गूगल बाबा उनके साथ हमेशा रेडी है। वो तो चाह रहे हैं कि मैं पूरी रात आपको सुनाता रहूं।
2: मेरा ये जो लैपटॉप है ना, इस समय बिल्कुल इस समय बैटरी डाउन है इसकी, सुबह से बैटरी डाउन।
0: नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अखिल भाई अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा यूज करते हैं, ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ये यहाँ से सीधा जहाँ जाएंगे वो सिर्फ कमल जी को पता है।

0: या मुझे पता
1: और किसी को नहीं पता है। सो आगे बढ़ते हुए कमल सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, जाते जाते क्या कुछ खास चीजें आप सुनाना चाहेंगे?
2: बस ये मुलाकातों के दौर यूं ही चलते रहे।
1: हाँ,
2: और आप मेरे को बुलाते रहे और मैं जो अपना विषय आपके सामने रखता रहूं।
1: क्या बात है, आज आपको स्टूडियो में आके अखिल जी के साथ शो करके कैसा लगा?
2: स्टूडियो में पहले भी आ चुका हूँ, बस अखिल जी के साथ आज मिलके यहाँ
3: पहली बार अच्छा है। पहली बार हमारा रहा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई अपने ही एकदम सब साथ में है और हम सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक आपस की बातें हो रही है, थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है।
1: क्या बात है अखिल जी, आप जो बोलते हैं ना एकदम जिंदा दिली इंसान है, आप दिल से बोलते हैं, मानना पड़ेगा, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं आप। एक दिन आप आरजे पक्का बन ही जाएंगे, ऑलमोस्ट तो बन ही गए और हम बाहर खड़े होंगे आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए, आप चिंता ना करें। जी सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आप भी जो है कुछ सुनाना चाहते हैं तो अखिल जी कैसे सुना सकते हैं? हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करके,
3: हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे
1: जी।
3: और हमारे को आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9837896 पर।
1: पक्का अभी आरजे बन गए, मुझे मानना पड़ेगा, नंबर याद हो गया इनको, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है या आप किसी से टैलेंटेड पर्सन को जानते हैं तो आप बताइए, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा भी जरूर आएंगे। जाते जाते एक और कुछ बढ़िया सी लाइन, सर सोच रहे हैं कि ये लड़के ने क्या पूछ लिया, अभी तो ये बाय करने वाला था, अब इसने फिर से कुछ सुनने की फरमाइश कर दी है। सर जाते जाते कुछ एक बढ़िया सा सुंदर सा,
2: आपके श्रोताओं को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, जज्बाती जज्बाती कर देते हैं थोड़ा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जाते जाते
2: कि जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है
1: जी,
2: जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है, नाकामियों के सर पे निशान बहुत है।
1: क्या बात है,
2: जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है, नाकामियों के सर पे निशान बहुत हैं, चुपचाप से मर जाना आसान नहीं इतना, चुपचाप से मर जाना आसान नहीं इतना, वो कहने को इस शहर में शमशान बहुत है।
1: क्या बात है, गजब, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। इन्हीं बातों के साथ अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, इजाजत, फिर जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बाय बाय।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
6: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

है आपको? अच्छा, अब आई है आपको आवाज? ओके, तो चलो हम, मैं ना आपको ये वाला गाना सुनवाती हूँ, ठीक है? ओके जी, चलिए श्रोताओं, ये बहुत ही शानदार गाना है, सो इस गाने को हम सुनवाते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 9:44 हो चुके श्रोताओं, और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि ये शो आपका है और आपके बिना ये शो अधूरा है। तो आप कॉल करते रहिए, नंबर है 9823789698 पर कॉल करिए और अपना फेवरेट वाला गाना आप सुन सकते हैं। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है जरा वो भी नाम बता दीजिए।
1: आपकी फेवरेट श्रोता ललिता कश्यप, नवीन नगर, मुरादाबाद।
0: हमें पता है, हमारे श्रोताओं को भी तो नाम पता होना चाहिए ना आपको।
1: भाई देखो, बहुत पुराना हो चुके हैं अब तो, सब लोगों को आवाज से ही पैसा लेना चाहिए। जैसे हमारे भैया की आवाज हम एकदम पहचान लेते हैं।
0: अच्छा अच्छा, पहचान लेते हो आप, चलो बहुत अच्छी बात है कि आप आवाजें पहचान लेती हैं। अच्छा बताइए, क्या कर रही हैं आप?
1: अब तो मैम हम लोग आराम से पंखा लगा के छत पे लेटे हुए हैं और आपका शो सुन रहे हैं।
0: अच्छा, मतलब काम से फ्री हो गई हैं आप?
1: हाँ मैम, खाना भी खा चुके हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप खाना खा चुके हैं। तो
1: और आपने खा लिया मैम?
0: हाँ जी हाँ जी, मैंने खाना खा लिया है।
1: और सुनाइए, परिवार में सब बढ़िया दीदी?
0: हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया है। आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगी?
1: शेकी शेकी
0: शेकी शेकी, मैंगो शेकी या बनाना शेकी?
1: तो गर्मी बहुत हो रही, मैंगो शेकी अच्छा चलेगा।
0: अच्छा अच्छा जी,
1: चल सुनाइए। एफएम परिवार में सब बढ़िया?
0: हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया है।
1: आप लोगों की आवाज जैसे हमसे बात करते ना रियल में भी ऐसी लगती है, और हमारी आवाज रियल के अलग है, फोन में तो मुझे बड़ी मोटी आवाज लगती है अपनी।
0: हो जाता है, हो जाता है जी, हो जाता है।
1: इसलिए मैं अपना वॉइस मैसेज नहीं छोड़ती हूँ।
0: हाँ ये तो पता है, मेरे को पता चल जाता है आपका फोन खराब हो गया होगा तभी कॉल नहीं आ रही है।
1: हाँ जी, पर वही आते हैं एफएम के दीवाने, तो कहीं ना कहीं से तो फोन करेंगे जरूर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सही कहा आपने,
1: बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सुबह 6 से ऑन होता है, आराम से भजन सुनते हैं मैम और अपना घर का काम भी निपटाते रहते हैं।
0: आराम से 1 तक रेडियो सुनती हो है?
1: जी मैम, मुझे घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपना टाइम इसी से अच्छा लगता है, और शाम को आपका शो आता है 5 से, वो भी बढ़िया लगता है।
0: मैं तो बार बार टाइम बताती रहती हूँ।
1: बढ़िया लगता है मैं।
0: चलिए फिर मैं आपको ये गाना सुनवाती हूँ, ठीक है?
1: थैंक यू मैम,
0: ओके जी, बाय, वेलकम, बाय बाय, बाय, गुड नाइट। चलिए जी, शेकी शेकी वाला गाना एंजॉय करते हैं, और आप भी कॉल करते रहिए 9837896896।
2: रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला करे।

0: था माजा किंग, ओ माजे किंग।
1: चलिए जी, उठ गए हम तो। और आप सभी से ये कहना चाहेंगे श्रोताओं कि आप भी कॉल करते रहिए। अगर सो रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है तो देखिए प्यारी नींद आएगी आपको जब आप कॉल करेंगी तो, और अपने पसंद के गाने सुनेंगे ना तो ऑटोमेटिक बहुत ही शानदार वाली नींद आ जाती है। लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, ये सोच रहे ना कि अरे मैडम कहाँ नींद आएगी, गर्मी तो इतनी ज़्यादा है क्या ही कर सकते हैं। जी ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कमरे के अंदर जाओ तो लगता है भैया किसी ने भट्टी जला दी हो, आग वाली फीलिंग आती है, बॉडी में से हीट निकलती है। तो ये क्या करना है इस गर्मी में, हमने पानी पीते रहना है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है जी। और आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
2: हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया साहब, रेलवे अस्पताल में भर्ती है 15 दिन से।
1: क्या कह रहे हैं?
2: रेलवे अस्पताल में भर्ती है, रेलवे अस्पताल में।
1: आप

0: कहाँ से बात करें, अभी घर से बात नहीं कर रहे हैं?
1: घर से नहीं, मतलब रेडियो भी आया था साथ में।
0: अच्छा अच्छा, ओके।
1: रात को 12 बजे
0: तक? अच्छा, 12 बजे तक सुनते रहते हैं। आप सोते नहीं है फिर?
1: नींद नहीं आती।
0: अच्छा, नींद ही नहीं आती, गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि नींद ही कहाँ से आएगी। नहीं नहीं सर, लगाती है, आप टेंशन रहिए, हम तो अब बैठे हैं आपके गाने के लिए। अच्छा, आप ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे सर?
1: लव इन टोक्यो।
0: अच्छा, लव इन टोक्यो, ठीक है जी। जापान की वाली गुड़िया ले गई दिल, वही सुनाते आपको। मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में
0: जी, बिल्कुल। चलिए जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: थैंक यू।
0: ओके जी, ओके। चलो जी, जापान वाला गाना सुनते हैं।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया था, ले गई दिल गुड़िया जापान की, यानी कि मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में ये गाना सुना था आपने। और समय की बात करूँ तो 9:56 हो चुके हैं श्रोताओं, और मैं लूँगी यहाँ से आप सभी से जाने की इजाज़त। लेकिन जाने से पहले लास्ट लकी कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है, तो आइए पहले उनसे बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। और आप आर जे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग यानी कि शो में, जो जहाँ बातें होती है दिल से दिल तक, जो कि अखिल जी करते हैं आप सभी के साथ ढेर सारी बातें। लेकिन जब कभी कभी आपको मौका मिलता है ना, तो उस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
3: हाँ जी,
2: हाँ जी सर, गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग
2: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम अंशुल है।
2: ओके अंशुल जी, बताइए आपके बैकग्राउंड से ना आवाज आ रही है।
3: जी जी जी जी जी।
2: तो बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे या किसी के कान में हीरा,
2: डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा गाना सुनना है।
3: आप गाना सुनाइए, किसी के कान में हीरा।
2: किसी के कान में हीरा,
3: जी जी जी,
2: ये गाना मैं पहली बार सुनूंगी।
3: ये आप पहली बार सुनिए, आप भी एंजॉय लीजिए।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे एंजॉय। ठीक है जी, नाम लेना चाहेंगे किसी का आप?
3: नाम है एक हकी और एक है चुन्नू।
2: ओके ठीक है जी, ये पंजाबी ट्रैक है जो आप गाना सुनना चाहते हैं?
3: जी
2: ठीक है सर, हम
3: पंजाबी नहीं है, नॉर्मल एक सॉन्ग है, किसी के कान में हीरा, बड़ी किस्मत वाला है वो, जो बड़ी किस्मत।
2: ठीक है जी, ठीक है जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है
3: जी, मैं फोन कट कर दूं मैडम, क्या करूं?
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, कर सकते हैं आप कॉल कट।
3: ठीक है, थैंक यू मैडम, योर गुड नेम
2: रीना सर।
3: ठीक है, ओके, थैंक यू,
2: ओके वेलकम। तो चलिए श्रोताओं, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, किसी के कान में हीरा। ये गाना मैं फर्स्ट टाइम सुनने वाली हूँ, और श्रोताओं इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। कल मिलेंगे हम आप सभी के साथ मॉर्निंग मसाला शो में, जहाँ ढेर सारी बातें करने वाले हैं। 10 बजे हम आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे। आर्जेरीना की तरफ से आप सभी को गुड वाली गुड नाइट जी, और इस गर्मी में बस एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए। समय समय पर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, अगर आप पानी पीते रहेंगे तो आप भी ठीक रहेंगे। लेकिन गाना प्ले करने से पहले ना कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोताओं, उसके बाद हम आप सभी को गाना सुनवाएंगे, और इसी गाने के साथ मिलूंगी यहाँ से जाने की इजाज़त। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और यूं ही अपनी ज़िंदगी में आप खुश रहिए।
0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

Okay.

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान